सुप्रभात। मीडिया वेब 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज बुधवार है, शक समय 1948, ज्येष्ठ मास की तिथि 13, तदनुसार 3 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:48:34 हो रहे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं चिंतन, वाचन स्वर संजय किशोर प्रसाद का है।
1: आराम करना उतना ही आवश्यक है जितनी यह वैज्ञानिक दृष्टि से तय है। आवश्यकता से अधिक आराम व्यक्ति की क्षमताओं को प्रभावित करता है। आराम आलस्य का दूसरा नाम है। जब आपके पास खाली समय होता है तो थोड़ा आराम करने की फिराक में यह आलस्य आपको इतना सुला देता है कि बाकी सब काम अव्यवस्थित हो जाता है, ठप हो जाता है। बहुतों की यह शिकायत रहती है कि हमारे लाख प्रयास के बाद भी मेरे कार्य समय पर नहीं होते, हम पिछड़ते जा रहे हैं। यदि बहुत गहराई से समय को दोष देने की अपेक्षा हम स्वयं के दिनचर्या का अवलोकन करें तो पाएंगे कि कारण बाहरी नहीं बल्कि भीतरी है। सबके मूल में हमारा आलस्य एवं प्रमाद है। आलस्य एवं प्रमाद जीवन का अंग है, ठीक उसी तरह जिस तरह क्रोध, ईर्ष्या, मद, मत्सर और मोह है। फिर स्वाभाविक प्रश्न यह है कि इतने सारे विष रहने के बावजूद जीवन में व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? बिल्कुल सफल हो सकता है और सफल हो सकता है। बस करना क्या है कि निरंतर अभ्यास से दुर्गुणों के प्रभाव का दमन करें या इसको कम करें एवं सद्गुण जिसे हम सुलाए रखते हैं उसे जिंदा करें। इसी प्रकार अच्छाई की मात्रा बढ़ाने पर हम जीवन में सफल हो जाते हैं तथा जब तक हमारे जीवन में अवगुणों का प्रभाव होता है सफलता हमसे दूर होती है। आराम भी एक ऐसा ही दुर्गुण है। आराम कभी भी शरीर के अंदर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर होता है। लक्ष्य पूरा कर लिया, अब जरा आनंद से सो ले। यह मन के अंदर बैठा एक ऐसा दैत्य है जो आने वाले समय में हमारी आदतों में शुमार हो जाता है तथा हमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने से रोकता है। सफलता प्राप्त करने के बाद जो रुक जाते हैं वे अपने अंदर की असीमित क्षमता को नहीं जानते। यह थोड़ा थोड़ा आराम यदि हम जीवन का जोड़ लें तो पाएंगे कि एक बहुत बड़ी अवधि हम यूं ही बेकार बर्बाद कर देते हैं। जीवन का वैज्ञानिक निष्कर्ष यह है कि पूरी जिंदगी के काल गणना का लगभग 40% समय हम सोने, नहाने और भोजन करने में लगा देते हैं। बचा समय ही वास्तविक जीवन है। इसी में किसी को योग्य बनना है अथवा लापरवाही से जीवन जीते हुए अंत काल में पछतावा करना है। बचे हुए 60% समय काम के लिए है, इसलिए इसका उचित उपयोग करें, आराम नहीं करें। जीवन के सभी सफल महापुरुषों ने आराम को परिणाम में दुख होने वाला बताया है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि आराम हराम है। वे बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। उनके जीवन में आराम ने क्या दिया और क्या लिया, ये सारे राज उनके इस दार्शनिक सूत्र वाक्य से स्पष्ट होते हैं। आराम आसुरी प्रवृत्ति है। आजकल हम देर रात तक बाहर समय गंवाते हैं और सुबह देर से उठकर रोजाना कई कार्य स्वयं बिगाड़ते हैं। जब मन करता है काम करने लगते हैं। जीवन में हमने सपने तो बड़े बड़े देखे लेकिन जीवनचर्या में जो संयम चाहिए उसे नहीं लागू किया। संयम के बिना कोई बड़ा लक्ष्य नहीं मिलता और यदि काल्पनिक दृष्टिकोण से मिल भी गया तो हम अपने प्रमाद से उसे गंवा बैठते हैं, टिक नहीं पाते। दूसरा तरीका दुर्गुणों खासकर आलस्य या प्रमाद से मुक्त होने का यह है कि जब भी हमें कुछ समय कभी भी आराम करने की इच्छा हो तो हम बिस्तर पर या सोफे पर जरूर जाएं लेकिन साथ में कुछ सकारात्मक वस्तु, कुछ रचना करने का प्रयास करें। यह आपके पसंद पर निर्भर है। इससे जीवन के फुर्सत के क्षणों की भी उत्पादकता बनी रहेगी और यह आराम के दुष्प्रभाव को समाप्त कर देगा। धीरे धीरे आराम शब्द मिट जाएगा और सृजनशीलता उसका स्थान ग्रहण कर लेगी। और यह भी संभव है कि खाली समय का यह सदुपयोग हमारा वास्तविक कर्म और पसंद बन जाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ

0: खास होता है जिसे वह अपनी पसंद बताता है। इसमें वह अच्छा कर सकता है लेकिन समय पर इसकी तलाश नहीं कर पाता। यदि आप इसे पाना चाहते हैं तो पहले आराम को मृत्युशैया पर लेटा दें, आपकी तलाश अंजाम तक पहुंच जाएगी।
1: अभी आपने सुना चिंतन, वाचन स्वर संजय किशोर प्रसाद कथा, ये आकाशवाणी पटना है। लीजिए प्रस्तुत है अब कृषि चर्चा कार्यक्रम में, आइए सुनते हैं वार्ता का विषय है कद्दू के रोग।
2: किसान भाइयों नमस्कार। कद्दू के पौधे के ऊपर अनेक तरह के रोग लग जाते हैं। कद्दू इस मौसम में जो आपके खेत में है, जिसे आप लगाए हैं, उसमें मृदु रोमिलासिता रोग लग जाता है। इस रोग में सबसे पहले पत्तियों की ऊपरी सतह पर हल्के पीले रंग के कोणीय धब्बे दिखाई देते हैं। धब्बों के ठीक नीचे पत्ती की निचली सतह पर कवक की बढ़वार रूई के समान बैंगनी रंग का दिखाई पड़ता है। रोग की तीव्रता में पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं, कभी कभी पूरा पौधा ही सूख जाता है। रोगी पौधे बौने रह जाते हैं। रोगी पौधे में फल अक्सर कच्चे रह जाते हैं और यदि किसी प्रकार पक भी गए तो उनका स्वाद अच्छा नहीं होता है। मृदु रोमिल आसिता रोग जो कद्दू वर्गीय फसलों में होता है, उसे रोकने के लिए आप फसल चक्र अपनाएं। कद्दू कुल की सब्जियों को हर साल एक ही खेत में नहीं लगावें। फसल समाप्त हो जाने के बाद फसल के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर दें। रोगी बेलों को काट देना चाहिए और खड़ी फसल पर मैंगोजेब या रिडोमिल एमजेड 72 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से गोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव रोग के लक्षण दिखाई पड़ने पर ही शुरू हो जाते हैं और 10-15 दिन के अंतर पर कुल 3 या 4 छिड़काव करने पड़ते हैं। उसके बाद एक और रोग है जिसका नाम है फल बिगलन रोग। इस रोग में लक्षण फलों पर पीले गहरे रंग के धब्बे के रूप में उत्पन्न होते हैं। ऐसे फल छूने पर काफ़ी मुलायम मालूम पड़ते हैं। रोगी फल सड़ने लगता है। नम मौसम में रोगी स्थानों पर रुई जैसे सफ़ेद कवक की बढ़वार दिखाई पड़ती है। फल बिगलन के कारण फलों में से एक प्रकार की दुर्गंध आती है। भूमि सतह के संपर्क में रहने वाले फलों में रोग लगने की संभावना अधिक होती है। भंडारण के समय यदि कोई रोगग्रस्त फल भूल से भंडार में पहुंच जाए तो अन्य स्वस्थ फलों में भी यह रोग लग जाता है। रोग प्रबंधन के लिए रोगी पौधों के अवशेषों को जलाकर दूर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। जल निकास का समुचित प्रबंध खेत में रखना चाहिए। बेलों को चढ़ाने के लिए सहारा देना चाहिए ताकि जमीन को फल नहीं छुए, क्योंकि उसके कारण भी सड़न उत्पन्न होता है। इसके अलावा भूमि पर बेलों एवं फलों के नीचे पुआल, सरकंडे या ऐसी ही अन्य चीज़ें बिछाकर रखना लाभकर होता है। फलों को तोड़ते समय या खेत से बाजार ले जाते समय ध्यान रखना चाहिए कि फलों पर घाव या खरोच न आवे। खड़ी फसल पर मैंकोजेब दवा का प्रयोग करना चाहिए। 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बनावें, उसका फिर छिड़काव करें। इसके अलावा चूर्णी लासिता रोग भी होता है। इस रोग में लक्षण पहले पत्तियों की ऊपरी सतह एवं तनों पर सफ़ेद चूर्ण के रूप में दिखाई देते हैं, बाद में ये धब्बे हो जाते हैं। धब्बों पर उपस्थित चूर्ण बिल्कुल टेलकम पाउडर से मिलते जुलते हैं। रोगी पौधों का ऊपरी भाग पीला पड़कर सूखने लगता है और चूर्णी धब्बों का रंग भूरा हो जाता है। चूर्णिल आसिता रोग में पुराने धब्बों के बीचों बीच में छोटे छोटे काले बिंदु के आकार के कवक की संरचना दिखाई पड़ती है। पौधों की वृद्धि रुक जाती है और फल को बहुत हानि होती है। चूर्णिल आसिता रोग जो कद्दू वर्गीय पौधों में होता है, इसे रोकने के लिए खेतों में या उसके समीप उपस्थित जंगली पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। रोगी पौधों के अवशेषों को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई पड़े सल्फेक्स 2 ग्राम दवा का प्रयोग करें या कैराथेन 0.6 मिलीलीटर दवा का प्रयोग करें। इनका घोल आप बनावें और घोल बनाने के बाद उसका छिड़काव करें। सामान्यतः 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव की जाती है। इसके अलावा फ्यूजेरियन मलानी रोग भी कद्दू वर्गीय पौधों में होता है। इस रोग में भी पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पत्तियां पीली होने लगती है, रोगी पौधों की बेलें मर जाती हैं और जड़ें सड़ जाती हैं। रोगी पौधों के तने का भीतरी भाग भूरा हो जाता है। नम मौसम में रोगी तनों के ऊपर कवक की बढ़वार सफ़ेद या गुलाबी रंग की दिखाई पड़ती है। फ्यूजे

0: फ्यूजेरियम मलानी रोग जो होता है, जिसे फ्यूजेरियम ब्लाइट भी कहते हैं, रोगी पौधों को इस रोग से जो ग्रसित पौधे हैं उन्हें उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। कम से कम 10 वर्षों के लिए फसल चक्र में इस वर्ग की फसलों को नहीं लगाना चाहिए।
1: कद्दू के रोग, अभी आपने ये वार्ता सुनी। इसके साथ आज का हमारा एक कार्यक्रम कृषि चर्चा अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी। विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी। ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम

0: विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी पटना है। श्रोताओं सुनिए वंदना भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम। आइए करते हैं शुरुआत संवेद स्वर में एक देश गान से।

आकाशवाणी का यह पटना केंद्र है। मीडिया वेब बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता हमारे प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ। और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं देवी वंदना हरिहरन।

राजा जनक के महल में बेटियों की विदा का करुण हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है। लगता है जैसे करुणा और विरह ने वहां डेरा डाल दिया है। सीता ने जिन पक्षियों को सोने के पिंजड़ों में पाल पोस कर सिखाया पढ़ाया था, वे मानो पूछ रहे हैं कि वैदेही कहाँ हैं। और यदि पशु पक्षी इस प्रकार विकल हैं, तो मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजा जनक परम वैराग्यवान पुरुष थे, किंतु इस अवसर पर सीता को देख उनका धैर्य भी साथ छोड़ गया। जानकी को हृदय से लगाकर वो फूट पड़े। भावना ने ज्ञान और वैराग्य के बांध तोड़ दिए। मंत्रीगण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। मुहूर्त देखकर सुंदर सजीव ही पालकियों में कन्याओं को बिठाया गया। पिता ने उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति की सीख दी। ब्राह्मणों की चरण धूलि माथे पर लेकर राजा दशरथ ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दल बल समेत अयोध्या के लिए चल पड़े। विदा के क्षणों में अधिक से अधिक समय तक उनके साथ रहने को आतुर राजा जनक उनके साथ हो लिए। विचित्र दृश्य है। देवता हर्षित हो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं। कौशलपति दशरथ बार बार जनक जी से लौट जाने का आग्रह करते हैं, किंतु प्रेमवश वो लौटना नहीं चाहते।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
1: स्वास्थ्य चर्चा सुनने वालों को नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं IGIMS पटना के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विद्याभूषण कुमार साहब, और हम इनसे बातें करेंगे आंखों की नियमित जांच जरूरी। डॉक्टर साहब, हम आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद सर। सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग आज आंखों की नियमित जांच के बारे में परिचर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सभी जो गार्जियन हैं, जिनके बच्चे जैसे 3 साल के जो बच्चे हैं या जो स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो उनका हमेशा जांच, स्कूल जाते हैं तो स्टार्ट एक बार जरूर नेत्र रोग विशेषज्ञ से जांच करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बताते नहीं हैं कि उनको दिखाई दे रहा है या नहीं। और जब टीचर वहां से स्कूल से भेजते हैं, तब तक बच्चों में बहुत ज़्यादा पावर की कमी हो जाती है और उनको परेशानी होती है ज़्यादा, फिर उसमें चश्मा लगाना पड़ता है। या वैसे बच्चे जिनके आँखों में तिरछापन है, या तो फिर आँख में से कुछ ऐसा रिफ्लेक्स जो नॉर्मल रिफ्लेक्स की तरह काला नहीं आ रहा है, सफ़ेद रिफ्लेक्स आ रहा है, वैसे बच्चों को भी हमेशा चेक करवाना चाहिए गार्जियन को। दूसरे जो वयस्क हैं, युवा हैं, जो 35 से 40 साल के उम्र के हैं, उनको भी अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ से आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए, क्योंकि उनका नजदीक में जो होता है, जो रोशनी कमना शुरू हो जाता है और उनको परेशानी होती है काम करने में, मोबाइल देखने में, आजकल बहुत सब मोबाइल यूज करते हैं, तो या तो अखबार पढ़ने में भी दिक्कत होती है। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास दिखवाने के लिए, तो हमेशा उनसे बोलिए कि हमारे आंखों में काला मोतियाबिंद है कि नहीं, इसका भी जांच कर लें, क्योंकि 35 से 40 साल की उम्र में काला मोतियाबिंद होने की संभावना शुरू हो जाती है। या तो ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता को काला मोतियाबिंद है, या तो माइनस पावर बहुत ज्यादा है, तो उनको भी हमेशा नियमित जांच में हमेशा काला मोतियाबिंद का भी जांच करवाना चाहिए। अधेड़ व्यक्ति जो और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको भी अपनी आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए। और मेनली जिनको मुख्यतः डायबिटीज है या हाई बीपी का बीमारी है, या तो और कोई भी शरीर में कोई बीमारी है जिसके चलते आंख में भी दिक्कत हो रहा है, तो उनको भी जांच करवाना चाहिए। और जांच करवा करके जैसे 50 साल से ऊपर जाते हैं, तो उनमें मोतियाबिंद फिर होना शुरू हो जाता है, जो जिसका की सर्जरी करके हम लोग और लेंस डाल के उसको अच्छा से रोशनी वापस लिया जा सकता है, तो उसको लेट नहीं करना चाहिए, तो वो चीज को जांच करना जरूरी है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बच्चों के बारे में बता रहे हैं, बच्चों
2: जी
1: में आप बता रहे हैं स्कूल जाने के समय जांच
2: जी
1: होनी चाहिए 3 साल की उम्र में। कुछ बच्चों के आंख में भेंगापन होता है
2: जी
1: या उनको कुछ दिक्कत होती है लेकिन वो बता नहीं पाते हैं,
2: जी
1: तो इस तरह की बात को कैसे माता पिता समझ पाएंगे और कैसे उनका इलाज हो पाएगा, इसके बारे में
2: जी
1: बताइए।
2: भेंगापन 2 तरह का होता है सर। एक तो है कि बच्चों में ऑब्वियसली दिखता है, जब बच्चा को सामने देखने के लिए बोलते हैं तो उसका आंख तिरछापन रहता है। बच्चों में जब आंखों में तिरछापन है, या तो उसको भेंगापन बोलते हैं सर, उसका उपचार के लिए पहले तो उसका बीमारी है वो पता चलना चाहिए गार्जियन को कि है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप नेत्र चिकित्सक से मिलकर के गार्जियन को दिखवाना चाहिए कि आंख में रोशनी है जो कि प्रॉपर जितना चाहिए बच्चों का, जैसे नॉर्मल विजन होता है इसको 6x6 बोलते हैं, उतना है कि नहीं। अगर है तो आंख जो देखता है बच्चा, जो आंख सीधा करके देखता है कि तिरछा करके देखता है, तो वो प्रॉपर जांच करने के बाद पता चल जाता है सर। अगर वैसा भेंगापन बच्चों की आंखों में होती है, तो उसका उपचार अभी संभव है। पहले हम लोग उसको चश्मा देते हैं, चश्मा से भी आंख में सीधापन आ जाता है। अगर चश्मा से सीधापन नहीं होता है, तभी हम लोग सर्जरी के लिए उस बच्चे को एडवाइस करते हैं सर।
1: जी अच्छा, एक सामान्य लक्षणों के बारे में थोड़ा हमारे सुनने वालों को बता दें आप, कि जैसे आंखों की नियमित जांच के बारे में तो आप बता ही रहे हैं,
2: जी
1: लेकिन कुछ ऐसे लक्षणों की चर्चा करें जिससे लोगों को ये समझना चाहिए कि उनकी आंखों में कोई तकलीफ है और
2: जी
1: उनको तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए।
2: बच्चों में तो अगर बच्चे को प्रॉपर खेलने में परेशानी हो रही है, चाहे तो जो बहुत छोटा बच्चा है जिसको कि मतलब अपने माँ पिताजी को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, तो उन लोग में दिक्कत है तो पता चल जाता है, गार्जियन उससे देख सकते हैं।
1: और बड़े
2: जो
1: लोगों का
2: वयस्क लोग हैं, तो अगर वो कुछ काम कर रहे हैं, काम करने के बाद थोड़ा सा थकावट लगता है आँख में, या तो आँख के चारों तरफ, या तो सर दर्द हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें हमेशा जांच कराना चाहिए। जब ड्राइविंग करते हैं तो दूर की वस्तु, चाहे तो सिग्नल देखने में परेशानी हो रही है, कलर में तो कलर ब्लाइंडनेस एक अलग चीज है, उसका तो नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल जो रोशनी कम होती है तो दूर देखने में परेशानी होती है, आगे जो ड्राइविंग कर रहे हैं तो आगे की गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा है, या तो आगे गाड़ी में देखने में परेशानी होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी तुरंत

0: डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको चेक करवाना चाहिए सर।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने आंखों की नियमित जांच के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद सर।
2: आंखों की नियमित जांच जरूरी, अभी आपने इस विषय पर डॉक्टर विद्याभूषण कुमार से ली गई है भेंट वार्ता, सुनिए। इसी के साथ आज का हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यही समाप्त होता है। मीडियम वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है अब आज दिन भर में हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। शो तो आज आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। आज का हमारा यह कार्यक्रम केंद्रित होगा, विषय होगा मध्यम वर्ग कल्याण। चर्चा का विषय है यह कार्यक्रम, हम आपके लिए प्रसारित करेंगे रात्रि 9:30 पर, जिसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा सुबह 9:10। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सैयद शादाब आलम से मकाला, कैफे आजमी बाहैसियत शायर व अदीब। परिवार कल्याण, ये कार्यक्रम हम अपने लेकर आएंगे सुबह 10:30 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर विवेक कुमार पांडे से वार्ता, विषय होगा बच्चों में मोटापा और डायबिटीज और एनीमिया, आओ साथ चलें। ये कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 10:45। आज का विषय होगा बिहार की साहित्यिक धरोहर, स्वर सहयोग धारिणी वाधवान का होगा और प्रस्तुति होगी मोहम्मद शाहिद सबा की। ग्रामीण महिला कार्यक्रम घरनी आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ लोकगीत कलाकार होंगी किरण कुमारी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये कार्यक्रम प्रसारित होगा दिन में 1:05 पर। दिन में 2:30 पर श्रोता सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 4:30 पर। श्रोता सुनेंगे आज खेलकूद गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम खेल परिक्रमा, प्रसारण समय होगा शाम 5:30। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर संजय सिन्हा से, उनकी एक वार्ता, विषय होगा ड्रोन तकनीक एवं इसके लाभ। कुछ लोकगीत आप सुनेंगे कार्यक्रम में प्रभु नंदन शर्मा निराला से। कृषि प्रसारण खेती गृहस्थी का प्रसारण समय होगा संध्या 7:00। श्रोता सुनेंगे हमारे केंद्र से संगीत के विभिन्न कार्यक्रमों में सुबह 7:05 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम हालचाल और 10:00 रसमंजरी। सुबह 7:15 पर आप सुनेंगे कुछ गीत श्रीमती डे से, शास्त्रीय संगीत, ये कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 7:25 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रभा अत्रे का शास्त्रीय गायन। फोन इन कार्यक्रम ऑन एयर फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 11:00। लोकगीतों का कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत हम आपको सुनवाएंगे दिन में 12:00। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ भोजपुरी लोकगीत, कलाकार होंगे साधु शरण सिंह और साथ ही, इसके अलावा अन्य कलाकार होंगी ममता शर्मा। फिल्म संगीत हमारे केंद्र से श्रोताओं इसके अलावा और आप सुनेंगे दिन में 1:30 पर, शाम 6:10 पर, रात्रि 10:00 और रात 8:35 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत में कुछ गजलें, कलाकार होंगी मुबारक बेगम।

0: ये थी आज दिनभर में हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत, इसके बाद हिंदी में। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम्। प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथ वार्ता। प्रशासनेन सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ओएसएम इत्येतस्याः आंकिकीय मूल्यांकन प्रणाल्याः सेवानुबंध संबद्ध विषयाणां परीक्षणार्थं एक सदस्यीय समितिः संघटिता। समितेः अध्यक्षः क्षमता निर्माणायोगस्य अध्यक्ष पदारूढा एस राधाचौहानः भविष्यति। समितिः मासाभ्यन्तरे अन्तः कार्मिक प्रशिक्षण विभागाय स्वप्रतिवेदनं प्रस्तोष्यति। अत्रान्तरे परिषदा गतवासरे द्वादश कक्षायाः छात्राणाम् अंक सत्यापनार्थम् उत्तरपुस्तिकानां पुनर्मूल्यांकनार्थं च अन्तर्जालपटलम् आधिकारिकरूपेण सक्रियं कृतम्। अस्माकं वार्ताहरः अवदत् यत् एषा सुविधा तेभ्यः एव छात्रेभ्यः उपलब्धा अस्ति ये खलु स्वमूल्यांकितानां उत्तरपत्राणां स्कैन इत्येताः प्रतिलिपयः प्राप्तवन्तः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया उक्तं यत् शिक्षा शक्तिकरणस्य महत्वपूर्ण साधनं वर्तते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरान् जागरूकान् क्षमांश्च कारयति। गतवासरे नवदिल्ल्यां सा जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः सम्बोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा उक्तवती यत् वास्तविकः विकासः तदा एव भविष्यति यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकार्थिक शैक्षिक रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। सा उक्तवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्ति योजनया जनजातिवर्गेभ्यः उच्चशिक्षायाः अवसराणां प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मू वर्या अवदत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां छात्राणां न्यूनता नास्ति, अपितु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचित मार्गदर्शनं च आवश्यकं वर्तते।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः गतवासरे सर्वोच्चन्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। न्यायमूर्तिः शीलनागो, श्रीचन्द्रशेखरः, सञ्जीवसचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्च न्यायालयीय न्यायविद समितेः अनुशंसाम् आलक्ष्य एव एतेषां नियुक्ति विषयणे स्वीकृतिः दत्ता। राष्ट्रिय पञ्चायत पुरस्कार समारोहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य 42 संख्याकेभ्यः उत्कृष्ट पञ्चायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावसरे दीनदयालोपाध्याय पञ्चायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां 34 ग्राम पञ्चायतेभ्यः, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पञ्चायत सतत विकास पुरस्कार श्रेण्यां च 8 पञ्चायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। भारतीयर्थ विभागेन सूचितं यत् अद्य कर्णाटकस्य आभ्यन्तरीणेषु भागेषु, केरल माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकलेषु च तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामी दिवसद्वय पर्यन्तं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य, तडितपातस्य च संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडावार्तासु, महिलानां

0: अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैण्ड देशस्य टाउनटन नगरे काउण्टी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैण्डेन भारतं षड्भिः क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैण्डेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 104

0: 84 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज की खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए पेश है हालचाल। कार्यक्रम हालचाल में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, आज है 3 जून सन 2026 और यह है ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार वर्ष का आज 154वां दिन। अश्रोताओं बताते चले, 3 जून आज का दिन हर साल इस दिन को स्वास्थ्य सादगी और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग।

3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं हम लोग, जिसकी शुरुआत तो सन 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इसका उद्देश्य साइकिल को एक सस्ता, सरल और सबसे बड़ी बात पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन के रूप में बढ़ावा देना है। भारत सरकार भी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट का प्रोत्साहन कर रही है ताकि प्रदूषण कम हो और लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके।

फिल्म जगत का एक कार्यक्रम में श्रोता हूँ। हालचाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, और आपको कार्यक्रम में हम याद करते चले हैं कि आज के ही दिन सन 1665 में इतिहास की निगाह से देखें तो राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच ऐतिहासिक पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, और आज के ही दिन सन 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की थी।

आज के दिन यानी 3 जून सन 1951 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कवि और साहित्यकार चंद्रकांत देवताले का जन्म हुआ था। और आज के ही दिन सन 1930 में जॉर्ज फर्नांडिस भारत के प्रमुख राजनेता और पूर्व रक्षा मंत्री का भी आज के दिन जन्म हुआ था सन 1930 में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम हाल चाल, यही आकाशवाणी पटना है। लीजिए प्रस्तुत है अब कुछ गीत। कलाकार हैं शुभ्रा चटर्जी। पहले सुनते हैं इनकी आवाज में आरसी प्रसाद सिंह का लिखा ये।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रभा अत्रे का शास्त्रीय गायन में राग तीसी विलंबित रचना एक ताल में और दूसरी रचना की बंदिश तीन ताल में निबद्ध।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रभा अत्रे के शास्त्रीय गायन में राग देसी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का आज का हमारा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी पटना है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: AIR at 90. हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
5: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। नवन्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफी नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
7: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
8: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
7: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
9: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
7: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल

0: arts.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल, अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a five-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman, elected President of 81st Session of UN General Assembly, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New Delhi says the move will further enhance people-to-people ties between India and Germany. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1. And now the news in detail. Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 5-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit.
3: The discussions will involve full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in the areas of energy, trade, investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. India is an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian public sector undertakings have made significant investment in Venezuela in the energy sector, and they are keen to explore more opportunities to further enhance their presence.
2: Our correspondent has filed this report.
4: India and Venezuela share friendly relations, particularly in the areas of energy and trade. The visit is expected to strengthen bilateral ties and deepen cooperation between the two countries across several sectors. The Venezuelan delegation will visit facilities related to the energy, pharmaceutical and automobile sectors. The visit aims to explore opportunities for collaboration and gain insights into India's technological and industrial capabilities. With Ishani and Dipendra, Tripti Srivastava, Akashvani News, Delhi.
2: Senior Congress leader D.K. Shivkumar will be sworn in as Chief Minister of Karnataka today. Governor Thawar Chand Gehlot will administer the oath of office and secrecy to Mr. Shivkumar and members of new cabinet at Lok Bhavan in Bengaluru at 4:05 p.m. More from our correspondent.
5: After Siddaramaiah stepped down as CM on May 28, the Congress Legislature Party had elected 64-year-old D.K. Shivkumar as its leader, paving the way for him to assume the office today. Congress leader Rahul Gandhi, National President Mallikarjun Kharge, Congress General Secretaries K.C. Venugopal and Randeep Singh Surjewala, and some Congress chief ministers, religious leaders, laborers, writers, actors, and prominent businessmen and industrialists have been invited for the swearing-in ceremony. The students of Doddalahalli Government School have also been called for the ceremony, as it is the place from where Shivkumar hails from. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
2: West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari will launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. More from our correspondent.
6: In the first phase, beneficiaries will start receiving rupees 3000 directly into their bank accounts from today. It is initially estimated that nearly 2 crore women will benefit from this scheme. At Navarnu, the inauguration ceremony will take place at 12:30 p.m. attended by Minister Rugnimitra Paul of the Department of Women, Child Development and Social Welfare. The Chief Minister's program will be connected via video conference to every block and municipality in the state. Immediately after the inauguration, 100 selected Annapurna Yojana beneficiaries in each block and municipality will be handed approval letters. Similarly, 100 beneficiaries in the Kolkata Municipal Corporation area will also receive these letters. Beneficiaries have been given 90 days to register under this scheme. Women aged between 25 and 60 years will be eligible for this benefit. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: Ministry of Tribal Affairs will organize the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्ज आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा

0: बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अक़्वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजर कर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैनल अक्वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। अब खबरें तफसील से। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्स आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान वो भारत वेनेजुएला के ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दो तरफा बातचीत करेंगी। दोनों ममालिक तिजारत सरमायाकारी तवानाई काबिल तजदीद तवानाई हिफ्जान सेहत और दवा साजी समेत अहम शोबों में बाहमी तआवुन के इम्कानात का जायजा लेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के उमूर खारजा मईशत खजाने और साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक वजरा पर मुश्तमिल एक आला सतही वफद भी मोहतरमा रोड्रिग्स भी के हमरा भारत पहुंचेगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारत और वेनेजुएला के दरमियान खास तौर पर तवानाई और तजारत के शोबों में दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस दौरे से दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तहकम होने और मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन में मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। वजीर आजम के साथ बातचीत के दौरान तवानाई की यकीनी फराहमी, तजारत और सरमायाकारी, दवा साजी, हिफ्जान सेहत, नकलो हमल और काबिल तजदीद तवानाई समेत बाहमी मफाद के शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वेनेजुएला का वफद तवानाई, दवा साजी और ऑटोमोबाइल से मुतालिक शोबों से वाबस्ता इदारों का दौरा करेगा। इस दौरे का मकसद इश्तराक के मौके का जायजा लेना और भारत की तकनीकी और सनती सलाहियतों के बारे में अहम मालूमात हासिल करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: भारत की ब्रिक्स सदारत में आज ओडिशा के शहर पुरी में ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की पहली जाती तौर पर तकनीकी मीटिंग शुरू हो रही है। इस 3 रोजा मीटिंग में 11 ब्रिक्स और पार्टनर ममालिक के मंदुबीन, पॉलिसी साज और आफात के बंदोबस्त के माहिरीन शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में आलमी खित्ते जनूब में आफात के ताल्लुक से लचकदारी को मुस्तहकम करने, पायदार तरक्की को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डीके शिवकुमार को आज दोपहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। रियासत के गवर्नर थावरचंद गहलोत आज शाम 4 बजे बेंगलुरु में वाकई लोक भवन में जनाब शिवकुमार और नई काबीना के अरकान को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। इससे पहले जनाब सिद्धरमैया के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद जनाब शिवकुमार के लिए इस आला ओहदे के लिए रास्ता साफ हो गया था। इसके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस में लंबे अरसे से इक्तदार के लिए जारी रस्साकशी भी खत्म हो गई। जनाब शिवकुमार को 2023 के असेंबली इंतखाबात में पार्टी की जीत के वक्त से ही इस आला ओहदे के लिए उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। जुमेरात को जनाब सिद्धरमैया ने बेंगलुरु में वाकई अपनी रिहाइशगाह पर सुबह मुनाकिद होने वाली एक मीटिंग में अपनी काबीना के वजरा को अपने इस्तीफे के ताल्लुक से बताया था और इस बात का इशारा दिया था कि कांग्रेस आला कमान की हिदायत के मुताबिक जनाब शिवकुमार वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। मगरबी बंगाल हुकूमत आज समाजी फलाह बहबूद की एक बड़ी पहल अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेगी। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी इस स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। इस इफ्तिताही तकरीब में अन्नपूर्णा योजना के मुस्तफिदीन तमाम ब्लॉक्स, म्यूनसिपल्टियों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। मकामी सतह पर शिरकत को यकीनी बनाने के लिए अरकान असेंबली को मकामी सतह पर प्रोग्रामों में मदद किया गया है और वजीर आला का असल प्रोग्राम तमाम ब्लॉक और म्यूनसिपल हेडक्वार्टर्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बराह रास्त नशर किया जाएगा। वजीर आला के इफ्तिताही खिताब के फौरन बाद इजाजतनामे तकसीम किए जाएंगे। हर ब्लॉक म्यूनसिपल्टी और कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 100 मुंतखब मुस्तफिदीन बाकायदा इजाजतनामे हासिल करेंगे। पहले मरहले में आज से मुस्तफिदीन को 3,000 रुपये बराह रास्त उनके खातों में मिलने शुरू हो जाएंगे। नाबंदा में इफ्तिताही तकरीब 12:30 बजे मुनाकिद की जाएगी, जिसमें खवातीन, बच्चों की तरक्की और समाजी बहबूद से मुतालिक महकमे की वजीर अग्निमित्र पॉल शिरकत करेंगे।

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों किसानों ख्वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आपके लिए अहम शोबों में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर एक खुसूसी फीचर लेकर आया है। आज हम मुतवस्सित तबके की बहबूद के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 साल में हुकूमत ने वसी पैमाने पर इस्लाहात करके मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाया है। आसान टैक्स निजाम और मजबूत बैंकिंग इंश्योरेंस और पेंशन के निजाम की वजह से उनके माली तहफुज में इजाफा हुआ है। नए टैक्स निजाम के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले अफराद हरगिज टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। खासतौर पर मुतवस्सित तबके के लिए जीएसटी निजाम ने टैक्सों को आसान बनाकर और रोजमर्रा के अखराजात को कम करके 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने करोड़ों लोगों को महफूज मकानात फराहम करके उनकी जिंदगियों को बदल दिया है, जिससे कई ठोस फायदे हुए हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने कहा कि ये स्कीम गरीबों के लिए रिहाइश को यकीनी बना रही है और किराए के मकानात में रहने वालों के लिए राहत का बाइस बन रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 43.52 करोड़ हेल्थ कार्ड्स बनाए हैं, जिससे सेहत की देखभाल के तहफुज तक रसाई में इजाफा हुआ है। जबकि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना स्कीम जन औषधि केंद्रों के जरिए 50% से 80% कम कीमतों पर मयारी जेनरिक अद्वियात फराहम कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बिहार के ब्रह्मदेव ने कहा कि इन केंद्रों पर अद्वियात मार्केट के मुकाबले इंतहाई सस्ती कीमत पर दस्तयाब हैं।
3: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का भी सलाह है कि जल्द उसी से दवाई खरीदें।
1: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। डॉक्टर रहमान को अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के लिए कराए गए इंतखाब में कामयाबी हासिल हुई है। उन्हें 99 वोट मिले, जबकि इस कसीर मुल्क निज़ाम के लिए कुब्रुस के खसूसी सफीर एंड्रिस काकोरिस को 91 वोट मिले। अक्वामे मुत्तहिदा के आला मुज़ाकराती पॉलिसी साज और नुमाइंदगी करने वाले इदारे के सरबराह के तौर पर उनकी 1 साल की मुद्दत सितंबर में शुरू होगी। ये सदारत अलग अलग खित्तों के पास बारी बारी रहती है और इस मुकर्रर उसूल के मुताबिक 81वें सेशन के सदर को एशिया बहरुल काहिल ग्रुप से मुंतखब किया जाना था। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मुंतखबा सदर डॉक्टर रहमान ने कहा कि वो अपनी मुद्दत कार के दौरान इस इदारे का काम इंसानी हकूक पर खसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए करेंगे और सभी रुकन मुल्कों को फ़ाल रखेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर ने अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का सदर मुंतखब होने पर डॉक्टर रहमान को मुबारकबाद दी है। भारतीय शहरी जब जर्मन हवाई अड्डों से होकर किसी तीसरे मुल्क जाएंगे तो उन्हें आज से ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी। भारत में जर्मन सिफारतखाने ने ऐलान किया है कि इस छूट से उन भारतीय शहरियों के सफर में सहूलत हो जाएगी जो जर्मनी के रास्ते किसी दूसरे मुल्क जाते हैं। भारत ने अपने शहरियों के लिए ट्रांजिट वीजा को खत्म करने के लिए जर्मनी के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। वजारत खारजा ने कहा कि यह ऐलान इस साल जनवरी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के दरमियान बातचीत के बाद किया गया है, जब जनाब फ्रेडरिक भारत के दौरे पर आए थे। वजारत ने कहा कि इस नए इंतजाम से दोनों मुल्कों के दरमियान अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को मजीद फरोग हासिल होगा। जम्मू कश्मीर में रियासती इंतखाबी कमीशन आज से आला सतह की 2 रोजा मीटिंग मुनाकिद करेगा। ये मीटिंग जिला इंतखाबी अफसरान और दीगर शख्सियतों के साथ की जाएगी, जिसका मकसद मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इस इलाके में पंचायत और ज़िला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेना है।

0: नामा निगार ने बताया कि रियासती इंतखाबी कमिश्नर शांत मनु इस मीटिंग की सदारत करेंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और ब्लॉक तरक्याती कौंसिलों का कामकाज 9 जनवरी 2024 को रोक दिया गया था। बल्दियाती इदारों की मुद्दत कार अक्टूबर नवंबर 2023 और जिला तरक्याती कौंसिलों की मुद्दत कार 24 फरवरी 2026 को मुकम्मल हो गई थी। हुकूमत ने साल 2026 के प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए नामजदगियां तलब की हैं। नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ये बावकार अवार्ड सदर जमहूरिया की जानिब से ऐसे बच्चों को अता किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक खिदमत, माहौलियात, खेलकूद, आर्ट और कल्चर और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ मैदानों में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हों। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तूफानी झक्कड़ की सूरत हाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने केरला और माहे में अगले 2 से 3 दिनों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कल तक अंडमान और निकोबार जजायर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश और शिमाल मशरकी खित्ते में गरज चमक और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। खवातीन क्रिकेट में कल रात टोरंटो में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 बैन अलावी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत हासिल करके भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। हेथर नाइट और एलिस कैप्सी की शानदार शराकत दारी की बदौलत इंग्लैंड ने आसानी से 180 रन का निशाना हासिल कर लिया। एलिस कैप्सी को इस मैच और सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय खवातीन ने 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने 18.3 ओवर्स में 4 विकेट पर 184 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की हलफबरदारी से मुतल्लिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार की सुर्खी है, 5 नए जजों को हलफ दिलाया गया, सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 37 हुई। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, मोदी सरकार ने CBSE चेयरमैन व सेक्रेटरी को ओहदे से हटाया, पेपर लीक मामले में कोताहियों की जांच कराएगी हुकूमत। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, दिल्ली में BJP सदर से नेपाल के वफद की मुलाकात। अखबारात की एक और अहम सुर्खी है, भारत और जनूबी अफ्रीका ने 2 तरफा रिश्तों को और मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। अखबार प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि मजबूत, खुशहाल और खुदकफील भारत की तामीर में ताउन दे कबायली नौजवान।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्स आज से भारत के 5 रोजा दौरे पर रहेंगी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा DK शिवकुमार को आज से पहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी रियासत में अहल खवातीन को 3,000 रुपये माहाना फराहम करने की अन्नपूर्णा योजना का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के वजीर खारजा खलीलुर रहमान को अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें सेशन का सदर मुंतखब किया गया है। वजीर खारजा SJ शंकर ने उन्हें मुबारकबाद दी। जर्मनी ने भारतीय बाशिंदों के लिए उसके हवाई अड्डे से गुजर कर जाने वाले मुसाफिरों के लिए ट्रांजिट वीजा की जरूरत आज से खत्म कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलाक्वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हरा कर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी पटना है, कुछ ही देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
3: सावधान, क्या आप जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
4: डेयरी एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में 25 चीनी मिलें 2030 तक चालू हो जाएंगी। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 5 जून को पदभार ग्रहण करेंगी। सहयोग शिविर के दौरान अब तक 1,59,000 से अधिक मामलों का हुआ निपटारा। 2,500 पदाधिकारियों को जारी किया गया नोटिस। और मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में 25 चीनी मिलें 2030 तक चालू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में आयोजित सहयोग शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में जब वोट मांगने आएंगे तब इन मिलों में काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को इससे जल्द खाली करने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण विभाग आवास आधिकारिक तौर पर आवंटित लोगों को सौंपेगा। श्री चौधरी ने विपक्षी नेताओं पर सरकारी संपत्ति को निजी संपत्ति समझकर कब्जा जमाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसे हर हाल में खाली करना होगा।
1: कुछ लोगों को लगता है मेरा घर खाली हो जाएगा, पक्का खाली होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है। ये ध्यान रखिएगा, घर तो खाली करना ही पड़ेगा, कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। इससे पहले न्यायमूर्ति मीनाक्षी सिक्किम उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थीं। वे पटना हाई कोर्ट की दूसरी महिला और 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगी। इधर देश के मुख्य न्यायाधीश

0: न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर मुजफ्फरपुर के चैनपुर गांव के रहने वाले हैं। प्रदेश भर में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान अब तक 81% मामलों का निष्पादन किया गया है। राज्य सरकार के जारी आंकड़ों के अनुसार पंचायतों और नगर निकायों में 2000 से अधिक स्थानों पर सहयोग शिविर लगाया गया। इस दौरान सहयोग पोर्टल पर 2,06,928 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1,59,000 से अधिक शिकायतों का निष्पादन कर दिया गया है। शेखपुरा, कटिहार, पश्चिम चंपारण, नालंदा, मुजफ्फरपुर, अररिया, सारण और सहरसा जिले में 90% मामलों का निपटारा किया गया। वहीं 2,500 पदाधिकारियों को 10 दिनों के भीतर मामले के निष्पादन नहीं करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के संकल्प सबका सम्मान जीवन आसान के तहत 19 मई से प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन आज 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव और बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर श्री नवीन आज पटना में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवीन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पटना में क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्षों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद श्री नवीन ने बांकीपुर के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्य में इस वर्ष रबी मौसम में फसल क्षति के लिए जल्द ही 2 लाख किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने कृषि विभाग को किसानों की फसल क्षतिपूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रबी मौसम में आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और बारिश से प्रदेश के 13 जिलों में गेहूं, चना, मसूर, मक्का, फल और सब्जी की क्षतिपूर्ति के लिए किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि दी जाएगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले में 8 अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई की है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने विभागीय संचिका पर मंजूरी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। गौरतलब है कि बीते 1 सप्ताह के दौरान विभाग ने 23 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारियों को शपथ पत्र देकर बताना होगा कि उनके क्षेत्र में कोई भी भूमिहीन परिवार नहीं है। श्री जायसवाल ने पटना में समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले संबंधित आवेदक से संवाद करें। उन्होंने दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई मापी सहित आम जन से जुड़ी सभी राजस्व मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पीएचडी में नामांकन के लिए होने वाली परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यूजीसी की अधिसूचना के अनुसार अब राज्य का कोई भी विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। इसके बदले यूजीसी नेट स्कोर को ही प्रवेश का आधार बनाया जाएगा। इस संबंध में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि पीएचडी में नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह बदल गई है। सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजे पत्र में कहा गया है कि यूजीसी की अधिसूचना और कुलाधिपति के निर्देशों के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कर कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना।

0: अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
0: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। वहीं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43 करोड़ 52 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
6: एक साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
5: दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में 2 श्रेणियों में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ग्रामीण विकास, सुशासन, जन भागीदारी, स्वच्छता, डिजिटल सेवाओं तथा सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सम्मानित करेंगे। बिहार की भी कई पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने तकनीकी गड़बड़ी होने के कारण 30 मई को प्रभावित CUET UG 2026 परीक्षा का दोबारा आयोजन करने का निर्णय लिया है। पुनर्परीक्षा 6 और 7 जून को आयोजित होगी। NTA ने प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए संशोधित प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है।
7: अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है।
4: पटना जिले के कदमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत खान कोचिंग संस्थान में बीती रात गोलीबारी, तोड़फोड़ और मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि CCTV फुटेज से फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। खान सर ने अपने संस्थान पर 8 से 10 राउंड फायरिंग किए जाने का आरोप लगाया है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के नवरत्न बाजार में एक युवक की गोली मारकर हत्या मामले में त्वरित कार्रवाई कर पुलिस ने मुख्य आरोपी टिंकू सोनी उर्फ अजय सोनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 35 किलो गांजा और 36 लीटर नेपाली शराब

बरामद की गई है। औरंगाबाद जिले के नबीनगर स्थित एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर परियोजना के बालिका विकास के लिए बालिका सशक्तिकरण अभियान शुरू हो गया है। सीआईएसएफ के महानिरीक्षक प्रबोध चंद्र, एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक एल के बेहरा और अन्य ने इसका शुभारंभ किया। राज्य सरकार प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधी नौकरी देगी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं को अब बिना किसी परीक्षा के सीधी नौकरी दी जाएगी। खिलाड़ियों के मेडल के हिसाब से उनके पद तय होंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने आगामी सत्र 2026-27 के लिए चयनकर्ता और सहयोगी स्टाफ के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा है। जारी विज्ञापन के अनुसार पुरुष सीनियर चयन समिति, जूनियर क्रिकेट समिति और महिला चयन समिति के लिए चयनकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा मुख्य कोच, बल्लेबाजी कोच, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण कोच सहित कई सहयोगी स्टाफ पदों पर भी आवेदन मांगे गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग मामले में केंद्र सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। अखबार लिखता है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए। दैनिक जागरण लिखता है, प्रदेश के मदरसों की जांच के लिए हर प्रखंड में बनेगी 3 सदस्यीय कमेटी। दैनिक भास्कर की मुख्य खबर है, बिहार का गंगा पथ, 3 नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली लखनऊ की राह आसान। प्रभात खबर ने औद्योगिक विकास से जुड़ी खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, अमूल फतुहा में लगाएगी 200 करोड़ रुपए की यूनिट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में 25 चीनी मिलें 2030 तक चालू हो जाएंगी। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, 5 जून को पदभार ग्रहण करेंगे। सहयोग शिविर के दौरान अब तक 1,59,000 से अधिक मामलों का निपटारा हुआ, 2500 पदाधिकारियों को जारी किया गया नोटिस। और मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है, लीजिए पेश है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

0: अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाज में ये गजल। आइए अब करते हैं आज की बात। बाई साइकिल, आज यौम में बाई साइकिल भी है, सवारियों का सफर जो एक जमाने से चलता आ रहा है और अब तक बिल्कुल एवरग्रीन की तरह अभी तक चल रहा है और शायद हमेशा चलता रहेगा। अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से हर साल 3 जून को यौमे बाई साइकिल मनाया जाता है, जिसका मकसद बाई साइकिल की इनफ्रादियत, पायदारी और इस्तादात को उजागर करना है, ताकि सेहत को फ़रोग दिया जा सके और माहौल दोस्त यानी इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को आम किया जा सके। साइकिल कार्बन के अखराज को कम करने और उसको आलूदगी, जैसे अगर अखराज उसके कम होंगे कार्बन के तो काल आलूदगी ख़त्म हो जाएगी, और उससे साइकिल चलाने वाले के, इसके अलावा साइकिल चलाने वाले के कार्डियो वास्कुलर सिस्टम भी बेहतर रहते हैं, वज़न कंट्रोल में रहता है और पट्टों को मजबूती भी मिलती है। साइकिल हमेशा से मुनासिब है और बेहतरीन सवारी रही है। साइकिल जो इस वक्त जहाँ पर आज के दौर में पेट्रोल और डीजल इतना का बहरान हो गया है, ऐसे में साइकिल रोज़मर्रा के सफ़र में सस्ती सवारी है। इसके अलावा पेट्रोल व डीजल से निकलने वाले CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो माहौलियात को आलूदा करते हैं, जिससे सेहत भी मुतासिर होती है, साइकिल की सवारी हमसे, हम इन सारी चीज़ों से महफूज रह सकते हैं। ये दिन हमें यह पैगाम देता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ाएं, ताकि हम सेहतमंद भी रहें और माहौल भी साफ़ रहे। लोगों को साइकिल की अहमियत समझनी चाहिए, ख़ास तौर से बच्चों और नौजवानों को साइकिल चलाने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि ये एक मुसबत, सेहतमंद और खुशगवार सरगर्मी भी है। साइकिल की तारीख बहुत पुरानी है। साइकिल करीबन 19वीं सदी में ईजाद की गई, तब से अब तक ये दुनिया की मकबूल सवारी रही है। वक्त के साथ साथ इसकी क्वालिटी बेहतर हुई, इसका मैार बेहतर बनाया गया और एक से एक नई डिज़ाइनें आती गईं और ज़्यादा बेहतर और उस स्मूथ साइकिलें चलने लगीं। सरकारी स्कूलों में बच्चों को साइकिल दी जाने लगी, लड़कियों में हौसला पैदा हुआ। प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत सारे बच्चे और मुलाज़मीन भी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, अभी भी साइकिल से आते जाते हैं, और इनकी सेहत मोटर बाइक चलाने वालों के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी है। तो और इन्हें पेट्रोल की फिक्र भी नहीं है, इसलिए बेहतर है कि हम भी साइकिल की सवारी फिर से शुरू करें। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की जानिब और सुनते हैं आज का मकाला, जिसका मौजू है कैफ़े आज़मी बहैसियत शायर व अदीब। मकाला निगार है सैयद शादाब आलम।
1: कैफी आदमी का नाम नामवर अदीब व शायर दोनों हैसियत से इंतहाई अदब व एहतराम से लिया जाता है। उन्होंने एक अदीब के साथ शायर के तौर पर उर्दू जबान की गिरा कदर खिदमात अंजाम देने के साथ शानदार नगमा निगारी के जरिए फिल्मों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और सदाबहार रोमानी संजीदा और हुब्बुल वतनी के जज्बों से सरसार नगमे तहरीर करके जहाँ फिल्मों की कामयाबी की जमानत बने, वहीं एक नगमा निगार के तौर पर एक मुनफरद मुकाम व मरतबा हासिल करने के साथ काफी इज्जत व शोहरत हासिल की। कैफी आदमी की पैदाश एक तालीम याफ्ता

अदबी खानदान में 14 जनवरी 1919 में रियासत उत्तर प्रदेश की जिला आजमगढ़ में हुई थी। उनका असली नाम सैयद अथर हुसैन रिजवी था। उन्होंने अपना लकब आजमगढ़ के नाम पर कैफी आजमी रखा और वो इसी नाम से काफी मशहूर हुए। कैफी आजमी के 3 भाई भी मशहूर शायर थे। कैफी आजमी ने अपने घर पर अपने वालिद मोहतरम से अरबी, फारसी, उर्दू की इब्तदाई तालीम हासिल की। उनके वालिद ने उन्हें आला दीनी तालीम के लिए रियासत उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ में वाकई मारूफ दीनी इदारा सुल्तानुल मदारिस में भेजा। सुल्तानुल मदारिस में आला दिली तालीम हासिल करने के दौरान उन्होंने मदरसा की रिवायती और फरसूदा निजाम तालीम पर सवाल उठाए। उन्होंने मदरसा की शिद्दत पसंदी और सख्त ढांचे के खिलाफ बागियाना नोयत का मुजाहरा करते हुए सदाए एहतजाज बुलंद किया और इंतजामिया से तब्दीलियों का पुरजोर मुतालबा किया। उनके बागी रुख इख्तियार करने की वजह से उन्हें मदरसा से निकाल दिया गया। बाद में उनका रुझान तरक्की पसंद उर्दू तहरीक की तरफ मायल हुआ और उन्होंने इनकलाबी और फिरका वारियत मुखालिफ नजरिया तैयार करते हुए 1943 में सियासी जमात कम्युनिस्ट पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस अरसे के दौरान लखनऊ के सरकर्दा तरक्की पसंद मुसन्निफिन ने उन्हें देखा और उनकी कायदाना सलाहियतों से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने उनमें एक उभरता हुआ शायर भी देखा और उनकी हर मुमकिन हौसला अफजाई की। नतीजतन आजमी ने बहसियत शायर खूब पजीराई हासिल करना शुरू कर दी और तरक्की पसंद मुसन्निफिन के तहरीक हिंद के रुकन बन गए। 24 साल की उम्र में कैफी ने कानपुर के टेक्सटाइल मिल इलाकों में सरगर्मियां शुरू कर दी। एक कुल वक्ती कारकुन के तौर पर उन्होंने आराम की जिंदगी छोड़ दी। हालांकि वो एक जिम्मेदार खानदान के चश्मचिराग थे, उनसे कहा गया कि वो अपना अड्डा मुंबई मुंतकिल करें, कारकुनों के दरमियान काम करें और बड़े जोश वलवले के साथ पार्टी की सरगर्मियों में हिस्सा लें। यही वजह है कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगी ने उन्हें सामाजिक तौर पर शौरी शायरी की राह पर गामजन किया और यही वजह है कि कैफी आदमी की शायरी सामाजिक नाबराबरी, गरीबों, मजदूरों का इस्तेहसाल को उजागर करती हैं। उनके जरिए मौजूदा निजाम को खत्म करके सामाजिक बराबरी और सबों को मसावी हकूक देने की सच्ची वकालत करती हैं। कैफी आदमी ने बाजाबता तौर पर जदीद तालीम तो हासिल नहीं की, लेकिन अपने मुताला का शौक और उर्दू शेर व अदब से गहरी दिलचस्पी और वाबस्तगी की वजह से उन्होंने तरक्की पसंद शायरों में अपना एक बुलंद मकाम और मर्तबा हासिल किया। पीरजादा कासिम, जॉन एलिया व दीगर मारूफ हस्तियों के साथ उन्होंने 20वीं सदी के कई यादगार मुशायरों में शिरकत करके बहुत दादे तहसीन हासिल की। वो चूंकि कम्युनिस्ट नजरिया के हामिल इंसान थे, इसलिए अपने शेर व शायरी में वो हिंदुस्तान को सोशलिस्ट मुल्क देखना चाहते थे। मुल्क तकसीम के दौरान बरतानवी पुलिस ने उन्हें कम्युनिस्ट होने की वजह से ताज के साथ गिरफ्तार किया था। महज 11 साल की उम्र में कैफी आजमी ने अपनी पहली गजल सुनाई, जिसके एक शेर को मुशायरा के सदर मनी जायसी ने बहुत पसंद किया और उनके बड़े भाई समेत मुतद्दिम सामिन कराम ने उसे बहुत सराहा। अपनी शायरी को मोहब्बत और रोमांस के बार बार मौजूआत के साथ उन्होंने इस अंदाज में ढाला कि वो इस्तारों से भरा हुआ था। उनकी शायरी मुनसिफाना सामाजिक निजाम की तस्किल का पैगाम देती है। उनकी शायरी की अपनी इनफरादी खूबियाँ हैं, खास तौर पर जज्बात की शिद्दत और माशरे के पसमानदा तबके के तई हमदर्दी और हमदर्दी का भरपूर जज्बा रखती है। उनकी नजमें भी अपने भरपूर तस्वीर कसे के लिए काबिल जिक्र हैं और इस लिहाज से उर्दू शायरी में उनकी शिरकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश भी नहीं किया जा सकता है। आजमी की नज़मों का पहला मजमुआ झनकार 1943 में शाये हुआ था। उनकी अहम तसानीफ में आखिरी सब, सरमाया, आवारा सजदे, कैफियात, नए गुलिस्तां, उर्दू बिलीस के लिए मुतद्दिद मजामीन का मजमुआ मेरी आवाज़ सुनो काबिल जिक्र हैं। उनकी मशहूर नज़में औरत, मकान, दायरा, सांप और बहरूपनी मशहूर हैं। फिल्मों में आजमी ने एक नगमा निगार, मुसन्निफ और हिदायतकार समेत मुतद्दिद मैदान में अपनी उम्दा और शानदार सलाहियतों का लोहा मनवाया। कैफी आजमी ने पहली फिल्मी गजलें मारूफ हिदायतकार शाहिद लतीफ की हिदायतकारी में बनी फिल्म बुजदिल के लिए 1951 में लिखी, जो कि मारूफ व मुमताज मौसीकार SD बर्मन की मौसीकी में रिलीज हुई थी। बतौर मुसन्निफ उनका शुरुआती काम नानू भाई वकील की फिल्मों जैसे यहूदी की बेटी 1956, परवीन 1957, मिस पंजाब मेल 1958 और चांद 1958 के लिए था। ख्वाजा अहमद अब्बास और बिमल राय जैसे मारूफ व मुमताज हिदायतकारों ने जहां नया सिनेमा बनाने की कोशिश की, वहीं साहिल लुधियानवी, जानिसार अख्तर, मजरू सुल्तानपुरी और कैफी आदमी जैसे मुसन्निफिन ने हिंदी फिल्म नगमों के अल्फाज और अंदाज को बदलकर हिंदी फिल्मों के नगमों और बोल के धुनों में एक नई लहर पैदा की, जो बहुत मकबूल हुआ। 1961 की फिल्म
गुलगुला और सबनम में कैफी आजमी का तहरीर किया गया नगमा गुलकार मोहम्मद रफी की आवाज में जाने क्या।

मुझ में ने धूम मचा दी थी। इस फिल्म में नगमा तहरीर करने के साथ उन्होंने स्क्रिप्ट भी तहरीर किया था। कैफी आदमी का एक मुसन्निफ के तौर पर सबसे बड़ा कारनामा मारूफ हिदायतकार चेतन आनंद की फिल्म हीर रांझा 1970 थी, जिसके पूरे मुकालमे नज्म पोएम में थी। मारूफ मुसन्निफा इस्मत चुगताई की कहानी पर मबनी फिल्म गर्म हवा 1973 बेहतरीन और पुरअसर स्क्रिप्ट मुकालमों के लिए कैफी आदमी ने खूब तारीफ हासिल की। श्याम बेंगल की फिल्म मंथन 1976 समेत मुतअद्दिद फिल्मों के डायलॉग उन्होंने तहरीर किए। एक नगमा निकार के तौर पर मारूफ हिदायतकार गुरुदत्त की फिल्म कागज के पुल 1959 के लिए प्ले बैक गुलकारों के बादशाह मोहम्मद रफी और प्ले बैक गुलकाराओं के मलका लता की आवाज में नाव कागज की गहरा है पानी, जिंदगी की यही है कहानी, फिर भी हल हाल में मुस्कुरा के दुनियादारी पड़ेगी निभानी। जिंदगी की हकीकत की आईनादार है। चेतन आनंद की फिल्म हकीकत 1964, हिंदुस्तान और चीन के माबन 1962 में हुई जंग पर मबनी फिल्म में कैफी आदमी का तहरीर किया गया। हुब्बुल वतनी के जज्बों से सरसार नगमा गुलकार मोहम्मद रफी की आवाज में कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हुब्बुल वतनी के जज्बों को फरोग देने में कलीदी रोल अदा किया था, जिसे सुनकर आंखें अश्कबार हो जाती थी और यह नगमा बहुत मशहूर और मकबूल हुआ था। इस फिल्म में हो के मजबूर उसने मुझे भुलाया होगा, नगमा गुलकार मोहम्मद रफी, तलत महमूद और भूपेंद्र की आवाज में बहुत मकबूल हुआ था। इस फिल्म में बल्ला साहनी जयंत धर्मेंद्र ने मरकजी किरदार अदा किया था। कैफी आदमी ने कोहरा 1964 और नुकमा 1966, उसकी कहानी 1966, सास हिंदुस्तानी 1969, परवाना 1971, बावर्ची 1972, पाकिजा 1972, हंसते जख्म 1972 और रात दिन 1968 फिल्मों के स्क्रिप्ट तहरीर किए थे। 1967 के फिल्म नौनिहाल के लिए उन्होंने गुलकार मोहम्मद रफी की आवाज में गाया हुआ नगमा मेरी आवाज सुनो प्यार का राज सुनो वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के जनाजे की भीड़ के पेश नजर तहरीर किया गया था, जो बहुत मशहूर हुआ था। जब कैफी आदमी का 10 मई 2002 में 83 साल की उम्र में इंतकाल हुआ तो उनकी बेटी मारूफ अदाकारा सबाना आजमी ने इस गाने को राहत व सकून हासिल करने का जरिया बताया था। कैफी आदमी ने बाइबिल की कहानियां के बोल भी लिखे, जो हिंदुस्तान में नशर होने वाला पहला आसानवी टेलीविजन शो था। उन्होंने 1995 नसीम के दादा का यादगारी किरदार भी निभाया था। आदमी की एक दस्तावेजी फिल्म का मौजूद दीक्षा 2015 था, जिसकी हिदायतकारी अमन कुमार ने की थी। उनकी अहलिया शौकत आजमी एक मारूफ थिएटर और फिल्म अदाकारा, बेटा बाबा आजमी एक सिनेमाटोग्राफर, सबाना आजमी अदाकारा और दामाद जावेद अख्तर मारूफ शायर और स्क्रिप्ट राइटर हैं। कैफी आजमी की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें हुकूमत हिंद और मुतअद्दिद मशहूर इदारों की जानिब से कई एजाजात से नवाजा गया था, जिनमें 1970 में फिल्म सात हिंदुस्तानी में बेहतरीन धुन के लिए कौमी फिल्म एवार्ड, 1973 में फिल्म गर्म हवा के लिए बेहतरीन कहानी के लिए कौमी फिल्म एवार्ड, 1974 में सबसे अहम शहरी एजाद पद्मश्री से सरफराज किया गया था। उसके अलावा उनके मजमूए आवारा सजदे के लिए 1975 में साहित्य एकेडमी अवार्ड और महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी का खसूसी अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, राइटर एसोसिएशन का लोटस अवार्ड, कौमी यकजहती के लिए सदर जमहूरिया अवार्ड, 1988 में हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से अवार्ड हासिल होने के साथ ताहयात कारनामे के लिए साहित्य एकेडमी फेलोशिप से नवाजा गया था। साल 2000 में उन्हें हुकूमत दिल्ली और दिल्ली उर्दू एकेडमी की तरफ से पहला मिलेनियम अवार्ड और विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन कलकत्ता से उन्हें डॉक्टरेट से नवाजा गया था। साबिक स्पीकर मोहतरम सोमनाथ चटर्जी ने उनके नाम पर 22 फरवरी 2005 को नई दिल्ली में सड़क का नाम कैफी आजमी सड़क रखा। हुकूमत ने कैफियत एक्सप्रेस नामी ट्रेन का भी इफ्तिताह किया था, जो उनके आबाई शहर आजमगढ़ से पुरानी दिल्ली तक चलती है। हैदराबाद में उनके नाम पर कैफी आजमी सड़क है। आर के पुरम नई दिल्ली में भी कैफी आजमी के नाम पर सड़क है। 1980 में कैफी आजमी ने अपना पद्म श्री अवार्ड इसलिए वापस कर दिया क्योंकि उस वक्त के उत्तर प्रदेश के वजीर आला वीर बहादुर सिंह ने यह तबसरा किया था कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान के तौर पर बोलने वाले को गधे पर बैठा कर परेड कराई जाए। वजीर आला के इस बयान से उन्होंने शदीद रद्द अमल किया था और वो बहुत बरहम हो गए थे और अपनी शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए उन्होंने अपना पद्म श्री अवार्ड भी वापस कर दिया था।

0: और उन्होंने कहा कि मैंने सारी जिंदगी उर्दू में लिखी है, इसलिए मुझे बतौर मुसन्निफ बतौर एहतजाज अपने लिए खड़ा होना चाहिए, जिससे साफ जाहिर होता है कि वह गैरत पसंद खुददार और आला जर्फ के इंसान थे।
1: सामिन अभी आप सुन रहे थे मकाला, मौजू था कैफी आज़मी बहसियत शायर व अदीब, और मकाला निगार थे सैयद शादाब आलम।

एक नई राह जमाने में निकाली मैंने, एक नई राह जमाने में निकाली मैंने, आज साइंस में मशहूर वतन मेरा है। और मकतब तवज्जो चाहूँगा कि नाम दुनिया में मुनव्वर है वतन का मुझसे, नाम दुनिया में मुनव्वर है वतन का मुझसे, नाम दुनिया में मुनव्वर है वतन का मुझसे, हक़ है मकबूल ज़ुबा मेरी सुखन मेरा है। नाम दुनिया में मुनव्वर है वतन का मुझसे, नाम दुनिया में मुनव्वर है वतन का मुझसे, हक़ है मकबूल ज़ुबा मेरी वतन मेरा है, हक़ है मकबूल ज़ुबा मेरी सुखन मेरा है, आसमां मेरा ज़मीं मेरी वतन मेरा है, चांद तारे हैं मेरे सारा गगन मेरा है। एक गज़ल और पेश खिदमत है, मतलब अर्ज़ है, नई सदी नए आलम का ओ बाब लिखें, नई सदी नए आलम का ओ बाब लिखें, नए आलम का ओ बाब लिखें, जदीद फिक्र नज़र की हम एक किताब लिखें, नई सदी नए आलम का ओ बाब लिखें, नई सदी नए आलम का ओ के अदब के हलक़े में जो आबो ताब से दम के, नई सदी का उसी को हम आफ्ताब लिखें।

अभी आप रहमत खान की लिखी ये गजल सुन रहे थे सलमा आगा की आवाज़ में। आइए अब अगली गजल सुनते हैं उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में।

दिनेश ठाकुर की लिखी ये गजल सुन रहे थे आप मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन की आवाज में। आइए अब अगली गजल सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में।

नसीम अजमेरी की लिखी गजल सुन रहे थे आप मिताली सिंह और भूपेन त्रेसे की आवाज़ में। इसी के साथ उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का वक्त अब यहीं ख़त्म होता है। ज़र्रीन फातिमा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

श्रोता भी सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन जी आकाशवाणी पटना है मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आइए सुनते हैं, अब ये गीत है जिसे मिलिया फिल्म जब वी मेट से। कलाकार हैं मोहित चौहान और साथी।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोता, ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मीनू पुरुषोत्तम और साथियों की आवाज में, जिसे हमने लिया था फिल्म दाग से। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं, ये गीत है उदित नारायण, कमल खान, के शान और अलका याग्निक का गाया हुआ। फिल्म का नाम है तेरे नाम।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडिया वेव बैंड के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोता हमारे प्रसारण डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप बने रहिए यूं ही आकाशवाणी पटना पे संतोष के साथ।

0: मोहब्बत इस फिल्म के लिए गाया गाना था। ये अभिजीत कृष्णमूर्ति, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ में। इसी के साथ फिल्म संगीत का आज का हमारा ही कार्यक्रम रसमंजरी अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम परिवार कल्याण। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बच्चों में मोटापा, डायबिटीज, एमिनिया विषय पर एक भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं परिवार कल्याण के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं बच्चों में मोटापा, डायबिटीज और एनीमिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं की चुनौतियां और बचाव के उपाय। हमारे समक्ष उपस्थित हैं आकाशवाणी के स्टूडियो में डॉक्टर विवेक कुमार पांडे। आप पटना के जाने माने अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आजकल की खास करके जीवन शैली जो है, बच्चों में मोटापा और डायबिटीज देखने को बहुत मिल रही है। एनीमिया तो पहले भी होती रही थी, पर आजकल के बच्चों में मोटापा और डायबिटीज भी देखने को मिलता है, तो क्या इसके कारण

0: पहले भी होती रही थी, पर
1: जी
0: आजकल के बच्चों में मोटापा और डायबिटीज भी देखने को मिलता है। तो क्या इसके कारण हैं? और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बच्चों में मोटापा को कब कहेंगे कि बच्चे मोटे हो गए हैं
1: जी
0: जरूरत से
1: जी
0: ज्यादा?
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है और बच्चों का लाइफ स्टाइल है वो पहले से काफ़ी अलग है, जिसके कारण बच्चों में वजन उनके एज और हाइट के अनुसार ज़्यादा हो जाता है, जिसको बॉडी मास इंडेक्स एक बोलते हैं, जिस पैमाना होता है जिसको डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि बच्चा एक अपने एज के अनुसार और लड़का है लड़की है उसके अनुसार उसका कितना वेट होना चाहिए। तो उसके अनुसार उसका जो वजन है वो अगर एक पैमाने से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग मोटापा के तौर पे, ओबेसिटी के तौर पे लेते हैं, जिसका अभी लगातार संख्या बढ़ते जा रहा है। बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी की जब जो प्रिविलेंस है वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में बढ़ते जा रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं।
0: जी
1: सबसे पहला कारण है कि सिडेंट्री लाइफ, मतलब बच्चों का जो खेलना कूदना, हम लोग के जो समय में जो हम लोग आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा रखते थे, वो आउटडोर एक्टिविटी किसी कारण से, जैसे उपलब्धता की वजह से, पार्क की उपलब्धता या खेलकूद के जगह की उपलब्धता, बच्चों का आपस में इंटरेक्शन की कमी के कारण, और एक गैजेट और टीवी मोबाइल ये सब के आने की वजह से कम हो गया है, जिसके वजह से उनका मोटापा बढ़ रहा है। दूसरा, उनका जो खान पान है वो हाई कैलोरी इंटेक है, जो खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन का सोर्स कम है और शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, उसमें खासतौर पर जंक फूड का ज़्यादा उसमें रोल है, जो कि बच्चों में मोटापा को बढ़ावा दे रहा है। तो ये सब विशेष कारण है कि बच्चे मोटे हो रहे हैं।
0: जी, और जैसे मधुमेह एक बीमारी जो है, पहले
1: जी
0: तो मानी जाती थी कि जो समृद्ध घराने के हैं लोग उन्हीं में ये होती है, मगर आजकल युवाओं में भी देखने को मिल रहा है, अब ये बच्चों में भी होना प्रारंभ हो गया है, तो ये
1: जी
0: कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है?
1: मधुमेह का जहाँ तक सवाल है, ये ज़्यादातर बड़े लोग में, ओल्ड एज में होता है, और ज़्यादातर जो सिडेंट्री लाइफ, ज़्यादा कम कैलोरी इंटेक करते हैं और कम काम करते हैं बॉडी से, तो उनके अंदर ही इसकी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन बच्चों में भी वही ओबेसिटी बढ़ रहा है तो उसके कारण आ रहा है। इसमें जो मधुमेह रहता है वो दो तरह का होता है, एक होता है कि एक जन्मजात कुछ कमी रहती है या शरीर में कुछ ऐसा इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण जो पैनक्रियाज है जहाँ से उसके लिए जूस इंसुलिन वगैरह निकलता है, वो अगर इंसुलिन निकलना कम हो जाता है तो एक बीमारी होती है बच्चों में जो पहले से भी चली आ रही है, वो ये नया नहीं है, वो डायबिटीज़ टाइप 1 बोलते हैं, जो बच्चों में काफ़ी घातक होता है। उसको हम लोग ऐसे प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, वो जब कभी वैसा वायरल इलनेस हो गया या कुछ इन्फेक्शन हो गया बॉडी में तो बच्चे के बॉडी में टेम्पोरली इंसुलिन पे असर डाल देता है, जिसके कारण बच्चों को मधुमेह टाइप 1 हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो मोटापा के कारण से हो रहा है, हाई कैलोरी लेने के कारण से, सेडेंट्री लाइफ के कारण से, उसको हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, उसको रोक सकते हैं और उसको बचाव कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं को कृपया बताएं कि ये जो बच्चों में मोटापा हो रहा है और मधुमेह हो रहा है, इससे क्या-क्या समस्याएं उभर सकती हैं? उनकी जीवन शैली किस तरीके से प्रभावित हो सकती है? माता-पिता की जीवन शैली किस तरीके से प्रभावित हो सकती है?
1: जी, जिन बच्चों में ओबेसिटी की समस्या है उनको आगे चल के डायबिटीज होने का खतरा, बीपी का खतरा, फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो जब भी वो मतलब सेडेंट्री लाइफ रहेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो बोन का भी डेवलपमेंट कम होगा, तो ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा बच्चों में मिलती हैं।
0: जी, तो इन समस्याओं से पार कैसे पाया जा सकता है? कैसे लोग अपनी जीवन शैली को रखें, अपने बच्चों को किस तरीके से ध्यान दें ताकि ये सब समस्याएं उभरे नहीं?
1: बच्चों पे जब से बच्चे का जन्म हो रहा है तभी से ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो शुरुआत में, जैसे आजकल मदर्स वर्किंग है तो फॉर्मूला फीड वगैरह ज़्यादा बच्चों को मिल रहा है, तो वो भी एक कारण है कि आप मदर का मिल्क नहीं मिला। शुरुआत बचाव का वहीं से करना है कि बच्चे को कोशिश करना है कि 6 महीने तक माँ का दूध मिले। जिन बच्चों को माँ का दूध मिला है उनमें ओबेसिटी की संख्या कम पाई गई है और डायबिटीज़ भी कम हुआ है उन बच्चों को, आगे चल के पूरे मतलब लाइफ लॉन्ग का ये स्टडी है।
0: जी
1: और फिर जब आगे बढ़ रहे हैं तो उनको जब खाना शुरू कर रहे हैं तो हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि चीनी की मात्रा ना के बराबर रखें। जब हम लोग 6 महीने के बाद से बच्चे को खाना देना शुरू करते हैं तो बहुत गार्जियन को लगता है कि नहीं, चीनी मिला देंगे तो बच्चा जल्दी से खा लेगा, तो ऐसा ना करें। उनको शुगर वाली चीजें कम दे। जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो वो तो मार्केट में अवेलेबल है, देखेगा बाकी बच्चों को देखेगा तो जंक फूड के तरफ जाएगा ही जाएगा। तो उनको समझाना है और जितना बचाव कर सकना है करना है कि कम से कम जंक फूड खाएं, कम से कम हाई कैलोरी वाली चीजें खाएं और फिजिकल एक्टिविटी जरूर कराएं। बच्चों को डेली 1 घंटा जरूर बाहर आउटडोर गेम में प्रमोट करें कि बच्चे खेलें दौड़ें, तब उससे इनको जरूर

0: होगा।
1: जी, ये तो हुई मोटापे की बात।
0: जी
1: अब एक समस्या बच्चों में ये भी होती है, एनीमिया की, खून की
0: जी
1: कमी की। उसके कारण बच्चे दुर्बल हो जाते हैं। और क्या सबसे पहले कारण क्या इसका होता है कि बच्चों में एनीमिया हो जाता है?
0: सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि जितने हमारे देश में बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी माँ एनीमिक है, मतलब मोर देन 50% मदर्स एनीमिक हैं, उनका शरीर में खून की कमी है। अगर हम लोग टेस्ट कराएंगे तो जितनी माएँ हैं मैक्सिमम में खून की कमी है ही, तो सबसे पहले तो माँ को खिलाना पिलाना पड़ेगा जब बच्चा गर्भ में है तब,
1: जी,
0: क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनको खून की कमी उसी वजह से हो रही
1: तो
0: है।
1: स्वस्थ आहार क्या लें माँ?
0: स्वस्थ आहार में बैलेंस डाइट बोलते हैं हम लोग, संतुलित आहार, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत है, जैसे जो अन्न है, अनाज है, चावल गेहूं जो भी अनाज है वो जरूरत है। उसका एक मात्रा फिक्स है कि 60% कार्बोहाइड्रेट रहेगा, 30% उसमें फिर 20% फैट रहेगा, और ऐसे 20% प्रोटीन, ऐसे करके बैलेंस उसका पूरा लेना है, जिसमें कि आपको फल भी रहे, सब्जी की मात्रा भी संतुलित रहे। ये नहीं कि केवल चावल ही खा रहे हैं और फल नहीं खा रहे हैं, सब्जी नहीं खा रहे हैं, दाल नहीं ले रहे हैं प्रॉपर मात्रा में। अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडे का सेवन करें, नहीं खाते हैं तो दूध और सोयाबीन और फल वगैरह जो संभव हो, जो हमारे इजीली अवेलेबल है, तो वो सभी
1: विशेषकर
0: चीज़ को बैलेंस डाइट मदर को देना ज़रूरी है। तो ज़्यादातर जो नवजात शिशु जो जन्म लेंगे उनमें खून की मात्रा सही रहेगी।
1: जी, तो विशेषकर जिन माओं में जो बनने
0: जी
1: वाली हैं
0: जी जी
1: माँ, तो उनमें खून की अगर कमी होती है तो वो किस प्रकार का आहार लें, और क्या आहार से संपूर्णता प्राप्त
0: जी
1: की
0: जी
1: जा सकती है, खून की
0: नहीं,
1: कमी दूर
0: उनको तो
1: की जा
0: मेडिकल
1: सकती है?
0: एडवाइस लेना होगा, क्योंकि बहुत समय लगता है फूड से, वो अगर बहुत ज़्यादा गैप है खून में तो उनको आयरन के टेबलेट, ऐसे भी जो भी मदर बनने वाली हैं उनको 3 महीने के लिए आयरन के टेबलेट्स फ्री में मिलते हैं, सरकारी स्वास्थ्य सुविधा है वैसी कि फोलिक एसिड और आयरन के टेबलेट मिलते हैं, और अगर प्राइवेट से लेना चाहते, जहाँ से लेना चाहे लेकिन लें जरूर, ऐसा ना हो कि ना लें, तो उससे उनका वो जो खून की कमी है वो पूरी हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो उसके बाकी उपाय भी डॉक्टर बताएंगे।
1: जी, और अब आते हैं, अगर बच्चे एनीमिक पैदा होते हैं
0: जी
1: तो उस समस्या से कैसे लड़ा जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता
0: जी
1: है?
0: अगर बच्चे को मदर को नहीं, हम वो समय पे नहीं ये कर पाए, उनका एनीमिया को कम कर पाए और बच्चे में एनीमिया है, तो बच्चे को आयरन सप्लीमेंट देते हैं डॉक्टर के सलाह पे, और बच्चे को मदर मिल्क प्रमोट करते हैं कि मदर मिल्क पे रहे, और सप्लीमेंट आयरन किया जाता है। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको फूड वैसे आइटम देते हैं जिसमें कि आयरन की मात्रा हो, जैसे कि पालक का है, साग है, चाहे डेट्स हैं, ये सब सप्लीमेंट करेंगे जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो।
1: जी,
0: जी
1: और एक प्रश्न यहाँ पर हम पूछना
0: जी
1: भूल गए कि बच्चे जब एनीमिक होते हैं तो पता कैसे चलेगा जो अभिभावक हैं
0: जी
1: कि हमारे बच्चे में खून की कमी है, संभवतः
0: जी
1: तो उसका उपाय रखना होगा?
0: जी बड़े बच्चों में, छोटे बच्चों में तो जो नवजात शिशु हैं उनमें पता करने का ये तरीका है, तो बच्चा ज़्यादा रोता है, इरिटेबल रहता है बच्चा, दूध पी लिया फिर भी इरिटेबल है, थोड़ा
1: जी
0: देखने में थोड़ा ज़्यादा वाइट दिख रहा है, ऐसा वो गार्जियन को लगता है कि मेरा बच्चा ज़्यादा गोरा है, लेकिन कभी कभी वो वाइटनेस दूसरे तरह का वाइटनेस होता है, तो उसको ध्यान रखना है कि बच्चा अगर हमको ज़्यादा पहले से थोड़ा वाइट दिख रहा है तो हमको डॉक्टर से दिखाना है। बड़े बच्चों में अगर वो पहले एक्टिव था अब थोड़ा सुस्त होने लगा है, उतना खेलने का मन नहीं कर रहा बच्चे को, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार सर्दी खांसी की शिकायत हो रही है, तो बच्चे को डॉक्टर से दिखा के चेक कराना है कि कहीं बच्चे को खून की कमी ना हो रहा। बड़े बच्चों में आजकल ज़्यादा एनीमिया इसलिए होने लगा है कि बच्चे कब्जियत की शिकायत रहती है, बच्चों का जो आहार है आजकल वो कब्जियत ज़्यादा करा रहा है, तो
1: जी,
0: वो कब्जियत भी बहुत बड़ा कारण है बड़े बच्चों में खून की कमी के कारण, क्योंकि पेट में जब वो पचेगा नहीं, पेट साफ नहीं होगा तो अच्छे से आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो बड़े बच्चों में ये कारण ज़्यादा है कि बच्चों में एनीमिया हो रहा है।
1: जैसे कब्जियत की आपने बात की, तो
0: जी
1: कब्जियत क्या क्या खाने से सामान्यतः होता है, और अगर जो होता है तो उससे
0: जी
1: बचाव के लिए किस
0: बहुत
1: तरीके
0: ज़्यादा
1: का
0: जंक
1: खाना है?
0: फूड खाने से होता है और बहुत ऑयली खाने से होता है, बैलेंस डाइट नहीं जाएगा तो वो कब्जियत होगा, क्योंकि डाइट में फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है,
1: जी
0: जब हमारा फाइबर जाता है तो वो पानी को सोखता है और फिर वो पेट को साफ करता है, तो वो फाइबर की मात्रा कम होगी तो कब्जियत होगा बच्चों में। बहुत सारे गार्जियन हैं जो कि 6 महीने के बाद भी सिर्फ दूध पिलाते रहते हैं, 1 साल हो गया बच्चा, 1.5 साल हो गया, केवल दूध ही पिला रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, तो उन बच्चों को बहुत कब्जियत होती है और खून की कमी भी होती है।
1: अब अगर डॉक्टर साहब समग्रता की बात करें, तो बिहार में भी आजकल, पहले तो एनीमिक

0: बच्चे हुआ करते ही थे, मगर आजकल जो मधुमेह से ग्रसित बच्चे हो रहे हैं और बच्चों में जो मोटापा दिख रहा है, इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है और सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं क्या क्या हैं, हमारे श्रोताओं को बताएं कृपया।
1: आंगनवाड़ी से ही सुविधाएं शुरू हो जाती हैं। आंगनवाड़ी में बच्चे जाएंगे तो उनका वजन, हाइट, ये सब लिया जाता है, तो एक पैरामीटर देखा जाता है वहाँ पे। तो जो गार्जियन सजग हैं और जो जहाँ पे आंगनवाड़ी में जो लोग स्वास्थ्यकर्मी हैं वो लोग सजग हैं, तो वो शुरू में ही वो जब बच्चे का वजन ज़्यादा बढ़ना शुरू हो रहा है तो बताएंगे गार्जियन को कि ये आपके बच्चे का वजन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो वहाँ से वो चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। लेकिन एक बार जब बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो जाएगी, तब तो उसका असर पड़ेगा बॉडी पे। तो इसीलिए जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो, या खुद से भी कर सकते हैं, हाइट और वजन लेना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टेप है तो उससे हाइट ले सकते हैं और वजन का मशीन रहता है, कहीं भी नाप के वो देख सकते हैं, तो उससे
0: जी
1: आप मॉनिटर कर सकते हैं बच्चों को। तो बस जरूरत है सजग रहने की और अपने डेली के एक्टिविटी में बदलाव लाने की।
0: जी तो चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, ये जो बच्चों में मोटापा, डायबिटीज और एनीमिया जैसी बीमारी हो रही है, इसके बारे में आप अपने अनुभवों को हमारे श्रोताओं के समक्ष साझा करें।
1: सबसे पहले तो अभिभावकों को मैं अनुरोध करूंगा कि बच्चों को थोड़ा सा उनको हेल्दी डाइट दें और एक्टिविटी बेस्ड उनको खेलने का सिखाएं, क्योंकि बच्चे तो समय के साथ और समाज के अनुसार ढल जाते हैं। जैसा समाज में चल रहा है, सब लोग गार्जियन मोबाइल देखेंगे तो बच्चे भी मोबाइल देखेंगे, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि आउटडोर एक्टिविटी करें, दौड़े, खुद भी लेके जाएं, साथ में टहलाएं, पार्क में ले जाएं, तो उससे उनका फिजिकल ग्रोथ होगा, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, पूरा उनका जीवन सामने में है। अगर बचपन में अगर मजबूत नहीं होंगे तो आगे चल के कई तरह की बीमारियां होंगी। तो इसीलिए समय शुरू में ही सजग होने की है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एनीमिया से बचने के लिए आपको बच्चे के आहार पे ध्यान देना है, जैसा हमने बताया कि मदर को शुरू में माँ का दूध, सब लोगों का शिकायत रहता है कि माँ का दूध नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आपको पहले अंदर से, मन से मजबूत होना पड़ेगा कि हम कैसे नहीं होगा। मदर को ऐसा आहार देंगे, बच्चे को बार बार गोद में देंगे, तो बच्चे समय शुरू में ही सजग होने की है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एनीमिया से बचने के लिए आपको बच्चे के आहार पे ध्यान देना है, जैसा हमने बताया कि मदर को शुरू में माँ का दूध, सब लोगों का शिकायत रहता है कि माँ का दूध नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आपको पहले अंदर से, मन से मजबूत होना पड़ेगा कि हम कैसे नहीं होगा। मदर को ऐसा आहार देंगे, बच्चे को बार बार गोद में देंगे, तो बच्चे को
0: जी
1: अमूमन दूध मिल जाता है।
0: ये समस्या आपने जो
1: जी
0: बात की, बहुत सारे
1: जी
0: माओं
1: जी
0: की
1: वो
0: शिकायत होती है कि
1: कॉन्फिडेंस
0: दूध
1: पहले
0: नहीं आ
1: बढ़ाना,
0: रहा
1: नहीं,
0: है।
1: कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा अपना कि हम जब बच्चे को जन्म दे सकते हैं तो बच्चे को दूध भी दे सकते हैं।
0: जी
1: ठीक है, तो अच्छे से आहार लेंगे और अच्छे से बच्चे को हर 2 ढाई घंटे 3 घंटे पे गोद में लेंगे, तो बच्चे को निश्चित तौर पे मिलेगा दूध। फिर जब बच्चा 6 महीना का हो जाए तो उसको धीरे धीरे वीनिंग कहते हैं हम लोग, मतलब आप अन्न देना शुरू करते हैं, दाल देते हैं शुरू में, फिर खिचड़ी देते हैं, दलिया देते हैं, हर तरह का आहार देना है। बस उसमें ध्यान रखना है कि चीनी और नमक की मात्रा को कम रखना है। जब बच्चा बड़ा हो जाए तो जंक फूड से थोड़ा दूरी बना के रखें।
0: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और बच्चों में मोटापा, डायबिटीज़ और एनीमिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं की चुनौतियाँ और उससे बचाव के उपाय के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दिया। डॉक्टर वीके पांडे साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप डॉक्टर विवेक कुमार पांडे से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। विषय था बच्चों में मोटापा और डायबिटीज़ और एनीमिया। इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम परिवार कल्याण अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी पटना है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ साथ चलें। कार्यक्रम में आज का विषय है बिहार की साहित्यिक धरोहर। स्वर सहयोग धारिणी वाधवन का है, प्रस्तुति मोहम्मद शाहिद सबा की। तो आइए सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम आओ साथ चलें, छोटे से अंतराल के बाद।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
4: सो इजी।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के आओ साथ चले के इस विशेष अंक में। साथियों, इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया को ज्ञान, आध्यात्म और वैचारिक क्रांति की जरूरत पड़ी है, तब देश के पूरब से एक सूरज उगा है जिसे हम बिहार कहते हैं। लेकिन बिहार सिर्फ साम्राज्यों, नालंदा के खंडहरों या गंगा के घाटों का नाम नहीं है। बिहार

नाम है उस चेतना का जिसने शब्दों को धार दी है, जिसने लोक संस्कृति को अमर किया और जिसने हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही और अंगिका के माध्यम से पूरे विश्व के साहित्य को समृद्ध किया। बिहार की साहित्यिक यात्रा इतनी प्राचीन है कि इसके पन्ने पलटते ही माँ सीता की जन्मभूमि मिथिला याद आ जाती है। इस मिथिला की कूख से 14वीं सदी में ऐसे महाकवि का जन्म हुआ जिनकी रचनाओं के बिना भारतीय साहित्य का श्रृंगार अधूरा है। जी हाँ, मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति। विद्यापति ने जब राधा और कृष्ण के प्रेम को अपनी पदावली में पिरोया तो वह सिर्फ कविता नहीं, वह प्रार्थना बन गई। कहते हैं कि उनके गीतों से रीझ कर स्वयं भगवान शिव उनके घर उगना बनकर चाकरी करने आ गए थे। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के भी आनी मिलाउल, खिति तल लावनी सार।

लेकिन बिहार की ये साहित्यिक जमीन सिर्फ एक रंग की नहीं है, ये सतरंगी है। जहां एक तरफ मिथिला के लोकगीत गूंज रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बिहार सूफी संतों और संतों की वाणी से महक रहा था। मनेर शरीफ के हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी के पत्र हों या कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाते संत, बिहार ने हमेशा साझी संस्कृति यानी गंगा जमुना तहजीब को शब्दों का जामा पहनाया। वक्त बदला, देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा था, तब बिहार की साहित्यिक चेतना ने कलम को तलवार बना दिया। सिमरिया बेगूसराय की मिट्टी से एक ऐसा कवि उठा जिसकी हुंकार से अंग्रेजों का सिंहासन डोल उठा। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की। दिनकर जी के काव्य में जहां एक तरफ कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी जैसी रचनाओं में क्रांति का उग्र स्वर था, वहीं उर्वशी में प्रेम का अत्यंत कोमल रूप भी था। जब उन्होंने लिखा, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है दो राह समय के रथ का, धर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये सिर्फ कविता नहीं आजाद भारत का घोषणा पत्र बन गया। दिनकर जी ने जहां वैचारिक क्रांति की बात की, वहीं पूर्णिया के औराही हिंगना गांव से एक ऐसा कथा शिल्पी उभरा जिसने हिंदी साहित्य को पहली बार आंचलिकता के रस से सराबोर कर दिया, फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु जी का उपन्यास मैला आंचल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये कोसी के अंचल की सिसकी, उसकी हंसी, उसके लोकगीत, उसकी सादगी और उसके संघर्ष का जीवंत दस्तावेज है। कमली, बावनदास और डॉक्टर प्रशांत जैसे पात्रों को रचकर रेणु ने साबित किया कि साहित्य महलों में नहीं, धूल धूसरित गांवों की पगडंडियों पर पलता है। उनकी कहानी तीसरी कसम पर बनी फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा का गौरव है।

0: श्रोताओं, पटना का पुराना नाम अजीमाबाद भी है और अजीमाबाद का उर्दू अदब में वही मर्तबा है जो दिल्ली और लखनऊ का रहा है। शाद अजीमाबादी ने जब अपने गजलों से उर्दू दुनिया को दीवाना बनाया तो अजीमाबाद का नाम अमर हो गया। उनका एक शेर आज भी जिंदगी का फलसफा बयां करता है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देके बहलाया गया हूँ, खिलौने देके बहलाया गया हूँ। और हम कैसे भूल सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम के उस अमर गीत को जिसके रचयिता बिस्मिल अजीमाबादी थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि हुंकार इसी पटना की धरती से उठी थी, जिसने भगत सिंह और उनके साथियों के दिलों में देशभक्ति की आग सुलगाई थी। बिहार का साहित्य हमेशा सत्ता से सवाल करता रहा है। जन कवि बाबा नागार्जुन, जिन्हें मैथिली में लोग यात्री कहते हैं, जिन्होंने तरौनी दरभंगा से निकलकर पूरे देश के जनमानस की आवाज को अपनी कविताओं में ढाला, वे जितने बड़े मैथिली के लेखक थे उतने ही बेबाक हिंदी के कवि थे। शोषितों, पीड़ितों और किसानों के हक में बाबा की कलम हमेशा चलती रही। उसी तरह आचार्य शिव पूजन सहाय, जिन्हें साहित्य का मसीहा कहा जाता है, उनके उपन्यास देहाती दुनिया ने भाषा को एक नया ठेठ गवई मिजाज दिया। राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें आज भी रेखा चित्र विधा की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। श्रोताओं, बिहार का साहित्यिक धरोहर सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये निरंतर बहने वाली गंगा की तरह गतिशील है। आज भी भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी लोक भाषाओं में कबीर और भिखारी ठाकुर की परंपरा जीवित है। भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, उनके विदेशिया और गबर घिचोर जैसे नाटकों ने समाज के यथार्थ और विस्थापन के दर्द को जिस तरह समेटा, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। आज के दौर में भी बिहार के युवा लेखक, कवि और रंगकर्मी देश विदेश में अपनी लेखनी का परचम लहरा रहे हैं। चाहे वह समकालीन कविता हो, उपन्यास हो या सिनेमा की पटकथा, बिहार की मिट्टी का स्वाद, उसकी सोच और उसका जुझारूपन हर जगह उपस्थिति दर्ज करा रहा है। श्रोताओं, बिहार की साहित्यिक यात्रा ज्ञान के उस दीप स्तंभ की तरह है जिसने समय की हर आंधी में खुद को जलाए रखा, जहां शब्द में मिठास भी है और अन्याय के खिलाफ विरोध की आग भी। यहाँ की माटी में जो रस है वही यहाँ के साहित्य की जान है। चलते चलते बस इतना कहूंगी कि जब तक दुनिया में शब्द रहेंगे, भावनाएं रहेंगी और समाज को बदलने का जज्बा रहेगा, तब तक बिहार का साहित्य पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता रहेगा। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज के आओ साथ चले में बस इतना ही। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चले, स्वर सहयोग धारिणी वाधवन कथा, प्रस्तुति मोहम्मद शाहिद सभा की। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम ऑन एयर फरमाइश। सुनते हैं आज का कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री।

0: ऑन एयर फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका रेडियो दोस्त संजय किशोर आपके कॉल्स लेने के लिए हाजिर हूँ। आपके कॉल्स तो आ रहे हैं, लेते हैं आपका कॉल।
1: जी धनंजय बात कर रहे हैं, फाइल कुशीनगर उत्तर प्रदेश।
0: जी जी धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहिए कैसे हैं, क्या हो रहा है?
1: ठीक है, कुछ हो नहीं रहा है। आप यहाँ आप अपना बताइए, क्या हाल चाल है, मौसम कैसा?
0: जी हमारा तो बहुत बढ़िया हाल चाल है, बाकी सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। कुछ नहीं हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है?
1: ऐसे मतलब गाना वाना सुनते हैं तो कीर्तन भजन प्रोग्राम।
0: अच्छा, जी जी बढ़िया बढ़िया। तो आजकल प्रोग्राम अभी नहीं है?
1: हाँ अभी कभी चलता है कभी नहीं चलता है।
0: जी, तो इसी पर निर्भर है कि कुछ और भी करते हैं?
1: नहीं दिखाई नहीं देता है तो उसी लिए कुछ कर नहीं पाते।
0: अच्छा, चलिए कार्यक्रम समय समय पर होता रहता है तो उस हिसाब से आपको भी मिलता
1: जी
0: होगा
1: और
0: कार्यक्रम।
1: 16 मई को आप नारी जगत में बोले थे, उसमें एक बात बताए थे कि घर जब लोग छोड़ते हैं तो मतलब ताला लगाकर चाबी लोग छोड़ देते हैं तो छोड़ना नहीं चाहिए, तो आप उस कार्यक्रम में जो बोले थे वो अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। तो हम पूरा नारी जगत कार्यक्रम आपका सुन लिए थे।
0: अच्छा जी,
1: हाँ उसमें
0: धन्यवाद
1: जो गाना
0: आपने।
1: बजाए थे मीठा मीठा बोलो, वो गाना बजाए थे,
0: हाँ,
1: वो गाना बहुत अच्छा लगा था।
0: धन्यवाद आपने।
1: और हम तो मान लीजिए कि 1.5 महीने मतलब 1.5 महीना बाद ही कॉल करते हैं कि कुछ नया श्रोता की मतलब जुड़ने का मौका मिले कम से कम।
0: जी, बहुत अच्छा किया आपने। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप अपना जीवन बहुत
1: और
0: बेहतर
1: 22
0: तरीके से
1: अप्रैल को
0: चलाएं।
1: बात हुआ था और मतलब आपसे और फिर आज बात कर रहे हैं,
0: जी,
1: इतने दिन के बाद कॉल करते हैं।
0: दी अच्छा करते हैं। बाकी श्रोता से भी गुजारिश है कि वो थोड़ा अंतराल रखेंगे
1: बिल्कुल,
0: ताकि
1: मान लीजिए
0: बात
1: नए नए
0: करने
1: लोग
0: का
1: को
0: आनंद
1: सुनने
0: आए।
1: में थोड़ा अच्छा लगता है।
0: हाँ जी, तो सब ठीक है तो बताइए क्या सुनाया जाए आपको। हाँ
1: आराधना फिल्म में आराधना फिल्म का सुनवा दीजिए, गुनगुना रहे हैं, भौरें चिल रही हैं कभी।

0: ऑन एयर फरमाइश।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: अच्छा, नमस्कार नमस्कार
0: जी। कौन कहाँ से बोल रहे हैं बताएं?
1: हम खगड़िया जिला से बोल रहे हैं, बिहार से। हमारा नाम हरिनारायण यादव है
0: जी। क्या करते हैं हरिनारायण जी आप?
1: हम क्या करेंगे, हम रिटायर हैं, बैठे हुए रहते हैं। अब बैठे बैठे रेडियो अपना बजाते हैं हर दिन।
0: क्या क्या बजाते हैं आप?
1: हम आपका पूरा प्रोग्राम रेडियो का 11 बजे रात तक सुनते हैं
0: जी।
1: हर दिन।
0: क्या अच्छा लगता है ज्यादा
1: हमको तो सुनिए, उम्र तो हो ही गया है, हमको हर चीज अच्छा लगता है। लोकगीत, न्यूज तो हम कन्फर्म सुनते हैं।
0: अच्छा,
1: दिन में जितना बार न्यूज आता है वो सब हम सुन लेते हैं
0: जी। आजकल भोजपुरी समाचार शुरू हुआ है हमारे यहाँ से, आप सुन पा रहे हैं?
1: हाँ, 18 तारीख से शुरू हुआ है ना।
0: जी जी
1: वो भी हम सुनते हैं।
0: ठीक, तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: आज हम सुनना पसंद करते हैं मोहम्मद रफी का, लता मंगेशकर का, जो भी गाना सुनाइएगा हम सुनेंगे।

0: नमस्ते इसके सर
1: जी। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
0: जमालपुर से बोल रहे हैं सर, लोअर नगरी जमालपुर।
1: क्या नाम हुआ आपका?
0: हमारा नाम रघुनाथ मंडल
1: जी। मंडल जी, पहली बार कॉल हुआ आपका।
0: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सर, आप 8 जून को सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सर है 1936 को जो इसका 90 वर्ष पूरा रहा है।
1: हाँ हाँ जी।
0: जमालपुर सर जान रहे हैं ना?
1: जी जानते हैं, रेल का कारखाना है वहाँ पे।
0: जी सर, हम उसी के सेवानिवृत्त हो गए सर।
1: जी तो अभी क्या करते हैं?
0: अभी सर तो थोड़ा, अभी 5-6 बरस सर हो गया रिटायरमेंट, लेकिन 2-3 बरस से आँख का मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो सर इसी रेडियो तो हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, लेकिन और लगाव ज्यादा हो गया इधर।
1: उसकी वजह?
0: वजह सर इधर उधर, पहले तो काम धंधा अब तक आँख से लगातार कारण, रेडियो तो हम पुराने से रख रहे हैं, टीवी भी रेडियो भी है।
1: अच्छा अच्छा।
0: रेडियो सेटिंग था सर डिस्क के, उस समय से भी रेडियो हम लिए हैं उसके पहले से।
1: चलिए आज अच्छा लग रहा है, आपका कॉल आया, हमसे बातचीत हो रही है, ठीक महसूस कर रहे हैं आप?
0: हाँ सर, बहुत आपसे खुशी हो रही है सर।
1: जी खुशियाँ बनी रहें, रेडियो के कार्यक्रम सुनते रहें, और बताइए कि क्या सुनवाया जाए आपको।
0: सर एक पुरानी पिक्चर है जिसमें विनोद खन्ना और ओम प्रकाश जी है, चौकीदार फिल्म सर। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार, ये दुनिया नहीं जागी।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी नमस्कार।
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: समस्तीपुर जिला महेचारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: जी, नाम बताएं अपना।
1: तेज नारायण पोदार।
0: पोदार जी, पहली बार कॉल आया आपका?
1: तीसरी बार है।
0: अच्छा, पहले बातचीत हो चुकी है आपसे।
1: जी,
0: बताइए तो ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है?
1: आपका जितना भी कार्यक्रम है हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: तो
1: जैसे कृषि चर्चा हुआ, चिंतन हुआ, मन की बात हुआ, लोकगीत हुआ, नारी जगत हुआ, मैथिली समाचार हुआ, भोजपुरी समाचार, आपका हर प्रोग्राम मुझे पसंद है। बहुत दिनों से मैं रेडियो
0: कॉल करने का कैसे मन किया? बहुत दिनों के बाद कॉल आया आप।
1: जी सर, कॉल तो हम हर सप्ताह करते हैं लेकिन आज फिर लग गया।
0: जी, अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद कॉल किया आपने।
1: आपका प्रोग्राम सुनते हैं बहुत संतुष्टि मिलता है।
0: जी धन्यवाद, आगे भी सुनते रहें। और अब गाना बताइए, क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: जी, क्रांति फिल्म का गाना सुन

0: प्रणाम सर
1: जी, नमस्कार, स्वागत है। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
0: मैं बेगूसराय बिहार से राजोदास गोसाई मंथ बस्ती सागी पंचायत से बोल रहा हूँ सर। जी हाँ सर।
1: जी दास जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ख्याल है पहली बार आपसे बातचीत हो रही है।
0: जी हाँ सर, पहली बार। आज 10 बजे से ही मैं कॉल लगा रहा था, एक दो बार और लगाया लेकिन नहीं लग सका था।
1: तो आप अपने ही बारे बताइए, आप हमारे आज के नए श्रोता हैं, इसमें जुड़े हैं।
0: जी सर, तो मैं एक साधारण सा किसान हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, मवेशी रखे हुए हूँ। मेरा उम्र हो गया 71 साल सर।
1: तो इतना सब काम कर पाते हैं इस अवस्था में भी?
0: जी हाँ सर, कर लेता हूँ अभी, है भगवान की दया से तंदुरुस्ती है।
1: जी, आगे भी बनी रहे, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको।
0: जी सर, तो और ये जो है सो मैं अपने बारे में क्या कहूँगा सर, मैं ऐसे रिटायर ही हूँ।
1: अच्छा, कहीं सेवा में थे आप?
0: जी नहीं सर, मैं शुरू से ही मैं अपना इसी अपना खेती बाड़ी में।
1: अच्छा अच्छा, जी जी, तो अभी तक चल ही रहा है, तो आप रिटायर कहाँ हुए? अभी तक तो कर ही रहे हैं आप काम।
0: हाँ अभी तक तो कर ही रहा हूँ मैंने।
1: बहुत अच्छा है। तो मवेशी जो पाल रखे हैं उसका व्यावसायिक उपयोग होता है या कि सिर्फ घर के जरूरत के लिए आप उसको रखे
0: नहीं,
1: हैं?
0: व्यवसाय भी होता है सर।
1: जी, तब तो अच्छी बात है, बढ़िया है, आगे भी इसी को अच्छे से करते रहें।
0: सर जो मेहनत करता हूँ, मेहनत से बढ़कर के कुछ नहीं है, और इसीलिए मेरा शरीर भी अभी तक वैसे तंदुरुस्त है।
1: जी, बहुत अच्छा है, और दूसरे लोग भी ये सुन रहे होंगे तो उनको भी लगेगा कि थोड़ा शारीरिक श्रम जो है बहुत ज़रूरी है, उससे शरीर मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। आपका समय भी बीतता अच्छा, और कुछ ना कुछ अगर आय हो रही है उससे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत हुई, आप बताएं क्या सुनवाया जाए आपको।
0: सर मेरा एक च्वाइस था, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा।
1: मदर इंडिया, ठीक है जी,
0: मदर इंडिया।

0: हेलो सर, मैं लक्ष्मी नारायण शर्मा, पवरा घाट, जिला बेगूसराय।
1: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
0: सर, आपका ये 90 साल का शुभकामना देना चाहता हूँ सर।
1: जी, हम स्वीकार करते हैं आप सबकी शुभकामनाएं, और हम भी आपको शुभकामना और बधाई देते हैं। हमारे श्रोता की वजह से ही हम ये सफर तय कर पा रहे हैं। जी,
0: मैं रेडियो अभी सुन रहा हूँ सर।
1: जी,
0: 74-75 से मैं रेडियो सुन रहा था।
1: जी, बहुत पुराने श्रोता हैं आप, हम समझ पा रहे हैं आपको। 50 साल से अधिक समय हो गया आपको रेडियो सुनते हुए, और उस जमाने में रेडियो का एक बहुत बड़ा क्रेज़ हुआ करता था, तो वो क्रेज़ अभी भी दिख रहा है आपके शब्दों में, आपकी भावना में। तो कुछ बातें रेडियो से संबंधित अगर बताना चाहें तो बोलें।
0: जी सर, सब प्रोग्राम मैं सुनता हूँ सुबह से। रेडियो हमारा 11 बजे तक चलता है, 3 बजे बंद हो जाती है।
1: वैसे आप करते क्या हैं?
0: नौकरी करता था सर, अब तो रिटायर हो गया हूँ, घर पे रहता हूँ, कोई काम धाम नहीं करता हूँ।
1: चलिए, बहुत अच्छा है, रेडियो में मन लगा रहता है आपका, ये सुनकर भी अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। और आज इस कार्यक्रम में आपने फोन किया है, क्या सुनवाया जाए आपको?
0: सर, एक गौतम गोविंदा का गाना सुनवाया जाए, दरोगा जी चोरी हो गई।

0: नमस्कार सर, संजय किशोर जी।
1: जी स्वागत है, नमस्कार
0: हम
1: आपको।
0: दीपक कुमार बोल रहे हैं आरा जिला से। खेती
1: जी दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने बारे में कुछ बताइए दीपक जी।
0: उती करते हैं जी, मक्का उक्का खेत में लगा हुआ है, वही कटाई में लगे हुए हैं तैयार करने में।
1: कैसी रही फसल आपकी?
0: ठीक ठाक है फसल इनकी,
1: अच्छा
0: आते जाते रहते, अच्छा लगता है हमको। 11:10 पर हम रेडियो को बंद कर देते हैं। हम 8 साल से रेडियो सुन रहे हैं आपका,
1: अच्छा जी अच्छा जी। कौन कौन सा
0: रेडियो
1: कार्यक्रम
0: में
1: ज्यादा
0: जो
1: पसंद करते हैं?
0: ये क्या बोलते हैं, रात में 10 बजे आता है मंगलवार के दिन, वो हमको अच्छा लगता है।
1: गूंजे
0: और
1: बिहार,
0: खेती गृहस्थी, हाँ खेती गृहस्थी ये सब हमको अच्छा लगता है, समाचार यही सब सुनते रहते हैं जी।
1: खेती गृहस्थी आप सुनते हैं तो उससे कुछ लाभ होता है आपको? हमारी बहुत सारी
0: लाभ
1: बातचीत उसमें
0: बहुत
1: रहती है
0: लाभ होता
1: खेती
0: है,
1: गृहस्थी से संबंधित।
0: कीड़ा उड़ा दवा हुआ मारने का बता, उसके बारे में बताता है, नॉलेज देता है, हमको अच्छा लगता है सुनकर
1: चलिए
0: जी।
1: कार्यक्रम सुनते रहें, लाभ उठाते रहें। बताइए
0: जी
1: क्या सुनवाया जाए आपको?
0: हमको गाना सुनना है, फिल्म का गाना सुनना है मुकेश कुमार की आवाज में, और लता मंगेशकर की आवाज में, कोई सा भी गाना सुना दीजिएगा।
2: हर दिल जो प्यार करेगा वो

0: नमस्कार, रविंदर महतो ग्राम अमरपुरा गोपालगंज जिला से बोल रहे हैं।
1: गोपालगंज जिला से बालमुकुंद जी, पहली बार कॉल आया आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका
0: जी, बहुत प्रयास किए हैं कितने दिन से।
1: जी। लग गया, चलिए ऐसा ही होता है, सभी श्रोता के साथ में प्रयास करते रहते हैं कि चूंकि लगातार फोन आते हैं ना, इसलिए व्यस्त बताता रहता है वो। चलिए, आपका प्रयास सफल हुआ, अब अपने बारे में बताएं, कुछ बातचीत करें
0: बाकी 1999 से मैं किराना दुकान चलाता हूँ,
1: जी।
0: अपना माने व्यवस्था रखता हूँ, टाइट है ना, जाकर सामान भी लाता हूँ। पहले हाथ रिक्शा था, हाथ रिक्शा सिवान से बनवा लाए है ना,
1: जी
0: और उससे सामान लाते थे। और मान लीजिए कि 24 में हमको ट्राई रिक्शा मिला है,
1: अच्छा
0: तो जोन बटन पर चलता है ट्राई रिक्शा विकलांग लोग वाले, वो मिला है और उससे मैं सामान ले आता हूँ और दुकान में अपना चलाता हूँ।
1: बढ़िया है,
0: ये
1: तो
0: काम
1: आपका काम आसान थोड़ा हो गया, अब कर पा रहे हैं ठीक से।
0: जी, का मेहनत पहले ज्यादा मेहनत होता है, मैंने 3-4 किलोमीटर हमारे मोड़ है ब्रहिमा मोड़, वहाँ पर जाता जाना पड़ता है सामान लाने के लिए है ना,
1: जी
0: अब उतना मेहनत नहीं होता है ना।
1: जी समय के साथ उम्र जब बढ़ती है तो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है, तो कोई बात नहीं, ये सामान्य है बात। आप मेहनत कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, और
0: जी
1: आगे भी
0: काम
1: करते रहिए जितना हो सके, स्वस्थ रहें, खुश रहें और आनंदित रहें। हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं बहुत लंबे समय से, और आपने आज कॉल किया, बातचीत हो रही है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है,
0: जी काम
1: तो हम आपको आगे के लिए
0: तो
1: शुभकामना देते हैं। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे।
0: अच्छे धागे का कौनो गाना सा सुनवा दीजिए।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: अच्छा, कामता महाराज कुंज, गया जिला, गया
0: गया जिला से कामता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या करते हैं कामता जी?
1: जैसे हम अभी तो घर ही पर हैं, मनो रिटायर में समझिए,
0: जी
1: मनो घर का बटैया वटैया लगा दिए हैं, उसी से जो मिलता है सो खाते पीते हैं, रहते हैं।
0: तो
1: लड़का लोग

0: में है।
1: अच्छा जी, वो लोग सेवा में कहीं कुछ करते हैं।
0: हाँ, हम आप अकेला रहते हैं यहाँ, उन लोग
1: अच्छा
0: हमको पटना में मन नहीं लगता है, समझे ना। जो वातावरण है हमारा
1: हाँ
0: यहाँ का है, अब सुबह में 4 बजे उठते हैं, विष्णु थान चले जाते हैं, वहां से घोड़ लग करके फिर जो है सो बाद में घूमने चल जाते हैं, तो वो वातावरण हमको नहीं मिलता, तो वहां हम नहीं टिकते हैं।
1: अच्छा
0: गए 2-4, 1-2 दिन रहे, फिर चल दिए।
1: अच्छा अच्छा व्यक्ति को वहीं मन लगता है जहां उसका जीवन गुजरा हो ज्यादा
0: हाँ
1: समय।
0: हाँ यहाँ जो है ना, शाम को चाय थी तो बैठ जाते हैं, तो 2-4 को जो है बैठ जाते हैं अपना कहते हैं, लेकिन हमको वहां मन ही नहीं लगता है। हाँ
1: जी, तो बहुत अच्छा है, अपनी जगह पर आप मन लगाए हुए हैं और स्वस्थ
0: हाँ
1: हैं और
0: कहा
1: टहलना
0: लड़के
1: घूमना
0: लोग
1: करते
0: भाई,
1: रहिए।
0: जब हाँ कहे लड़के लोग के कि भाई जब तक हम हमको हाथ गोड़ चल रहा है तो रहने दो, फिर जो होगा सो तो देखा जाएगा बाद में वो।
1: जी, तो आप अकेले रहते हैं तो खाने पीने की बाकी
0: हाँ
1: व्यवस्था।
0: बना लेते हैं।
1: अच्छा, बहुत अच्छा, चलिए आप आत्मनिर्भर हैं, अपने ऊपर किसी प्रकार
0: हाँ
1: का बोझ नहीं
0: हमको
1: रखते
0: बड़ा
1: हैं। बहुत अच्छा, आगे भी इस कार्यक्रम से
0: ठीक
1: रेडियो के
0: ठीक
1: साथ जुड़े रहें। आप बताइए अभी क्या सुनना चाहेंगे।
0: अभी हम सुनना चाहते हैं ये पाकिजा का सुना दीजिए कोई बढ़िया देख करके।

आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हो तो हमें प्रत्येक बुधवार को दिन के 10 बजे से 10:30 के बीच कॉल कीजिए और अब हमारे फोन नंबर नोट कीजिए 0612-22-22500। फोन नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं 0612-22-22500। और अब कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हरिंद्र आजाद के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: फोन इन फरमाइश। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर।
0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बज चुके हैं। प्रस्तुत है बिहार का लोक संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं भोजपुरी लोकगीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए साधु शरण सिंह और उनके साथियों के स्वर में ये लोक भजन। इस कार्यक्रम को आप डीटीएच पर भी सुन सकते हैं।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं बिहार का लोक संगीत। ममता शर्मा की आवाज में लीजिए सुनिए ये शिव भजन।

ममता शर्मा से अभी आप देवी गीत सुन रहे थे। लीजिए सुनिए ये झूमर गीत इन्हीं की आवाज़ में।

ममता शर्मा की आवाज़ में अभी आप झूमर गीत सुन रहे थे। अब लीजिए सुनिए ये लोक भजन शंभू शरण और साथियों की आवाज़ में।

साधु शरण और साथियों की आवाज़ में अभी आप लोक भजन सुन रहे थे। इसी के साथ बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम घरनी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: घरनी के सब श्रोता लोगिन के अंजुला के नमस्कार। श्रोता लोगिन कैसा नथिन अपने सब? हाँ भाई, देखिन कि गर्मी तो बहुत होए और गर्मी में आदमी के ना खाए के मन कर रहे, ना इन्ने उन्ने घूमे के मन कर रहे। तो श्रोता लोगिन देखिन गर्मी बहुत पड़ रही है और अपने सब स्वास्थ्य के ख्याल रखथिन। कहे कि ये जो स्वास्थ्य है ना, हम सब मेहरारू लगे बहुत जरूरी है। ठीक कह ली कि ना? कहे कि हम सब के घर में बाल बच्चा के देखे ला रहा है, बाहरों काम करे ला रहा है, तो हमने लगी जरूरी है कि भाई पहले पेट पूजा कर लेवल जाए। कहे कि पेट पूजा करे से तनी मन शांत रहे, तभी कोई काम करथिन। कहे कि गर्मी है बहुत, खाली पेट अगर काम करते रहथिन तो तबीयत खराब होवे के डर रहे है। श्रोता लोगिन ये सब तो हम स्वास्थ्य के बात कर ली, और स्वास्थ्य से जुड़ल एगो ये भी बात है कि आज है विश्व साइकिल दिवस। तो साइकिल आज कितना जरूरी हो गई है, आज पेट्रोल बचावे के भी जरूरत है और स्वस्थ रहे के भी जरूरत है कि ना? तो कहीं भी अगर जाए लगी है, अपना घर वाला के कहथिन, अपना बाल बच्चा के कहथिन कि भाई अगर कहीं जाए ला हो, अगल बगल जाए ला हो, तो तुरंते मोटरसाइकिल निकाले के कोई ज़रूरत ना है। वो साइकिल से, साइकिल के सवारी शान के सवारी हो भाई, और शान से चले लगी साइकिल चलावे के चाहिए, और साथ

ही साथ साइकिल चलावे से। देखें कि एक तरफ तो जहाँ आदमी व्यक्ति स्वस्थ रहा है और वहीं पेट्रोल के भी बचत हो रही। पेट्रोल के बचत के साथ श्रोता लोगों पर्यावरण भी बढ़िया रहा है, क्या कि एक में कोई धूल धुआं तो होवा ना है। तो विश्व साइकिल दिवस मनावे की यही उद्देश्य है कि सब लोग साइकिल के प्रति जागरूक रहते हैं, साइकिल के प्रति जागरूक रहे।

जरूरी है। तो यही उद्देश्य है विश्व साइकिल दिवस मनावे के। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी के प्रयोग करत हैं, कोई काम लगी, और गाड़ी अगर जरूरी है तो खैर चला भी पड़ते है कि ना, लेकिन अगर जरूरी ना है, अगल बगल जाइयो लगी देखिए कि बहुत लोग तनका दूर भी जाए लगी, कोई किराने के सामान भी खरीदे लगी, तो तुरंत भाई से मोटरसाइकिल उठा ले लिए, मार एक गियर मार के चल गई, या बगलों में कोई नाता रिश्तेदार के यहाँ जाए है तो ना चला मोटरसाइकिल से चले ही बैठ कर गेली या चल गेली। तो वो कहे कि मतलब कि अगर ऐसा जगह पे जाए लगी है, बहुत जरूरी काम ना है गाड़ी के, या अगल बगल जाए ला है, या थोड़ा दूर पर भी जा सकते, तो साइकिल के उपयोग करे के चाहिए। दुनिया भर में बहुत सारे देश ऐसा है जो साइकिल के प्राथमिकता दे हथिन, तो हमनी सबके भी साइकिल के प्राथमिकता देवे के चाहिए, साइकिल के उपयोग करे के चाहिए, और बतावे के चाहिए जे अगल बगल आस पड़ोस नाता रिश्तेदार के भी कि साइकिल कितना फायदेमंद है स्वास्थ्य के साथ साथ, पर्यावरण के साथ साथ, और अगर हम साइकिल के प्रयोग करें तो हमारा आर्थिक बचत भी होवे है, काहे कि ये एकरा में पेट्रोल न लगे है, तो इतना बढ़िया है साइकिल। तो काहे ना आज हम सब प्रण करें कि थोड़ा दूर जाए लगी या थोड़ा छोटा मोटा काम लगी हम साइकिल के उपयोग करें। तो श्रोता लोगिन, हम सब तो विश्व साइकिल दिवस पर अपने से बातचीत के लिए, और देखथिन कि उतना ही जरूरी जितना जरूरी पर्यावरण के बचावे लगी स्वास्थ्य के रक्षा करे लगी साइकिल जरूरी है, उतना ही जरूरी हमर लोक संस्कृति, लोक परंपरा, लोक भजन, ये सब भी जरूरी है, क्योंकि लोक गीत, लोक संस्कृति हम सबकी पहचान है। हाँ, अपने सही समझ जाते हैं श्रोता लोगिन कि अपने के हम एक ठो लोकगीत सुनावे जेते ही, और कलाकार हथिन किरण कुमारी, इनका से सुनथिन ये लोकगीत।

0: झुनुर झुनुर बाजे पायलिया ए मैया, कितना मनमोहक और प्यारा गीत, भक्ति मय गीत भी हले क्योंकि देवी की आराधना हले। और ऐसे ही श्रोता लोगिन हम सबके घर में बेटी सबके भी जी पायल झुनुर झुनुर करे तो कितना अच्छा लगे है, और जरूरत पड़े है तो बेटी सब हम सबके रक्षा भी करथिन, देखभाल भी करथिन, समाज में वो अपना नाम भी करथिन, पढ़ लिख के आगे बढ़थिन। उनकर अंदर कितना मतलब ये रहे उल्लास कुछ करे के, कुछ सीखे के, और अपने परिवार भी देखें कि बेटी ही बनावथिन, समाज भी बेटी ही बनावथिन। तो जब बेटी जे के जब इतना बड़ा रोल जेकरा कहिए कि दायित्व है, और समाज के प्रति उतना समर्पित, परिवार के समर्पित रहथिन, तो काहे ना उनका से बचपन से ही उनका देखभाल अच्छे से करल जाए, और उन उनका से मित्रवत में दोस्ताना संबंध काहे ना बनावल जाए। काहे कि अगर हम अपने बेटी से दोस्ताना संबंध बनावे ही तो भाई उनका मानसिक शांति भी मिल है, और वो माँ बाप से खुल के अपना बात विचार साझा कर रहथिन। वो जब भी बेटी कुछ कहथिन तो बिना कोई पूर्वाग्रह के उनकर बात ध्यान से सुनने के चाहिए। उनका कोई नसीहत देवे के बजाय उनकर बात के समझे के चाहिए। उनका साथ घूमना फिरना, कोई सिनेमा देखना या कोई उत्सव या में भाग लेना, तो कोई भी बात अगर बेटी साझा करथिन तो वो ध्यान से सुनथिन, वो बात के कट ना करथिन। काहे कि उनकर भरोसा अपने के ऊपर है। उनकर साथ कुछ समय जरूर बितेथिन बेटी के साथ, और मतलब हंसी ठिठोली उनका साथ, एक मने दोस्त के साथ जैसे व्यवहार करल जाए उसी तरह से अगर अपना बेटी के साथ भी व्यवहार जरूर करते हैं, तभी वो उनकर एक अच्छा निर्माण होवा है। और जब बेटी आगे बढ़थिन तो पूरा समाज और पूरा देश भी आगे बढ़े। तो हम सब कहें ना यही पर श्रोता लोग एगो जरूरी वार्ता सुनही, अपने सबके सुनवावे ही। एगो वार्ता विषय है बेटियों से मित्रवत रहें, और वार्ताकार हथी नीलिमा सिन्हा।
1: बेटियों से मित्रवत व्यवहार। बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, घर की रौनक होती है, घर की शान होती है। लेकिन सिर्फ इतना कहना ही काफी नहीं है, क्योंकि अपने घर में खुलकर बोल नहीं पाती, झिझकती है अपनी बातों को बताने में। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बेटियां आगे बढ़े, सुरक्षित रहे, आत्मनिर्भर बने, तो सबसे पहले घर में एक

ऐसा माहौल बनाना होगा जहां वह बिना डर बिना झिझक अपने मन की बातें कह सके। और यह तभी संभव हो पाएगा जब हम अपनी बेटियों से मित्रवत व्यवहार करें, उनके साथ खड़े रहें, उनके भरोसे पर खड़े उतरें। कहा जाता है कि जिस घर में माँ बाप बेटी के दोस्त होते हैं, उसे घर की बेटी कभी डरती नहीं, सिर्फ आगे बढ़ती है। मित्रवत व्यवहार का मतलब है बेटी की बातों को ध्यान से सुनना, उसे प्यार से बातें करना, उसे ऐसा माहौल देना कि वह बिना डरे हर बात कह सके, उसे डांटने से पहले समझाना, और इन सब से जरूरी उनको यह महसूस कराना कि घर इसका अपना है। जब बेटी की बात को परिवार के लोग दोस्त की तरह सुनते हैं, तो वह अपने दिल की हर बात साझा करेगी। अक्सर हमारे समाज में लड़के खुलकर बोलते हैं, हंसते हैं, बाहर खेलते हैं, मन की बात बताते हैं, लेकिन बेटियां उनके लिए नियम भी ज्यादा, बंदिशें भी ज्यादा और अपेक्षा भी ज्यादा। अगर बात बात पे उन्हें टोका जाए, सवाल पूछा जाए, तो उनके आत्मविश्वास में कमी आने लगती है। लेकिन वही जब बेटी को यह पता होता है कि माँ बाप उसे समझते हैं, लेकिन वही जब बेटी को यह पता होता है कि माँ बाप उसे समझते हैं, उसका विचार भी मायने रखता है, तो वही बेटी आगे जाकर बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार कर सकती है। बेटी को यह कहकर रोकना आसान है, बाहर दुनिया खराब है, लेकिन बेहतर है कि उसे दुनिया का सामना करने की हिम्मत दें, उन्हें यह समझाया जाए कि सही क्या है, गलत क्या है। जब माँ बाप अपनी बेटी पे भरोसा दिखाएंगे, बेटियां अपनी बातें का खुद पालन करेगी। सबसे बड़ी बात, वह किसी भी समस्या से पहले अपने माँ बाप के पास आएगी, न कि किसी और के पास। 13 से 19 की उम्र बहुत नाजुक होती है, मन में कई सवाल आते हैं, उलझने होती है, भावनाएं बदलती है, दोस्तियां बनती बिगड़ती है। अगर माता पिता दोस्त बन जाते हैं, तो वह इस नाजुक उम्र को पार करके अपने जीवन में आगे बढ़ती है और मजबूती से खड़ी रहती है। बेटी को दोस्त जैसा समझने से मतलब है कि बेटी की बातों को ध्यान से सुनना, उन्हें समझाना, उन्हें डांटने की जगह समझाना, उन्हें अपने मन की बातें कहने देना और उनके सपनों का सम्मान कराना, ताकि वो अपने घर में सुरक्षित और खुशी का अनुभव करे। शिक्षा और संवाद ही वो हथियार है जो अपने मन की बातें का माध्यम बन सकता है। जब माँ बाप अपने बेटियों से दोस्त की तरह बातें करते हैं, उनकी राय पूछते हैं, उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं, तब किसी भी तरह का दमन, मजबूरी या अपराध जगह ही नहीं ले पाता। जब एक पिता अपनी बेटी से दोस्त की तरह बातें करता है, एक माँ जब अपनी बेटी से परछाई की तरह अपने सपनों का साथी मानती है, तो बेटियां सशक्त होती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब उन्हें पढ़ने दिया जाए, सपने देखने दिया जाए और उनसे मित्रवत व्यवहार किया जाए, ताकि ये भली भांति ज्ञात हो कि आप अबला नहीं हैं, सबला हैं। आप ही अपने जीवन की सारे निर्णय ले सकती हैं और अपनी जिंदगी में जो चाहे वो पा सकती हैं। माँ बाप का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों की तुलना दूसरे से ना करें, क्योंकि बच्चों का इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनमें हीन भावना पनपती है और कभी-कभी वो अवसाद की भी शिकार हो जाते हैं। आज के तुलनात्मक दौर में माँ बाप के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि वो बच्चों को सम्मान करें, उन्हें बराबर समझें। खुला माहौल ही सबसे बड़ा उपहार है, वह अपनी हर बात साझा कर सकती है, और सबसे जरूरी बात, उनकी बातें सुनी जाएगी। यह माहौल उन्हें मजबूत बनाता है, खुश रखता है और जीवन के हर मोड़ पर उसे सही दिशा देता है। बेटियों को गलतियों से सीखने दीजिए, क्योंकि वो भी इंसान है, वे भी सीखेंगी, कभी कभी गलती करेगी। अगर आप गलती पे प्यार से सिखाएंगे, वे समझेगी और सुधार करेगी।
लगातार डांटने के बाद वह गलतियां छुपाना सीख जाएगी। अगर बेटी से एक कहा जाए कि तुम चिंता मत करो, गलती हो जाए तो हमें बता देना।

0: हम साथ में ठीक कर देंगे। बस इतना सा कह देने से उसे सुरक्षा का एहसास होगा। जब बेटियों को घर में प्रोत्साहित किया जाएगा तो वह आगे बढ़ेगी। माँ अक्सर बेटी को सबसे ज्यादा समझती है। अगर माँ बेटी ये दोस्ती कर ले तो बेटी के मन में कोई भी बात दबकर नहीं होगी। उसे पढ़ने दें, बढ़ने दें, खिलने दें, उन्हें मित्र की तरह अपनाएं, उनका हाथ थामें, और वह दिन दूर नहीं जब हर बेटी आसमान की बुलंदियों को छुएगी। बेटियां भगवान की देन है, वो घर में खुशियां लाती है, जीवन में कोमलता लाती है। इसलिए बेटियों से मित्रवत व्यवहार करें, उन्हें सुने समझें तो घर खुश होता है। जब बेटी आत्मनिर्भर होती है तो परिवार आत्मनिर्भर होता है। जब बेटी मजबूत होती है तो समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है।
1: कितना फरिया फरिया के नीमन नीमन तरीके से, मैंने नीमन ही बात है भाई कि बेटी से मित्रवत रहे। अभी हम सब श्रोता लोगों ने ये वार्ता सुन ली, बेटियों से मित्रवत रहें। और वार्ताकार हलते नीलिमा सिन्हा, इनका धन्यवाद दही। इतना अच्छा फरिया फरिया के सचमुच बतेलथिन। और सचमुच जे अपन बेटी से मित्रवत ना होथिन, कई घर में ऐसा देखे ला मिला है, तो जरूर आज के बाद अपने बेटी से दोस्ताना व्यवहार जरूर करथिन, करे के भी चाहिए। बेटी एक तो एक दिन दूसरे घर चल जाथिन, तो ऐसे में जितना दिन हथिन उनका से अच्छा संबंध बना करथिन, और बाद में भी शादी के बाद भी तो बेटी के अधिकार है। और श्रोता लोगिन आज है, मतलब आज तो नव मैंने कहे कि मतलब कि 5 तारीख के विश्व पर्यावरण दिवस मनावल जा है। और पर्यावरण दिवस तो समझते हैं कि ऐसे हर हर हर ही दिन है, पर्यावरण के बिना हम सब कहाँ जी पावे। तो खास करके 5 जून के ये लगी मनावल जाए विश्व पर्यावरण दिवस, ताकि लोग पर्यावरण के महत्व के समझथिन कि जो प्रकृति हम सब के मिले है वो जिस रूप में चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो जो भी हो, वो जैसे स्वच्छ रूप में भगवान हम सब के दिलथिन है, वो अब समझथिन कि हम सब मिल के का हाल कर दिलिए है। अब हम कही न कि भाई ओहो हवा कैसे एकदम से लगा है कि एकदम हवा में इतना धूल है, पानी इतना गंदा, ती पानी इतना गंदा कर कौन कैल की। पानी तो भगवान जैसे प्रकृति दिलथिन एकदम स्वच्छ पानी, हम सब जब घूमे फिरे जा ही तो क्या करी कि कोई आदमी के देखे कि जहाँ पूजा पाठ कर ली वहीं पर गंदगी छोड़ दिली, प्लास्टिक के थैली हो या चिप्स के पैकेट हो, कुछ पानी के बोतल हो। आज आज लोग सैर सपाटा करे जाथिन समुद्र में चाहे नदी में नौका विहार करथिन, तो पानी के बोतल पी के पता चले कि गंगा जी में डाल दिली। अब ये समझथिन कि वो जो पानी जो कचड़ा हम सब गंगा में प्रवाहित कर दे, नदी में प्रवाहित कर दे, समुद्र में प्रवाह डाल दे, ओकरा से एक जल तो गंदा होवे करे, और जो पानी के अंदर रहे वाला जो जीव जंतु है वो भी उनका भी खतरा हो के हो जाए, और कितना तो विलुप्त भी हो गलथिन, मर गलथिन। और अपने यही देखथिन कि हवा में भी हम सब कितना गंदगी फैलावे, आए दिन मकान तोड़ तोड़ के लोग बनावथिन, पेड़ काट देथिन, उजरी को न सोचथिन कि हाँ भाई पेड़ कितना साल लगे है पेड़ के बड़ा होवे में, और काटे में 2 मिनट लगे है। आप समझते हैं कि वो जो ऑक्सीजन दे है पेड़, वो तो उतना ऑक्सीजन पेड़ 2 गो 3 गो पेड़ कट गए, 2 या 3 गो के मान के चलथिन कि 2 या 3 गो पेड़ कट गए, तो ऑक्सीजन 2 गो 3 गो पेड़ से जो निकले वाला हले वो तो बंद हो गए। तो ये जो ऑक्सीजन हम सब पेड़ काट काट करके बंद कर देते ही, एकर जिम्मेवारी तो हम ही है। ऐसा मकान बना के तोड़ तोड़ करके जो हम सब ये मकान बने ली फिर बने ली, धूल गंदगी जो उड़ा है वो क्या हो भाई वायु में घुल जाए। आपने देखें कि सड़क पर अखनी कितना गाड़ी मोटर चला है, एगो आदमी एगो गाड़ी से निकलथिन, वही अगर एक गाड़ी से 4 आदमी निकलथिन, या जरूरी ना है तभी हम साइकिल के ही बात कर ली, अगर जरूरी ना है तो हम साइकिले से निकल गली, तो सड़क पर जिस

संख्या गाड़ी की अगर कम होती तो वायु प्रदूषण भी ना होते। तो ऐसे जी प्रकृति में जो जहर हम सब घोलते ही उकरे, तो परिणाम है कि आज अचानक से बाढ़, सुखाड़ और धूप जे इतना गर्मी जे हो रही है, तो ये सब जलवायु परिवर्तन के ही लक्षण है। और जलवायु परिवर्तन जे तरीके से होते हैं एकर जिम्मेवार भी हम ही सभी। तो विश्व पर्यावरण दिवस जे है ओकर मनावे के ही उद्देश्य है। और हर साल एकर थीम होवे कुछ ना कुछ संदेश होवे है, तो इस साल भी एकर यही संदेश है कि प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। तो अगर हमरा अपन भविष्य बचावे ला है तो हमरा पर्यावरण के भी रक्षा हमने सबके जिम्मेवारी है। हम सबके ध्यान रखे पड़ते कि प्लास्टिक के कम से कम उपयोग करे। बाजार में अपने सब सब्जी लेवे जा हथिन तो थैला लेके जा हथिन ना, हमहूँ जाने हैं कि थैला लेके ना जा हथिन, तो थैला लेके जेथिन। प्लास्टिक के एथिम बैग में तरकारी लेके या सामान लेके ना आइथिन, थैला के उपयोग करथिन। अगर अपने सब पूजा पाठ करथिन तो वो सब जो है वो कोई पेड़ के नीचे डाल देथिन, वो जा करके नदी में प्रवाहित ना करथिन। काहे कि वो जो है नदी में प्रवाहित करे से वो कचड़ा के रूप में नीचे गाद बन के बैठ जाए। तो ये सब से ध्यान रखथिन। आज देखथिन कि शादी ब्याह के मौके पर ये 25-25 गो, 30-30 गो आवाज़ वाला पटाखा छूटे है, का जरूरत है? ये समझिन कि ओकर धुआं कहाँ जाते, वो धुआं हवा में घुल के हम ही लोग के नाक के माध्यम से सांस के नली में गंदगी बैठा है और बहुत तरह के दमा और खांसी और अस्थमा के बीमारी हो है। तो हम जो प्रकृति में जहर घोल डाली है ओकर भी प्रसादी हम ही सबके मिलते हैं। तो आज विश्व 5 तारीख के विश्व पर्यावरण दिवस है, तो संकल्प लेथिन कि पर्यावरण के रक्षा करना हम सबके जिम्मेवारी है। और जिम्मेवारी की बात हम करें ही, और जब पर्यावरण अच्छा रहते तो हम सब के मन भी शांत रहते और मन भी झूमे के करते। तो झूमे लगी श्रोता लगिन, हाँ लोकगीत, तो लोकगीत सुनथिन झूमे लगी। और कलाकार हथिन वही किरण कुमारी, इनका से सुने ही लोकगीत।

0: किरण कुमारी से अभी हम सब सुनते हलिए। बढ़िया बढ़िया लोगी, तिनका बहुत धन्यवाद। और श्रोता लोगिन, अपने से विदा लेवे के समय आ गए लिए, लेकिन फिर मेल हुए, तब तक लगी अंजुला कुमारी के बहुत ही प्रणाम। घर नहीं, अभी आप महिलाओं का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो के घड़ी में 1 बजने वाला है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
2: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
1: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने

0: का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डी के शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में लीजिए सुनिए ये वार्ता। विषय है हमारे देश के लिए सतत विकास समय की मांग। वार्ताकार हैं ज्योति सिन्हा।
2: श्रोताओं, आज मानव सभ्यता विज्ञान तकनीक और आर्थिक प्रगति के शिखर पर पहुंच चुकी है। हमने अंतरिक्ष में कदम रखा, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी अद्भुत तकनीकों का निर्माण किया और जीवन को पहले से अधिक सुविधाजनक बनाया। लेकिन दूसरी ओर हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि विकास के इस अंधी दौड़ ने प्रकृति को गंभीर संकट में डाल दिया है। जंगल कट रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, जलवायु प्रदूषण बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो रहे हैं और पर्यावरण असंतुलन मानव जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में सतत विकास केवल एक विकल्प नहीं बल्कि मानव अस्तित्व की आवश्यकता बन चुका है। भारत जैसे विशाल और विकासशील देश के लिए सतत विकास का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारे देश की बड़ी आबादी, सीमित संसाधन, ग्रामीण और शहरी असमानताएं, बढ़ती बेरोजगारी, जल संकट और प्रदूषण जैसी समस्याएं हमें यह सोचने को मजबूर करती है कि केवल आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहीं है। हमें ऐसा विकास चाहिए जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों से समझौता न करे। सतत विकास का अर्थ केवल पर्यावरण की रक्षा करना नहीं है, इसका अर्थ आर्थिक प्रगति, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है। यह विकास का ऐसा मॉडल है जिससे प्रकृति और मानव दोनों का हित सुरक्षित रहता है। यदि हम आज संसाधनों का अत्यधिक दोहन करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के पास जीवन के लिए आवश्यक साधन भी नहीं बचेंगे। इसलिए आज का समय हमें ये चेतावनी दे रहा है कि यदि हमने अपनी विकास नीतियों को नहीं बदला तो भविष्य में मानव सभ्यता को भारी संकटों का सामना करना पड़ सकता है। भारत की संस्कृति सदैव प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना से जुड़ी रही है। हमारे ऋषि मुनि ने पेड़ों, नदियों, पर्वतों और पशु पक्षियों को पूजनीय माना है। वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देने वाला हमारा देश संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानता है। लेकिन आधुनिकता उपभोक्तावाद की अंधी दौड़ में हमने प्रकृति के साथ अपने संबंधों को कमजोर कर दिया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों को आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के साथ जोड़कर सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ें। सतत विकास का सामान्य अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को नुकसान न पहुँचाए। यह परिभाषा 1987 में ब्रंटलैंड

आयोग द्वारा दी गई थी, जो आज भी विश्व स्तर पर स्वीकार की जाती है। सतत विकास 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण। इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही सतत विकास का उद्देश्य है। यदि केवल आर्थिक विकास होगा और पर्यावरण नष्ट होगा तो यह लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रहेगा। यदि केवल पर्यावरण संरक्षण होगा लेकिन लोगों को रोजगार और भोजन नहीं मिलेगा तो समाज में असंतोष बढ़ेगा। इसलिए सतत विकास का लक्ष्य ऐसा संतुलन बनाना है जिसमें सभी का हित सुरक्षित रहे। भारत जैसे देश में सतत विकास की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ एक ओर तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग अभी भी गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। यदि विकास केवल कुछ लोगों तक सीमित रहेगा और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग होगा तो सामाजिक असमानता और पर्यावरण संकट दोनों बढ़ेंगे। सतत विकास का अर्थ केवल बड़े बड़े उद्योग लगाना नहीं है, इसका अर्थ स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, जैविक खेती, पुनर्चक्रण, स्वच्छ परिवहन, शिक्षा का प्रसार, महिलाओं का सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय। भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों ने पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसलिए इसके विकास के लिए कई कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अधिक जनसंख्या का सीधा प्रभाव भोजन, पानी, ऊर्जा और रोजगार जैसे आवश्यकताओं पर पड़ता है। यदि संसाधनों का संतुलित उपयोग नहीं किया गया तो भविष्य में गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण। आज भारत के कई बड़े शहर प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। लाखों लोग प्रदूषण के कारण बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इसलिए उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करना आवश्यक है। जल संकट से बचाओ। देश के कई हिस्सों में जल संकट गंभीर रूप ले रहा है। भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। यदि वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में पानी की विकराल समस्या हो सकती है। यदि हम पानी नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। प्लास्टिक नदियों और समुद्रों को प्रदूषित कर रहा है। पशु पक्षी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। हमें कपड़े और जूट के बैग का उपयोग बढ़ाना चाहिए और सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना चाहिए। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी भारत पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असामान्य वर्षा हो रही है। इससे कृषि और अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित हो रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन हो रहा है। कोयला, पेट्रोलियम, जंगल और खनिज संसाधन सीमित हैं। यदि इनका अत्यधिक उपयोग जारी रहा तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये संसाधन समाप्त हो सकते हैं। पर्यावरण और विकास का गहरा संबंध है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। इसके लिए सबसे पहले वनों का संरक्षण जरूरी है। वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और जलवायु संतुलन को बनाए रखते हैं। इसके लिए पेड़ों की कटाई को पूरी तरह से रोकना होगा, साथ ही नए पेड़ लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पौधे अवश्य लगाएं और वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल करें, तभी हम आने वाली पीढ़ियों को एक हरा भरा वातावरण दे पाएंगे। सरकार सतत विकास के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे परियोजना, राष्ट्रीय सौर मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि कई योजना चलाकर इस समस्या को कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बड़ी समस्या का निजात पाने के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। इसके लिए सबसे पहले हमारे युवाओं को आगे आना होगा।
उनके पास ऊर्जा, उत्साह और नई

0: सोच है। यदि उनकी भागीदारी होगी तो देश में बड़ा परिवर्तन संभव है। यदि हमारे युवा वृक्षारोपण का अभियान चलाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, जल का संरक्षण करें, स्वच्छता अभियान में भाग लें, ऊर्जा की बचत करें, पर्यावरण जागरूकता फैलाएं, तो यह मिशन तेजी से सफलता की ओर अग्रसर होगा। आज सोशल मीडिया के माध्यम से युवा लाखों लोगों तक यह संदेश पहुंचा सकते हैं, इसलिए युवाओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सतत विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जल, ईंधन और भोजन से जुड़ी होती हैं। यदि महिलाओं को शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, तो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान वो दे सकती हैं। सतत विकास केवल एक नारा नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य का आधार है। यदि हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को संकटों से भरा जीवन जीने को मिलेगा। इसलिए हमें ऐसा विकास मॉडल अपनाना होगा जिसमें आर्थिक प्रगति, सामूहिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण तीनों में संतुलन बना रहे। भारत के लिए सतत विकास समय की सबसे बड़ी मांग है। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे। हमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। यदि हम सही कदम उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद देंगी, लेकिन यदि हमने लापरवाही की तो भविष्य हमें कभी माफ नहीं करेगा। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने देश को स्वच्छ, हरित, समृद्ध और टिकाऊ बनाएंगे। हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां विकास भी हो और प्रकृति भी सुरक्षित रहे। हम सतत विकास को अपनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करें।
1: हमारे देश के लिए सतत विकास समय की मांग विषय पर अभी आप वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे ज्योति सिन्हा। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे विभूति शंकर। इसी के साथ कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक प्रभु राम।
1: वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता।
0: सुनिए प्रतिदिन प्रातः 6:35 पर संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान।
2: भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए देशगान।

0: महेंद्र कपूर के स्वर में अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए कुछ संदेश।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
4: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत यशुदास और आशा भोसले की आवाज में। लीजिए सुनिए फिल्म छोटी सी बात का ये गीत। योगेश के लिखे इस गीत को संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

दीवार फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले को। गीत साहिल लुधियानवी का था और संगीत था आर डी बर्मन का। अगले गीत में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म आंधी में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

इस गीत में आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म अनुरोध में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत लीजिए सुनिए फिल्म नसीब से, लता मंगेशकर की आवाज में। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म जहरीला इंसान के इस गीत में आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। गीत मजरू सुल्तानपुरी का था और संगीत था आर डी बर्मन का। इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ग्रामीण विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ग्रामीण विकास, सुशासन, जनभागीदारी, स्वच्छता, डिजिटल सेवाओं तथा सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2 श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में बिहार के 18 जिलों की विभिन्न पंचायतों को अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि राज्य के 13 जिलों में आयोजित होने वाले श्रावणी मेले के लिए 2,25,00,000 रुपए की राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि यह राशि मेला क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खर्च की जाएगी। श्री जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की आज पटना में बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। यह प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर निर्मित बेली ब्रिज पर वाहन परिचालन का ट्रायल किया गया। परीक्षण के दौरान 2.5 टन वजन वाले 4 पहिया वाहन को 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर पुल की मजबूती की जांच की गई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वाहनों का परिचालन पूरी तरह सफल रहा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं आज राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग की ओर से दरभंगा में कल से 6 जून तक अलग अलग प्रखंडों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में 18 से 42 आयु वर्ग के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इधर खगड़िया में भी कल एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में एक युवक की पीट पीट कर हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने डायल 112 पर तैनात पुलिस अवर निरीक्षक संजीव कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं 2 गृह रक्षकों के अनुबंध निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने लोक शिकायत निवारण से संबंधित मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में निर्मलिक के अंचलाधिकारी पर 1,000 रूपये का अर्थदंड लगाया है। कटिहार रेल मंडल में चल रहे दोहरीकरण और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेलवे ने 12 जून को सहरसा सियालदह हाटे बाजार एक्सप्रेस के परिचालन मार्ग में बदलाव किया है। इस दिन यह ट्रेन पूर्णिया बनमनखी मधेपुरा मार्ग की जगह मानसी नौगछिया कटिहार के रास्ते संचालित होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। देही तरक्यात के वजीर राजीव रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनाकिद प्रोग्राम में कौमी पंचायत अवार्ड तकसीम किए। पूरे मुल्क की 42 पंचायतों को देही तरक्यात, बेहतर हुक्मरानी, अवामी हिस्सेदारी, सफाई सुथराई, डिजिटल खिदमात और मुसलसल तरक्याती अहदाफ के मौसर नफाज अमल के लिए दो जुमरों में ये अवार्ड दिए गए। तकरीब में बिहार के 18 ज़िलों की मुख्तलिफ पंचायतों को अलग अलग इलाकों में बेहतर मुजाहरा के लिए अवार्ड से नवाजा गया। महसूलात और ज़मीनी असलाहत के वज़ीर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि रियासत के 13 ज़िलों में मुनाकिद होने वाले शरावनी मेले के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपये की रकम मख्तस की गई है। उन्होंने कहा कि ये रकम मेला इलाकों में बुनियादी सहूलतों की इस्तेहकामकारी और अकीदतमंदों की सहूलत के लिए खर्च की जाएगी। जनाब जायसवाल ने कहा कि रियासती हुकूमत अकीदतमंदों को बेहतर सहूलत फराहम कराने के लिए पाबंद अहद है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी की सदारत में रियासती काबीना की आज मीटिंग पटना में मीटिंग होगी। मीटिंग में कई अहम एजेंडों पर मुहर लगने का इम्कान है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बताया है कि लगभग 40,000 तलबा ने इवेलुएशन के लिए दरख्वास्तें जमा कर दी हैं। ये अमल बगैर किसी मसला के दरपेश मुकम्मल कर लिया गया है। बोर्ड ने कल दर्जा 12वीं के तलबा के लिए जवाबी कापियों की खामियों की तस्दीक और आंसर्स के दोबारा इवेलुएशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सहूलत सिर्फ उन्हीं तलबा के लिए दस्तयाब है जिन्होंने अपने इवेलुएटेड आंसर शीट की स्कैन की गई कापियां हासिल कर ली हैं। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के नुकसान ज़दा हिस्से पर तामीर बेली ब्रिज पर गाड़ियों का ट्रायल किया गया। तजुर्बे के दौरान 2.5 टन वाली 4 पहिए की गाड़ियों को 20 से 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाकर पुल की मजबूती की जांच की गई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गाड़ियों की रफ्तार पूरी तरह कामयाब रही। पूरी रियासत में शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। महकमा मौसमियात से हासिल शुदा इत्तला के मुताबिक कई जगहों का दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस

0: सेल्सियस को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत के साथ भभुआ रियासत का सबसे गर्म जगह रहा। भागलपुर और शेखपुरा का ज़्यादा से ज़्यादा पारा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम के कयास आरआई में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का मज़ीद इजाफा हो सकता है। वहीं आज रियासत के शमाल मशरक़ी और जनूब मगरबी हिस्सों में कुछ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। नौजवान रोज़गार और हुनर फरोग महकमा की तरफ से दरभंगा में कल से 6 जून तक अलग अलग ब्लाकों में रोज़गार मेले का इनाकाद किया जाएगा। मेले में 18 से 42 उम्र के उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं। इधर खगड़िया में भी कल एक रोज़ा रोज़गार मेले का इनाकाद किया जाएगा। कटिहार रेल डिवीज़न में चल रही दोहरीकारी और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग काम के सबब रेलवे ने 12 जून को सहरसा सियालदह हाटे बाज़ार एक्सप्रेस की सर्विस रूट में तब्दीली की है। इस दिन ये ट्रेन पूर्णिया बनमंखी मधेपुरा रूट की जगह मानसी नवगछिया कटिहार के रास्ते से चलेगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के आलोक में कुल 394 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.upsc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग CGL 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी।

0: आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक अप्रेंटिस के कुल 7,150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए www.sbi.bank.in से जानकारी प्राप्त करें। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित

0: परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
1: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली ये खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट एआईआर न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व एसआईआर मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से

0: हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं और यही मानव संबंध की विडंबना है।
0: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
0: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, अरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
0: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
0: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
0: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
0: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
2: जी।
0: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
2: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
0: जी।
2: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है।

0: क्या थी वो घटना?
1: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले।
0: जी,
1: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
0: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
1: जी हाँ, जरूर।
0: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट दो कुबड़ वाले होते हैं
0: जी,
1: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत

0: श्रोताओं आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट दो कुबड़ वाले होते हैं
1: जी,
0: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं। घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
1: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोबी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
0: जी
1: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
0: श्रोताओं यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
1: जी
0: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
1: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
0: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
1: ये दो तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
0: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोवी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
1: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोबी के शीत मरुस्थल की।
0: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं?
0: श्रोताओं आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं।
1: जी,
0: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर।
5: अरे वो देखो चिड़िया।
6: अरे वो देखो बंदर।
7: ओह, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
8: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
9: हाँ, ये तो सही कह रहे हो।
10: अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
11: क्या करेंगे?
12: देखेंगे, जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
10: ये तो रीच की आवाज है।
13: अरे अरे, मुझे तो लगता है रीच आ रहा है।
10: ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
11: क्या करें, क्या करें? जल्दी सोचो क्या करें।
10: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
11: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
11: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
10: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
10: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
10: ये रीच तो मुझे सूंघ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
10: बच गए।

0: लगता है रीच चला गया।
1: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
2: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
1: और अपने साथी से जाकर पूछा,
2: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
1: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
0: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
1: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
3: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम अकादमिक समन्वय, डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक

0: गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
1: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
0: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
2: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
3: अरे बात भी नहीं लगी।
4: अरे
2: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं
4: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो
2: हा?
4: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
2: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
4: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
5: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
4: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
2: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
0: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
1: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
0: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
6: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
4: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
6: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
6: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
6: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गाँव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया।

0: अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: नहीं करने देंगे,
2: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
3: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
3: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
4: गौरा माँ,
5: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ से आ रही हो?
4: गौरा माँ, वो लोग आ रहे हैं।
5: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
4: गौरा माँ,
5: हाँ,
4: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
5: क्या?
4: हाँ गौरा माँ, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
5: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
6: हाँ गौरा माँ,
7: हाँ गौरा माँ,
5: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
8: बिल्कुल,
5: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
6: हाँ,
7: हाँ,
6: सब तैयार हैं।
8: नहीं कटने देंगे,
4: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
5: ये है जंगल के उपकार,
6: मिट्टी पानी और बया,
5: मिट्टी पानी और बया,
6: जिंदा रहने के आधार।
3: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
5: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
9: आगे बढ़ो।
8: अरे कहां से?
9: मिनट की बात में बताओ, मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू,
8: बैठो। पे छिपक जाएंगे, छिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम।
5: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
4: नहीं लगाने देंगे।
5: बहनों, आगे बढ़कर छिपक जाओ पेड़ों से।
6: हाँ, हम छिपक जाएंगे।
9: ठीक है, तो वहां चलो, अरे उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: मजदूरों के सामने एक

0: विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
1: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
2: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
1: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
3: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: एनसीईआरटी उमंग, अभी आप ये प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर या 921 किलोहर्ट्ज़ पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम पुनः आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम 4:28 से। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय हिंद।

0: सखी सहेली सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
1: मेरा यानी चंचल वर्मा का
0: प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है चंचल, आज बड़ी महक रही हो और खूब कपड़े भी हरे भरे पहने हुए। और जब मैं तुम्हारा लंच बॉक्स देख रही थी तो काफी हरी हरी सब्जी लेकर आई थी, क्या बात है।
1: वैसे तो हरी सब्जियां भाई इस मौसम में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कभी मिल जाए ना तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जरूर खा लेनी चाहिए। और बात हुई हरे भरे की, तो थोड़ी सी हरियाली आप में भी है। और ये जो उत्सव का सा माहौल है ना, कल से ही जो चल रहा है, आज भी जब हम आए स्टूडियो में तो वो सजावट देख कर लगा कि कल के उत्सव की जो रौनक महक है
0: वो आज भी है, खुशबू है ना आज भी हमारे बीच में महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि हर उत्सव को जब हम खुशी के साथ मनाते हैं तो वो कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग पर असर करता है।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सभी सुनने वालों को बताते हैं कि आज हमारे सखी सहेली के पिटारे में कौन कौन सी जानकारी है या मनोरंजन है और किस चीज पर हम चर्चा करने वाले।
0: तो बताइए आज क्या क्या विषय लेकर आई हैं आप।
1: तो देखिए, सखी सहेली का रिश्ता यानी कि 22 साल पुराना रिश्ता। और कोई भी रिश्ता मजबूत कब बनता है, जब वहां पर प्यार हो, खुशियां हो,
0: विश्वास हो, सम्मान हो।
1: तो रिश्तों की जो मजबूती है उसका आधार क्या है, इस पर हम बात करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और आज बुधवार का दिन है तो साड़ियों की भी कुछ बात होती है। जब उत्सव का समय होता है ना तो भाई जो महिलाएं हैं वो बड़ी सजी धजी नजर आती हैं और साड़ियों के बिना कहाँ श्रृंगार पूरा होता है।
0: तो भाई हम अपनी अलमारी खोलते हैं ना जब उत्सव के दिन की आज हमें खास साड़ी पहननी है तो चंचल लगता है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है, क्या पहना जाए क्या पहना जाए। तो लगभग ये सभी महिलाओं की कमजोरी होती है ना।
1: तो आज जो साड़ी है वो है घर चोला साड़ी, जिसके बारे में बात होगी। और शब्द हमारा, विचार आपके। तो हमारे सुनने वालों को जिस शब्द के बारे में अपने विचार भेजने हैं वो शब्द है नियोजन।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर शब्द है ये नियोजन जी। तो इस पर हमारे श्रोता जो हैं अपने विचार लिखें कि नियोजन का अर्थ क्या है और आपने इसको किस तरह से किस अर्थ में अपने जीवन में उतारा है।
1: और 3 जून का दिन होता है विश्व साइकिल दिवस, तो साइकिल से जुड़ी हुई अपनी यादें भी आप साझा कर सकते हैं।
0: हाँ, ये बता सकते हैं कि जब आपको पहली साइकिल मिली आपकी जिंदगी में, जो पहली साइकिल थी, चाहे वो छोटी सी थी चाहे

0: बड़ी थी या वो उससे बड़ी थी, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि वो साइकिल हमारे लिए कितना मायना रखती थी उस जमाने
1: जी।
0: में, है ना।
1: और आज कई घरों में हमने देखा है कि चाहे दोपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन है, उनके घर में बड़े बड़े वाहन खड़े हैं, लेकिन एक साइकिल जरूर रखते हैं, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेते हुए बहुत जागरूक हो रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाने की बजाय वो
0: साइकिल
1: साइकिल लेके,
0: चलाते नजर
1: हाँ,
0: आते हैं।
1: ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो साइकिल एक घर का परिवार के सदस्य की तरह वो हिस्सा होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और आजकल इसका प्रचलन जो थोड़ा कम हुआ है ना, उससे हमारी सेहत में बहुत बुरा असर भी पड़ा है, क्योंकि हमने हर जगह दुपहिया वाहन या चार पहिए के वाहन को कार को लेकर जाना सीख लिया। थोड़ी सी दूर पर हम सामान लेने जाते हैं और
1: जी
0: अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ले जाते हैं, तो हम हिलना डुलना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने साइकिल चलानी नहीं छोड़ी है तो यकीनन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा।
1: तो साइकिल चलाने के क्या फायदे हैं, इस पर भी आप हमें लिखकर बता सकते हैं। और गर्मियों की बात हो रही है, तो गर्मियों में जैसे हमने शुरू में ही कहा ना कि हरी सब्जियां बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती हैं, और सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, बाकी सब्जियां भी बाजार में बड़ी कम दिखती हैं।
0: हाँ,
1: ले देखे कुछ गिनी चुनी सब्जियां हैं, तोरी है, टिंडे हैं, भिंडी है, कद्दू है, अरवी
0: लौकी
1: है,
0: है।
1: जिसमें से बहुत सारी सब्जियां तो बच्चे पसंद नहीं करते खाना, तो महिलाओं के सामने
0: और बहुत
1: बड़ी
0: सारी
1: समस्या है कि
0: सब्जियां,
1: बनाएं क्या
0: सुनो चंचल, बहुत
1: जी।
0: सारी सब्जियां बनाने पर जो पति देव है ना हमारी सखियों के, वो मुंह
1: जी।
0: फुला लेते हैं, ये क्या बना दिया आज, मैं नहीं खाता हूँ।
1: तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है बिना सब्जी के सब्जी बनाने के लिए बेसन, और बेसन से जाने कितनी तरह की सब्जियां बनाई जा सकती है। तो हमारी सखियां बेसन से कौन कौन सी सब्जी बनाती हैं, जैसे अगर मुझे कुछ याद है तो कड़ी बन जाती है, गट्टे बन जाते हैं, पितौड़ की सब्जी,
0: अरे सारा मत बताओ।
1: और इसके अलावा कौन सी सब्जियां हैं और उनकी रेसिपीज भी हमारी सखियां साझा करें। तब तो ये गीत सुन लेते हैं सखियों के
0: बिल्कुल
1: साथ।
0: सुन लेते हैं, तो अपनी सखियों से हम कहते हैं कि फटाफट तैयार हो जाइए, और बेसन की इन गर्मियों के दिनों में आप क्या सब्जी बनाती हैं हमें भी बताइए।
1: जी।

0: हाँ तो चंचल, जब हम बेकरार होते हैं कब होते हैं बताओ? जब हम किसी के साथ मजबूती से किसी रिश्ते में बंधे होते हैं, है ना?
1: और पता है, जब किसी से रिश्ता बहुत मजबूत होता है, कई बार हम उनके साथ ना हो तो भी उनका जो एहसास है वो हमारे साथ होता है,
0: बिल्कुल सही
1: और
0: कहा,
1: ये उसी रिश्ते की मजबूती को दिखाता है।
0: बिल्कुल। तो रिश्तों की मजबूती के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही हमारे सफल जीवन का आधार है। अगर इस बात
1: बिल्कुल
0: को हम जान लेंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, वरना स्वार्थी रिश्ते तो हर जगह मिलते ही हैं।
1: बिल्कुल, मतलब ही रिश्तों का तो कहते हैं ना कि हर जगह लोग अपना मतलब साधने में ही लगे रहते
0: हाँ
1: हैं, लेकिन जीवन में रिश्तों की कीमत को साधारणतया बहुत कम लोग समझ पाते हैं
0: बिल्कुल
1: मंदाकिनी जी।
0: बिल्कुल
1: लेकिन जो इस बात को समझ जाते हैं कि रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, और इसलिए जरूरी है कि जो भी रिश्ते हमारे साथ हैं और वो हमें मजबूती दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्तों की जो नींव है वो प्यार और त्याग पर ही टिकी होती है। प्यार के धागे में ही रिश्ते पिरोए जाते हैं और त्याग से उन्हें हम प्रगाढ़ता देते हैं, मजबूती देते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: सही कहा। और अपने से बड़ों के साथ अगर हमारे रिश्ते हैं तो विनम्र होने चाहिए, और विनम्रता ही हमारे जीवन पथ पर आगे हमें ले जाती है।
1: जी
0: अहंकार और अक्कड़ से भरा जो व्यक्तित्व होता है वो कभी भी रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पाता चंचल, और
1: हाँ
0: इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता, और क्या होता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेला रह जाता है।
1: लेकिन हम अपने लिए अगर मान सम्मान चाहते हैं ना मंदाकिनी जी, तो सभी जो भी हमें मिलते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबके साथ सरल सहज रहने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। जो जैसा है बस उसे वैसे ही अगर हम स्वीकार कर लें, उसके साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं, तो अगर विपरीत स्वभाव वाला भी कोई व्यक्ति है उसके साथ भी हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, और ऐसा जब होगा तो कभी भी मुश्किलें आएंगी ही नहीं हमारे जीवन में।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हम जिन रिश्तों से जुड़े होते हैं वो तो हमें जन्मजात मिलते हैं, मतलब वो भगवान की देन है, ऐसा हम मानते हैं,
1: हाँ
0: ठीक है। और उनमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता, भाई माता पिता हैं, भाई बहन हैं, ये
1: जी
0: हमारे रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। बदलाव लाना है तो अपने स्वभाव में लाना होता है, और प्रेम पूर्ण होकर संबंधों को निभाने का जो प्रयास है वही आपके जीवन को खुशियों से भरता है।
1: बिल्कुल, और एक सफल और संतुष्टिदायक जीवन अगर जीना है तो रिश्तों को मजबूत बनाना भी जरूरी हो जाता है हम सबके लिए। विश्वास, संवाद, सम्मान, सहानुभूति, प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देकर हम सार्थक संबंध बना सकते हैं और उनको हमेशा के लिए कायम भी रख सकते हैं, और यही व्यवहार हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को समृद्ध करने में भी मंदाकिनी जी
0: सहायक
1: बहुत मदद
0: होते
1: होता
0: हैं,
1: है।
0: बिल्कुल।
1: दोस्त बनाने की कोशिश हम जरूर करें, लेकिन अच्छे दोस्त बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्त हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वो हमारे बहुत बड़े राजदार भी होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसे दोस्त चंचल बहुत कम मिलते
1: जी
0: हैं। ज्यादातर लोग दोस्ती करते तो हैं, कहते हैं भी हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब आप उनसे दोस्ती करते हैं तो वही आपके साथ क्या करते हैं, ये हम
1: बिल्कुल
0: कह नहीं सकते हैं। रिश्ते जो होते हैं हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई को उजागर करके हमें बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखते समय बस थोड़ा सा सावधानी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल, हमारे आसपास परिवार के लोग जो भी होते हैं, ये इनके साथ हमारे रिश्ते बहुत भावनात्मक होते हैं, और ऐसी दुनिया में सच्चे संबंध से लेकर तेजी से ये जो रिश्ते हैं मूल्यवान होते जा रहे हैं। मजबूत रिश्ते बनाने की कला में जो महारत हासिल करनी है अगर आपको, तो भाई आपके अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है।
0: सबसे बड़ी बात है कि आप प्यार दें, सम्मान दें, विश्वास दें, है ना। और इसके अलावा मजबूत रिश्ते सुखी और संतुष्टिपूर्ण जीवन की आधारशिला माने जाते हैं। चाहे अगर हम व्यक्तिगत बात करें जैसा कि आपने कहा, या व्यवसायिक स्तर पर बात करें, अगर हमारे व्यवहार में कड़वाहट है तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा।
1: अब देखो ना, हमारे सुनने वालों का एक संदेश मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल और संतुष्ट जीवन का वास्तविक आधार है। मजबूत रिश्ते जीवन में भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक शांति, कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करते हैं। अकेले कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सार्थक और गहरे संबंध ही जीवन को सही मायने में खुशहाल बनाते हैं। सफल जीवन में मजबूत रिश्तों की मानसिक चुनौतियां और उतार चढ़ाव के समय परिवार दोस्तों के साथ तनाव करने में मदद करता है। अच्छे रिश्ते आपको नई सीख, दृष्टिकोण और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपके व्यक्तिगत रूप से आपको बेहतर बनाते हैं।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ये भी लिखते हैं चंचल कि रिश्ते जो हैं जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक संतोष रिश्तों की मजबूती से ही प्राप्त होता है। परिवार हो, मित्र हो, समाज हो, इनसे जुड़े जो रिश्ते हैं वो हमारे जीवन को प्रेम देते हैं, विश्वास देते हैं और अपनत्व से भर भी देते हैं। तो ये जो रिश्ते

0: हमें कठिन समय में संबल देते हैं और सफलता के क्षणों को और अधिक आनंदमय बना देते हैं। इसलिए रिश्तों को समय दें, उन्हें सम्मान दें, प्रेम से सींचे, क्योंकि रिश्तों की मजबूती ही सफल और सुखी जीवन का सच्चा आधार होती है।
1: और भाई बातें तो भी बहुत सारी करनी है, संदेश भी पढ़ने, लेकिन साथ में गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
0: चलिए

0: वही मैं कहने वाली थी, कितना प्यार से हम किसी को कहते हैं ओ मेरी सोना रे, है ना, ये प्यार है और ये रिश्ता बना रहे उसके लिए हम इस तरह का भाव रखते हैं मन में। तो एक श्रोता लिखते हैं, चंचल, की रिश्तों की मजबूती किसी इमारत की नींव की तरह होती है, जो दिखती तो नहीं है पर सब कुछ उसी पर टिका होता है। रिश्तों में संवाद के दौरान बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना पड़ता है, तर्क वितर्क करने पर बहस की स्थिति बन जाती है। जबरन अपनी बात मनवा लेना किसी रिश्ते की जीत नहीं होती, वो बात अपनी पसंद दूसरे पर थोपना भी नहीं होता।
1: जी
0: रिश्तों में बहुत सी गलतफहमियां बन जाती हैं जो चुप्पी से लंबे समय तक रह सकती हैं, उन्हें आपसी बातचीत और सहमति से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी में सामने वाले की अच्छाइयों के साथ कुछ छोटी छोटी कमियां भी होती हैं, उसे स्वीकार करें, माफी मांग लेना, माफ कर देना, वो
1: जी
0: ज्यादा अच्छा होता है।
1: और यही बात हमारे श्रोता ने पहले भी लिखी थी, जो जैसा है वैसे अगर उसे स्वीकार कर
0: कर लिया
1: लिया
0: जाए
1: जाए तो रिश्तों में कहीं कोई बनावट नहीं होती, या कहते हैं कि तनाव नहीं रहता। ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। इसी तरह से हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मेरे जीवन का आधार मेरी धर्म पत्नी है, और उनके आने से दो कलियां मेरे जीवन में खिली, और पैरालिसिस होने पर भी उन्होंने मेरा सारा साथ दिया और सहारा बनकर पूरे परिवार को संभाल लिया। आज उसी वजह से मैं स्वस्थ हो सका हूँ, और इसीलिए कहते हैं कि सही समय में जीवन साथी बनी वो मेरी, और जीवन का वो आधार है।
0: क्या
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है,
1: है,
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके लिए हम अपनी जो आपकी धर्म पत्नी है उन्हें सैल्यूट करते हैं
1: जी।
0: कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते कि मजबूत रिश्ते एक सुखी और सफल जीवन गहरे में और आत्मीय संबंध जीवन के तनाव को कम करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जहां एक ओर अकेला व्यक्ति संघर्षों में टूट जाता है, वहीं मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध उसे चट्टान जैसा सहारा देते हैं।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये चट्टान और मजबूत होगी अगर आप उसे प्यार से हमेशा सींचते रहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि रिश्तों की मजबूती हमारे लापरवाह होने पर कमजोर पड़ जाती है। मैं स्वयं के अनुभव से ये बता रहा हूँ कि नौकरी में रहते हुए हम कभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाए, माँ के संरक्षण में ही रहे तो सब अपने मन के हो गए। जब घर आते तो सब सामान्य दिखते थे, लेकिन करते वो अपने मन की थे। एक ने तो बीए तक कर लिया, जूनियर हाई स्कूल खत्म कर दिया है उसने, दूसरे ने, और आज बुढ़ापे में घर में पड़े उन दिनों की ढिलाई का परिणाम हम भुगत रहे हैं। अनुशासन जब सिखाना चाहिए था, जब सिखाया नहीं गया, और अब वो सब अपने अपने परिवार में मस्त हैं। पत्नी रही नहीं तो अब सब होते हुए भी सारे रिश्ते बेमानी से लगते हैं, और बस मुश्किल के दिन उनके गुजर रहे हैं। तो कई बार हमने जब अगर रिश्तों पर हम ध्यान नहीं दे पाते तो सिर्फ ये अफसोस और काश हमारे जीवन में रह जाते हैं। इसीलिए समय पर वो बच्चों को जो हम कहते हैं संस्कार देना, या बच्चे जो है ना हमारे व्यवहार से ही सीखते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप अपने व्यवहार में वो सारी अच्छाई या
0: बच्चों को दें।
1: जी
0: बिल्कुल, ताकि बच्चे भी बड़े होकर वही आपको दें, है ना। ये तो है कि टिट फॉर टैट होता ही, अगर आपने अपने माता पिता को दुख दिया है तो आपके बच्चे भी फिर आपको बड़े होकर दुखी देंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि उन्होंने जो देखा है वही उनके मन में, उनके जो बीज है भीतर, वही तो उत्पन्न हुआ है ना, वही फलता फूलता है। इसलिए हमेशा खुद को, जब तक हम एक प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए आइडियल नहीं बनेंगे, बच्चे भी नहीं बन पाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल जीवन का सबसे प्रमुख आधार है। ये भरोसा, सम्मान और त्याग के धागों से बंधा होता है, जो न केवल व्यक्तिगत खुशी लाता है बल्कि कड़े समय में भावनात्मक संबल भी प्रदान करता है। गहरा और सच्चा रिश्ता ही सफलता का सफर है, असली प्रेरणा है। समर्पण और प्रेम से सींचा जाना चाहिए सफल जीवन के रिश्तों का महत्व। भावनात्मक स्थिरता, मजबूत रिश्ते तनाव कम करते हैं और मानसिक शांति हमें प्रदान करते हैं। वहीं वो कहते हैं साथी कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ सूत्र है, विश्वास, ईमानदारी, जिससे कि हमारे रिश्ते जो है टिके रहते हैं। संवाद, मधुर संवाद होने चाहिए, त्याग और स्वीकृति की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को समय देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अहंकार और अक्कड़ रिश्तों के लिए सबसे बड़े बाधक होते हैं, जो व्यक्ति को अकेला कर देते हैं। और सच्चा वैवाहिक जो जीवन है तभी सफल होता है जब आप दोनों मिलकर रहते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते अगर मजबूत हैं तो जीवन सफल होता है। अगर हमारे जीवन में रिश्ते हमने नहीं कमाए तो समझिए कि काम जीवन कुछ भी काम नहीं आया, और वो रिश्ते सफल नहीं होंगे। इसीलिए अपने रिश्ते अगर हम मजबूत रखेंगे तो किसी भी ज़रूरत के समय वो हमें उनसे मदद मिलेगी, और वो आपके अगर साथ होंगे तो यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और आगे छोटा सा संदेश है हमारे श्रोता का, हम भी रिश्ते निभाते हैं और बनाते भी हैं, और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हम परिवार में ही रहते हैं।
0: बिल्कुल, तो अब एक गीत सुन लिया जाए।
1: जी।

0: तो देखा आपने कितनी इल्तिजा कर रही थी कि दूरी मत होना, दूर नहीं होना, और ये रिश्ते हमें निभाने हैं, है ना।
1: और रिश्तों में ही तो कई बार हम प्यार से सुनना वगैरह

0: हाँ चंचल, देखिए जीवन से भरी जब आंखें होती हैं ना, तो आपके व्यक्तित्व पे चार चांद लगा देती हैं, है ना। और ऐसे में जब महिलाएं खास तौर से खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं, तो फिर उनको तो देखते मन ही भरता नहीं है कि क्या बात है।
1: और आपने बात की भाई किसी खास मौके की, तो शादी एक ऐसा मौका होता है ना जब हमें अपना कल्चर उसे दिखाने का और उसमें लुत्फ उठाने का कोई जब मौका मिलता है तो उसे महिलाएं खास तौर पे बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। शादियों में रीति रिवाज के अलावा सबसे ज्यादा खास होता है पारंपरिक खाना और पारंपरिक पहनावा।
0: पहनावा। और शादी किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन के सबसे खास मौकों में से तो एक होता ही है। दुल्हा दुल्हन के कल्चर और रीति रिवाज शादी के मौके को और भी खास बना देते हैं। हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपने नियम होते हैं और उनका अपना खास महत्व भी होता
1: तो
0: है।
1: आज हम गुजरात के कल्चर की एक खास साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं मंदाकिनी जी, और जिसे कोई लड़की शादी में पहनकर अपने जो भी उसके लुक्स हैं उसे वो और भी ज्यादा निखार सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं घरचोला साड़ी की।
0: क्या बात है, घटचोला साड़ी इतनी सुंदर लगती है चंचल
1: जी
0: कि पूछो मत। तो घटचोला साड़ियां गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है और इन्हें जो खास दुल्हन की साड़ी के रूप में चुना जाता है। घटचोला साड़ी के चेकर्ड ग्रिड में प्रत्येक वर्ग दुल्हन और उसके वैवाहिक घर के लिए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा माना जाता है।
1: और ये दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, तो वहीं इस साड़ी की जो खूबसूरती है और इसकी तरह ही इसका मतलब भी बड़ा खास होता है। घट चोला यानी कि नाम में दो गुजराती शब्दों को मिलाया गया है, घर
0: घर
1: जिसका मतलब होता है,
0: घर

0: और चोला इसका मतलब है कि पोशाक। और
1: हाँ
0: दुल्हन अपने पैतृक घर से यानी कि पिता के घर से वैवाहिक घर में जाने को इस चीज के बारे में दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कि दुल्हन का नया घर और उस चोले को पहनकर ये लड़की उस नए घर में प्रवेश
1: प्रवेश
0: करती।
1: करती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से इस बात को रखा गया है। और वैसे तो घरचोला एक साड़ी होती है, लेकिन आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
0: और देखिए ना, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है। बातें
1: बिल्कुल
0: हम जारी रखेंगे, लेते हैं अंतराल।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी।
0: बात कर रहे थे हम साड़ी की।
1: बिल्कुल, साड़ियों की बात हो और हम भूल जाएं, ऐसा कभी होता है चंचल? तो हम बात कर रहे थे कि आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे दुल्हन अपने सिर पर ओढ़ती है। और ये कॉटन या सिल्क से बना होता है, जिस पर जरी का काम किया जाता है। घटचोला साड़ियों में पारंपरिक रूप से जरी की बुनाई के साथ चेकर्ड ग्रिड डिजाइन होता है और अक्सर मोर, कमल, फूल पत्तियां जैसे शुभ चिन्ह भरे होते हैं।
0: जब आपने दुपट्टे का जिक्र किया तो मुझे याद आया, सिर्फ महिलाएं ही नहीं पहनकर सचती संवरती, जब कुर्ता पायजामा मर्द पहनते हैं तो जो हमारे पुरुष साथी है ना, वो भी घटचोला का दुपट्टा लेना बड़ा पसंद
1: करते हैं, रख लेते हैं वो
0: जी।
1: हाँ।
0: और हम बात कर रहे थे साड़ी की, जो आपने बताया चेकर डिजाइन होते हैं, फूल पत्तियों के चिन्ह होते हैं इस पर। और क्योंकि ये एक पारंपरिक विवाह में पहने जाने वाली साड़ी है, तो इसमें वर्गों की जो संख्या है अनुष्ठानिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्गों की संख्या 9, 12, 92 के गुणांक में होती है। और ये पहले कपास से बनी होती थी, लेकिन अब रेशम का भी इसमें उपयोग किया जाने लगा है।
1: हाँ, हालांकि घटचोला साड़ी में क्या है कि बांधनी साड़ियों की जैसा मिश्रण होता है चंचल, जिसमें घटचोला के जरी ग्रिड पैटर्न के भीतर बांधनी टाई डाई को शामिल भी किया गया है।
0: घटचोला बनाने की शुरुआत गुजरात के खंबात जिले में हुई थी और तब से लेकर आज तक गुजरात में साड़ियों, ये जो साड़ी है वो शादियों में बहुत अहम हिस्सा मानी जाती हैं। इस साड़ी की सबसे खास पहचान है ग्रिड पैटर्न, और ये साड़ियां पारंपरिक रूप से विवाह जैसे खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। इन साड़ियों में गुजरात की पारंपरिक खास साड़ी है ये, खासतौर पर जामनगर, राजकोट इलाकों में इनका बहुत ही ज्यादा चलन देखने मिलता है।
1: बिल्कुल, और सास की तरफ से बहू को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो घटचोला दूल्हे के परिवार की तरफ से दिया जाता है, जिसे ओढ़कर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है। और ये नए परिवार की स्वीकृति और आशीर्वाद का प्रतीक भी होता है। और जब दुल्हन अपने नए घर में स्वागत के लिए पानेत्र साड़ी के ऊपर जो है घटचोला साड़ी डालती है, तो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शादी के बाद दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन का हमेशा ख्याल रखेंगे।
0: इनमें से बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी हम तक लिखकर पहुंचाई हैं, उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। और घटचोला जो है वो दुल्हन को अपने सिर और कंधे दोनों पर वो ओढ़ कर आती है, जिसे फेरों के समय दूल्हे को के दुपट्टे के साथ में बांध दिया जाता है। ये पति पत्नी के अटूट संबंध और इस जोड़े के बीच के पवित्र रिश्ते और उसकी मजबूती को दर्शाता है। इसलिए भी शादी में इस साड़ी का बहुत महत्व
1: होता है। बिल्कुल, और घटचोला साड़ी एक सदाबहार फैशन है जो कभी फैशन से बाहर नहीं जाता। इसे शादी के अलावा आप दूसरे फंक्शंस में भी पहन सकते हैं। देखा है बहुत सारी महिलाओं को चाव से पहनकर जाती हैं। ज्यादातर लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला है, ये रंग इसमें बेहद खास लुक देता है। और इसके दुपट्टे को लहंगे के साथ भी अलग अलग स्टाइल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से हम पहन सकते हैं, जो खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
0: तो भाई कुछ गाने भी सदाबहार होते हैं साड़ियों की तरह, सुन ले।
1: बिल्कुल, जो हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं।

जब कोई देखे हमें साथ। इसीलिए तो कहा है प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, प्यार का फसाना।

0: कुछ तुम कहो और कुछ हम कहें, यानी बात हम करेंगे अब विश्व साइकिल दिवस की। कुछ हम कहेंगे, कुछ हमारे श्रोता तो कह रहे, कुछ नहीं बहुत कुछ कह रहे
1: कहेंगे। बिल्कुल ही इतना प्यारा विषय है साइकिल, हमारा इतना प्यारा एक ऐसा
0: याद है,
1: याद हमारा अभिन्न मित्र हुआ करता था एक जमाने में, जब हमें पहली साइकिल मिली थी, तो आज भी भुलाई नहीं भूलती।
0: और 3 जून को ये दिन हम मनाते हैं, और इसका उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में जागरूक करना। और ये दिन इसलिए भी खास है मंदाकिनी जी, क्योंकि साइकिल एक ऐसा परिवहन साधन है जो वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है और पर्यावरण को भी बचाने में मदद करता है।
1: बहुत बड़ी बात। और ये परिवहन का एक सबसे सस्ता, सरल और टिकाऊ और सुलभ साधन है चंचल। इसे हर वर्ग के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन दिनों साइकिलिंग को एक स्वस्थ और किफायती परिवहन विकल्प के में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। साइकिल चलाना सामाजिक समावेशन और शांति की संस्कृति को बढ़ावा भी देता है।
0: विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में मनाने की घोषणा की थी, और ये दिन साइकिल के महत्व पर बहुत सारी बातें हमें बताता है। और हम सब भली भांति इस बात को समझते हैं कि साइकिल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, और पर्यावरण के नजरिए से भी अच्छा कदम है, ये हम बता ही चुके हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और इस दिन का समर्थन करने वाले भी मानते हैं कि साइकिल का उपयोग विकास को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं के लिए शरीर को मजबूत करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करने के साधन का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
0: अब देखो ना, हमारे जो साथी वो क्या लिख रहे हैं। साइकिल कभी मध्यम वर्गीय परिवार की आन बान शान हुआ करती थी। जो साइकिल चलाता था या जिसके दरवाजे पर साइकिल होती थी, समझिए कि वो समाज में सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। और इसी तरह कहानी में कोर्स की किताब भी पढ़ी है हमने। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा साइकिल की सवारी के लेखक सुदर्शन हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इन प्रेरणादायक कहानी में आदर्शवादी संदेश होता था, और ये कहानी हास्य से भरपूर है, जिसमें लेखक साइकिल सीखने की प्रबल इच्छा और इसके दौरान उनके द्वारा किए गए मजेदार प्रयासों के बारे में वर्णन करता है। तो अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़नी
1: चाहिए। बहुत सुंदर जिक्र किया है इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब मैंने पहली बार साइकिल पर कदम रखा तो मेरे मन में धुकधुकी थी, कहीं मैं गिर न जाऊं। संतुलन बनाने की कोशिश में शुरुआती कुछ पलों में हैंडल कांप रहा था और मुझे पैडल मारने में डर लग रहा था। कुछ बार लड़खड़ाने और गिरने के बाद मैंने संतुलन बनाना सीखा।

0: हवा का एहसास जैसे ही मैंने पैडल पर पूरी ताकत लगाई और साइकिल आगे बढ़ी तो चेहरे पर ठंडी हवा का सुखद एहसास था।
1: और हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि जब मैंने पहली बार पापा को साइकिल के लिए कहा तो उसके 2 साल बाद मेरी साइकिल आई। यानी कि पहले के माता पिता भी ऐसे होते थे कि तुरंत आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते थे,
0: बिल्कुल
1: सही समय आने पर ही वो ला कर देते थे।
0: बिल्कुल
1: आगे इन्होंने लिखा है कि जब भी पापा से पूछो कब आएगी तो वो कहते एक टायर बन रहा है, फिर कहते हैंडल बन रहा है, फिर कभी कहते कि सीट बन रही है, और इस तरह उन्होंने 2 साल निकाल दिए।
0: कितनी अच्छी बात है। और वहीं आजकल के माता पिता 2 मिनट भी नहीं लगाते, अगर बच्चे ने कह दिया मुझे मोटरसाइकिल चाहिए मुझे मोबाइल चाहिए तो 2 मिनट में आ जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की बात चली है तो आपको बता दूं 1999 में कक्षा 10वीं पास करने पर मेरे को मिली थी, उसकी खुशी मैं बयान नहीं कर सकता। और आज दो दो दुपहिया वाहन है, किंतु साइकिल की बात कुछ और ही है। मेरी वो साइकिल आज भी मैंने संभाल कर रखी है। मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा ये गाना भी सुनना चाहते थे।
1: और भाई ये गाना नहीं सुना, ये गाना कोई दूसरा सुनवा देंगे, गाने सभी अच्छे हैं। और संदेश बताइए क्या है।
0: ये लिखते हैं कि एक अन्य श्रोता कि दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल तब चला सकते हो जब आप साइकिल चलाना सीख गए हो, मतलब दोपहिया वाहन चलाने से पहले साइकिल चलाना आना जरूरी है। भाई वो तो बेस है आपका, है ना, वो तो सबसे पहले आप नहीं सीखेंगे तो उसके बाद दूसरी चीजों पर जब आप हाथ साफ करेंगे तो आपको डर लगेगा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ ये बात भी होती है चंचल कि साइकिल चलाने के साथ घुटने टूटने का जो है ना, घुटनों में चोट लगने का जो एक सबसे बड़ा नजर आता है, वो उसके लिए तैयार रहना चाहिए।
1: एक और बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है कि नियमित साइकिल चलाने से हृदय फेफड़े मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है और इसी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां, मोटापा, गठिया, मधुमेह, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों के खतरे को हम कम कर सकते हैं। साइकिलिंग तनाव को भी कम करती है और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देने में ये सहायक है। तो चले अब गाना सुन ले।
0: नहीं, एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया है
1: तो पढ़िए ना।
0: हाँ, ये लिखते हैं कि मेरे लड़के ने पूरी पढ़ाई साइकिल कॉलेज लेकर जाकर की है और इस साल फाइनल पढ़ाई होगी, अभी भी वो साइकिल चलाता है।
1: क्या बात है।

0: हाँ तो चंचल, वक्त तो तब गुजरेगा ना जब आप वक्त का ध्यान रखेंगे, और कैसे ध्यान
1: जी
0: रखेंगे कि आपके पास घड़ी होगी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हम लोग जब हाई स्कूल पास करते थे तो लड़कियों को हाथ की घड़ी दिया करते थे हमारे माता पिता, और हम लड़कों को साइकिल मिला करती थी।
1: तो भाई ये भी एक तरह का नियोजन है, यानी कि प्लानिंग है
0: हाँ
1: कि लड़कियों को क्या देना है, लड़कों को क्या देना है। उस समय पहले की अगर बात जब चल रही है ना, तो लड़कियों को भाई वाहन चलाते समय कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, उन्हें थोड़ा नाजुक समझकर इस तरह के उपहार नहीं दिए जाते थे। और लड़कों को क्योंकि बाहर जाकर ही सारे काम करने हैं,
0: इस चीज
1: और
0: में साइकिल दे दी जाती थी, लेकिन
1: दोपहिया
0: आज
1: वाहन या
0: उल्टा है।
1: मोटरसाइकिल का इतना फैशन नहीं था
0: हाँ,
1: तब।
0: आज उल्टा है चंचल, आज लड़कियों को कमजोर नहीं मानते हमारे
1: जी
0: माता पिता भी, और उन्हें यहाँ तक कि 4 पहियों वाली गाड़ी भी दिलाने में कोई परहेज नहीं करते हैं।
1: और बिल्कुल इस बात का नियोजन भी अब सब माँ बाप करते हैं। और नियोजन पर ही बात हो रही है, नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना या फिर प्लानिंग करना। और दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द है इसमें। इसके जो अन्य शब्द हैं, योजना, आयोजन, प्रबंध, व्यवस्था, रूपरेखा या
0: या
1: फिर
0: रणनीति,
1: रणनीति।
0: इस अर्थों में भी इनको समझा जा सकता है, इन शब्दों से भी। और नियोजन एक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें
1: जी
0: भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक यानी जरूरी कार्यों और संसाधनों का निर्धारण किया जाता है, और ये प्रक्रिया लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है।
1: बिल्कुल, नियोजन में की जो प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे चरण शामिल होते हैं, जिसमें विकल्पों का मूल्यांकन, योजना का चयन, उसका क्रियान्वयन, और नियोजन में भविष्य में आने वाले जो भी जोखिम है या अनिश्चितताएं हैं, उनका पहले से ही एक अनुमान निकाल कर क्या समाधान हो सकता है, इसकी तैयारी की जाती है।
0: बिल्कुल, और नियोजन में किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये निर्णय लेने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो तय करती है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
1: इसीलिए हमारे श्रोता लिखकर हमें बता रहे हैं कि नियोजन प्लानिंग का सामान्य अर्थ योजना बनाना है। ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसमें यह तय किया जाता है कि काम कब करें, कैसे करें, कहाँ करें, किसके द्वारा किया जाएगा, और उपलब्ध साधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर लेना, ताकि जो लक्ष्य है उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। ये सब वैसा ही है जैसा हम अपने घर का बजट बनाया करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और अगर सरल शब्दों में हम इसे समझें तो वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को कम करना भी नियोजन है, और ये तय करना कि आने वाले समय में हमें किस दिशा में काम करना है। किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है वही नियोजन है, और ये योजना वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के आधार पर बनाई जाती है।
1: और बिल्कुल मंदाकिनी जी, समय, धन, उपलब्ध संसाधन, इन सब का बेहतर उपयोग भी जिस तरह से किया जाएगा, ये नियोजन ही बताता है हमें। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो उनमें से किसी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना भी नियोजन का मुख्य हिस्सा होता है।
0: और नियोजन का यानी जो है विभिन्न तरीकों में से जो सबसे उपयुक्त और प्रभावी मार्ग का चयन करना वही नियोजन कहलाता है।
1: तो ये भी एक नियोजन है ना कि बातों के बाद गाना सुनवाना है।

0: बहुत सुंदर गीत था
1: बहुत सुंदर गीत था, और सुनने के बाद एक मन में अलग सा
0: जी
1: नशा आ गया है।
0: जी
1: और चंचल, हम बात कर रहे थे ना कि भाई आजकल गर्मी का मौसम है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सब्जी बनाएं, क्योंकि महिलाओं की खास तौर से ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो
0: और वो
1: हमारे
0: इसलिए होती है क्योंकि बच्चे बड़े चूजी होते हैं, वो बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए मना कर देते हैं। जब भी उन्हें बोलो टिंडे की सब्जी बनेगी तो उनका मुंह बन जाता है, लौकी बनाओ तो उसे वो खाना पसंद नहीं करते। तो कितने कितने जतन करती हैं महिलाएं कि वो सब्जियां उनको
1: खिला दी जाए
0: हाँ
1: किसी भी तरह से,
0: ताकि उनका
1: लेकिन
0: पोषण मिले।
1: लेकिन तुम मुझे माफ करना, बच्चों को तुम बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हो, है ना। देखा जाए तो हमारी सखियों में से भी कुछ सखियां ऐसी हैं जो हर तरह की सब्जी खाना पसंद नहीं करती हैं।
0: तो भाई ऐसे में बहुत अच्छा आपके पास एक विकल्प है कि बेसन की तरह तरह की सब्जियां आप बना सकती हैं। उसके लिए बेसन, सिंधी बेसन की टिक्कियों की सब्जी, इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखकर बताया है कि इसके लिए सबसे पहले बेसन को कम पानी से टिक्कियां बनाना है। इसमें अनारदाना और हरा धनिया भी डालते हैं। फिर तवे पर बहुत कम तेल में इनको सेका जाता है। प्याज लहसुन अपनी इच्छा के अनुसार, अदरक हरी मिर्च, इन सबको डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। एक अच्छी स्वादिष्ट सी ग्रेवी बनाना है, उसमें नमक लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। आप अन्य मसाले भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला डालकर बेसन की टिक्कियों को डालकर थोड़ी सी आंच पर इसे पकाना है और सिंधी बेसन की टिक्कियों वाली सब्जी तैयार हो जाती है।
1: बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है ये। हमारी एक सहेली थी, वो सिंधी थी, उनके यहाँ मैंने ये सब्जी खाई भी है।
0: जी
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखती है कि बेसन की चीले वाली सब्जी, क्या बात है। बेसन को नमक हल्दी अदरक मिर्ची का पेस्ट के साथ चीले की तरह घोल लें और तवा पर चिली को सेक लें, मतलब चिली को सेक लें, इस दोनों तरफ से फोल्ड कर लें, फिर इन्हें चाकू से काट के टुकड़े के रूप में बना लें। ग्रेवी के लिए धनिया पाउडर पिसा हुआ, पीला सरसों, लहसुन, जीरा, मिर्च, इन सभी को बारीक पीस लें। कढ़ाई में तेल डालें, राई का तड़का दें, बारीक कटा प्याज भून लें, पिसें पिसे हुए टमाटर डाल दें, मतलब अगर आपने टमाटर को भी पीस लिया है। साथ ही मसाले, जो भुने हुए मसाले हैं, उनकी ग्रेवी तैयार होने पर बेसन के टुकड़ों को डाल दें, 5 मिनट तक इसे पकाएं। स्वादिष्ट जो है सब्जी आपकी तैयार है, और बहुत सारे लोग इसे शाकाहारी मछली भी बोलते हैं।
0: क्या बात है। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो जन जल रहे ना रहे हम यूं ही महकते रहेंगे और ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। और अब ही सखी सहेली से हमें इजाजत लेनी होगी क्योंकि
1: जी
0: वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है।
1: जी
0: तो
1: तो
0: कार्यक्रम
1: चलिए
0: समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी
1: और
0: और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गायत्री आहूजा को, जो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान की विभागाध्यक्ष है, यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये संस्था देश भर के दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ऐसे छात्र जो श्रवण बाधित हैं और बोलने में समर्थ नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताएंगे डॉक्टर गायत्री आहूजा। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर गायत्री, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और विविध भारती से जुड़ना मुझे लगता है काफ़ी सम्मान की बात होती है, सो थैंक यू सो मच। और ये इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच।
0: और ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो इस संस्था के बारे में आप जानकारी दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बताइए कि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा बाकी बच्चों से किस तरह से अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक साथ दो सवाल हो गए।
1: कोई नहीं। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और जहाँ पे मैं वहाँ पे काम करती हूँ, ये हेडक्वार्टर्स है। और हेडक्वार्टर्स से जुड़े हुए रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे सिकंदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा है। हमारे अंतर्गत कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गोवा एंड छतरपुर, नागपुर एज वेल। हम सारी संस्था जो हैं स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज पे काम करती हैं। पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं। मतलब आप अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे, एज वेल एज 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे। तो उन सब की हम श्रवण की जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में, स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहाँ पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं। अच्छा। हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद एम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए। वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं, वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है कि जहाँ पे हम बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं।
0: जी,
1: ये हो गया पहला सवाल।
0: हाँ, राइट। और फिर कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना, और श्रवण बाधित जो बोलने में समर्थ नहीं है उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
1: ओके, अब जो बच्चा एडुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एडुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं। ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं। पर आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब

0: सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज. ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है. अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं. एक ग्रुप जहाँ पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे. फिर एक ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं. तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है. ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो हो गए जनरल गोल. पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूँ तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना. अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीजों से जुड़ी हुई है. फॉर एग्जाम्पल, अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन भी हो रहे हैं, मेरे आंख वाक भी, यू नो, इट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ. ठीक है, नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको, जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है. तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट रोल. कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज्यादा जरूरी है. भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा. तो जो एडुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो एडुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एडुकेशन का विकास करते हैं. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना. तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है, या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है. अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं. और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी. तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं. तो
1: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं. कौन सा गाना सुनवाए?
0: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना बहुत पसंद है,
1: ये धरती ये नदियाँ
0: और विविध भारती और अलियावर जंग.
1: क्या बात है, सुनते हैं.
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या?

0: इस गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाती हैं, कैसे ट्रीट करती हैं उनको?
1: पेरेंट्स के लिए, नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज़ प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफ़ी हेल्दी होगा। ओके, इट्स नॉर्मल, बट जब चाइल्ड इज़ बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं, बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस, कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ओके, आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज़ हैविंग दिस एज अ कंसर्न। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो। यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है। उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इस ही घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर इन्वॉल्व हुए तो यस, द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से। इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं। क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं, तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं। स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार, या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें। टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है,
0: रिश्तेदारों को
1: और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे, शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है। अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4 साल 5 साल के बाद हो जाता है, तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का, ये बढ़ते जाता है, ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो यस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, सुनील सहस्रबुद्धे, वो खुद PhD कर रहा है। शिवाजी पांडा सर हैं, काफ़ी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो PhD हो भी चुकी, उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में। सो देर आर मैनी

0: आर हैविंग हियरिंग लॉस और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। हम हियरिंग लॉस के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा, वो खुद भी हियरिंग
1: बिल्कुल
0: इम्पेयरमेंट है उनको है, एंड गैलोडेट यूनिवर्सिटी में डीन रह चुके हैं। सो इट इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट टाइमली और अप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम लेके अगर हम काम करें तो थिंग्स आर पॉसिबल।
1: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं? ज्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
0: देखिए अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, ओके? सो अगर ये तीन चीज़ आपने सही, टाइमली, अप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स, इश्यूज नहीं आएंगे। हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो BSLP जिन्होंने कर चुके हैं, ओके? ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी, ओके? एडुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ। टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं, प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन IIMs, IITs ऑल्सो यू विल
1: क्या
0: फाइंड।
1: बात है।
0: तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस, थिंग्स आर पॉसिबल। प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत जरूरी है। टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस, थिंग्स आर पॉसिबल।
1: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
0: ओके, फॉर सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूँ तो आप जोर से आवाज़ बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है। आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देर इज़ नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन। हमें जब आवाज़ आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके? जहाँ से आवाज़ आती है हम उस तरफ देखते हैं तो बच्चा वहाँ पे रेस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर बहुत जोर से कोई आवाज़ आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल, ओके? अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है तो दीज आर सर्टन साइंस जहाँ पे बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगेन घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देर इज अ डोर बेल। तो इन्वायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो यस, द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज। बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड, मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, पर उसके लिए जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा जोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है। बट वेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स हैं। तो ये सब एक बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और अगर ऐसा कोई बिहेवियरल रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है, तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉकलियर इम्प्लांट लगें या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक।
1: और शुरुआत में कोई चीज पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है। अगर छोटी मोटी तकलीफें, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है। यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: पल पल दिल के पास,
1: तुम रहती हो।
0: हाँ जी, किशोर कुमार जी।
1: जी सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा, वाचा और संप्रेषण में तकलीफ होगी, ठीक है। पर ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके। उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा, भाषा और संप्रेषण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा, वाचा और संप्रेषण में प्रॉब्लम आएगी। स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं।

0: स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है. ओके, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ, या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है. तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं,
1: जी
0: पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं. तो पहले जब हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था. RPWD एक्ट जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग. एंड दोनों के टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफ़ी अलग हैं. तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं.
1: बिल्कुल. और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं,
0: राइट राइट राइट हाँ,
1: तो उनके लिए भी
0: उनके लिए भी थेरेपीज होती हैं. एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है. तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है, तो आप उसको प्लीज एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं. टू एड वन थिंग कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रशस्त ऐप बनाया है. ओके, तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है. ओके, तो वो स्क्रीनिंग करने में काफी यू नो आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा.
1: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
0: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग यू नो डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी. तो उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बिठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज़ करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा, आपकी तरफ देख के यू नो वो समझता होगा, तो उसमें काफ़ी मदद हो जाती है. तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें. क्लासरूम नॉइज को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके.

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। हम उपस्थित हैं आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्ते और स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना का युवा कार्यक्रम युवानी, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रचा।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त नीलिमा। आज है बुधवार, और जैसा कि आप जानते हैं, बुधवार का मतलब है धमाकेदार घूमता माइक्रोफोन। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का सफर होने वाला है सुपर एक्साइटिंग।
0: बिल्कुल नीलिमा, आज हमारे पास चर्चा के लिए एक से बढ़कर टॉपिक्स हैं। आज वर्ल्ड बाइसिकल डे पर हम बात करेंगे साइकिल चलाने के फायदे की, साथ ही ग्लोबल रनिंग डे के बहाने फिटनेस का डोज भी लेंगे।
1: और हाँ, आज महान संत कवि कबीर दास जी की जयंती भी है, तो हम उनके अनमोल दोहों और शिक्षा की रोशनी में आज के दिन खास बना शिक्षा की रोशनी में आज का दिन खास बनाएंगे। साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और आज के स्पोर्ट्स अपडेट्स तो होंगे ही।
0: और बीच बीच में फिल्म संगीत के चटपटे तरके के बिना कार्यक्रम तो अधूरा है नीलिमा, है ना?
1: बिल्कुल
0: तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का यह शो होने वाला है एकदम शानदार। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म कुछ कुछ होता है से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। आज का दिन कुछ अलग है, कुछ खास है, क्योंकि आज तारीख है 3 जून और दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है विश्व साइकिल दिवस, यानी वर्ल्ड बाईसाइकिल डे।
1: सही कहा नीलिमा आपने, यह दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ और टिकाऊ जीवन शैली को अपनाने का एक संकल्प है। नीलिमा, क्या आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को आधिकारिक रूप से मनाने का निर्णय क्यों लिया था?
0: ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि साइकिल पिछले 200 सालों से मानव इतिहास का अहम हिस्सा रही है। ये न सिर्फ परिवहन का सबसे सरल और सस्ता साधन है, बल्कि समानता और विकास का प्रतीक भी है।
1: बहुत खूब नीलिमा। दोस्तों, आज के इस दौर में जहाँ हर चीज़ स्पीड पर टिकी है, हम अक्सर अपनी फिटनेस को भूल जाते हैं। साइकिल चलाना यानी साइकिलिंग एक ऐसा व्यायाम है जो आपके शरीर के हर अंग को सक्रिय कर देता है। यह आपके हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, पैरों की मांसपेशियों को मजबूती देता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है।
0: रिचा, तनाव कम करने में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। सुबह सुबह ताजी हवा में साइकिल चलाना मानसिक शांति का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसे मेडिटेशन इन मोशन कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
1: क्या बात है नीलिमा, मेडिटेशन इन मोशन बहुत प्यारा शब्द चुना है तो आपने। और पता है दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि साइकिल चलाना सिर्फ बच्चों का खेल है, लेकिन बड़े बड़े एथलीट और फिटनेस एक्सपर्ट आज साइकिलिंग को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना रहे हैं।
0: बिल्कुल रिचा, अगर हम सिर्फ अपनी दैनिक छोटी मोटी दूरियों को साइकिल से पूरा करने की आदत डाल लें

0: तो सोचिए कि कितना ईंधन बचेगा और कितना प्रदूषण भी कम होगा। आज के समय में जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, तो साइकिल चलाना एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी भी है।
1: वाकई हमारे शहर पटना की गलियों में एक वक्त था जब साइकिलों का तांता लगता था। हमें उस साइकिल कल्चर को वापस लाने की ज़रूरत है। यह सिर्फ पैसे बचाने का साधन नहीं है नीलिमा, यह एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट है।
0: दोस्तों, तो आज के हमारे इस विशेष सेगमेंट में हम अपनी आप सभी से एक वादा चाहते हैं। अपनी उस पुरानी साइकिल को जंग से आज़ाद करें, चाहे वो आप अपने कॉलेज जाने के लिए इस्तेमाल करें या सिर्फ शाम को पार्क में घूमने के लिए, लेकिन आज के दिन पैडल ज़रूर मारें।
1: और हाँ, यदि आप आज साइकिलिंग करते हैं तो हमें अपना अनुभव जरूर बताएं। क्या आप अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर पाएं? क्या आपको आज साइकिल चलाकर वो बचपन वाली खुशी मिली? हमारे ईमेल पे हमें जरूर बताएं। हमारा पता है feedback@patna.gmail.com।
0: तो ऋचा, क्या आज हम भी साइकिल पर सवार होकर अपने अगले गाने की तरफ बढ़ें?
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, सीट बेल्ट नहीं हेलमेट पहनिए, पैडल मारिए और आगे बढ़िए। आप सुन रहे हैं युववाणी, जहां हर धुन में है एक प्रेरणा।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना तो चलो फिल्म बॉर्डर मूवी से रूप कुमार राठौर की आवाज़ में। दोस्तों, आज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के साथ साथ है ग्लोबल रनिंग डे। आज पूरी दुनिया में ग्लोबल रनिंग डे मनाया जा रहा है। ये दिन फिटनेस, अनुशासन और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की भावना का जश्न है।
1: नीलिमा, मुझे लगता है कि दौड़ना यानी रनिंग इंसानी फितरत का हिस्सा है। हम जब छोटे होते हैं तो सबसे पहले चलना और फिर दौड़ना ही सीखते हैं। यह हमारे शरीर के सबसे स्वाभाविक और बेहतरीन वर्कआउट है।
0: सच कहा आपने ऋचा। और सबसे अच्छी बात यह है कि रनिंग के लिए किसी फैंसी जिम में मेंबरशिप या महंगे साजो सामान की

0: नहीं होती। बस एक जोड़ी अच्छे जूते पहनिए, अपने घर से बाहर निकलिए और सड़क या पार्क में दौड़ना शुरू कर दीजिए।
1: बिल्कुल, और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि रनिंग सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती के लिए भी कमाल की है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारा दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करता है, जिसे हम फील गुड हार्मोन कहते हैं। यह तनाव को कम करता है, एंग्जाइटी को भी दूर भगाता है और हमें एक नई स्पष्टता यानी मेंटल क्लैरिटी देता है।
0: और ऋचा, आप जानती हैं रनिंग की सबसे खूबसूरत पहलू क्या है? इसकी कम्युनिटी के साथ जुड़ा होना। आज दुनिया भर में रनर्स क्लब और मैराथन ग्रुप्स बन रहे हैं। जब हम दूसरों को दौड़ते हुए देखते हैं तो एक अघोषित प्रेरणा मिलती है कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं।
1: एकदम सही कहा नीलिमा आपने। दोस्तों, आज हम अपने युवा श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि आज के इस ग्लोबल रनिंग डे पर अपनी बोरियत को बाहर छोड़ें। चाहे आप एक अनुभवी धावक हो या बस आज जो शुरुआत करने वाले हो, आज का दिन एक प्रॉमिस करने का है।
0: बिल्कुल, आज कम से कम 20 मिनट के लिए बाहर निकले, तेज चलें, जॉगिंग करें और जी भर कर दौड़ें। अपने शरीर को यह महसूस कराएं कि वो कितना फिट और ताकतवर है।
1: और दोस्तों, दौड़ते समय अपने आसपास के नज़रों को देखें, ताज़ी हवा को महसूस करें और अपनी सांसों की लय को संगीत के साथ मिलाएं। दौड़ना सिर्फ एक खेल नहीं, यह खुद को खुद से मिलाने का मौका है। क्यों नीलिमा?
0: बिल्कुल, तो क्या आप तैयार हैं अपनी फिटनेस यात्रा को आज एक नई गति देने के लिए? हम तो तैयार हैं।
1: बिल्कुल, हम भी तैयार हैं। तो चलिए इसी दौर की रफ्तार को बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं आज के हमारे शानदार गानों की तरफ।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म सरफरोश से जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत।
1: दोस्तों आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज है संत कबीर दास जयंती। कबीर साहब जिनका नाम लेते ही मन में एक निडरता और सच्चाई का भाव आ जाता है।
0: बिल्कुल नीलिमा। और दोस्तों संत कबीर दास जी केवल एक संत नहीं थे, वे एक सामाजिक सुधारक थे, एक महान कवि थे और एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने सदियों पहले समाज को आईना दिखाया था। उनके दोहे आज भी हमारी युवा पीढ़ी के लिए जीवन का मैनुअल है।
1: ऋचा मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि कैसे उन्होंने इतने कम शब्दों में जीवन का इतना बड़ा दर्शन समझा दिया। जैसे उनका वो दोहा है ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुए। क्या गजब की बात कही है उन्होंने। आज के दौर में जहाँ डिग्री और किताबी ज्ञान की होड़ मची है, कबीर हमें याद दिलाते हैं कि मानवीय संवेदना और प्रेम ही सबसे बड़ा ज्ञान है।
0: क्या बात कही आपने नीलिमा। कबीर जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे निर्भीक थे। उन्होंने समाज में फैले पाखंड, अंधविश्वास और जाति पाति के भेदभाव को बहुत ही करारी चोट पहुंचाई। उन्होंने कभी किसी धर्म या पंथ की बंदिशें नहीं मानी। उनके लिए ईश्वर हर उस इंसान के भीतर था जो सच्चे दिल से काम करता था।
1: और ऋचा उनका साधु होने का मतलब झोला लेकर घूमना नहीं था। वे एक गृहस्थ थे, वे जुलाहे का काम करते थे और उसी काम को उन्होंने पूजा माना। आज के युवाओं के लिए ये सबसे बड़ा संदेश है कि आपका काम चाहे जो भी हो, उसमें ईमानदारी और सच्चाई ही सबसे बड़ी भक्ति है।
0: बिल्कुल नीलिमा। आजकल हम अपनी कमियों को छिपाने के लिए बाहरी दिखावे का सहारा लेते हैं। कबीर जी ने सदियों पहले हमें आत्मचिंतन का रास्ता दिखाया था। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। यह दोहा हमें अहंकार से दूर रहने और अपनी गलतियों को सुधारने की प्रेरणा देता है।
1: और पता है ऋचा, आज के सोशल मीडिया के दौर में जहाँ हम इमेज बनाने में व्यस्त हैं, कबीर जी का सरल और सहज रहने का मंत्र एक थेरेपी की तरह है। कबीर कहते थे कि सादगी में ही असली सुंदरता है।
0: आज के इस खास दिन पर हमारे युवा साथियों के लिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है। कबीर जी की सिर्फ एक किताबों में ना पढ़ें, उनके विचारों को अपने जीवन के किसी एक पहलू में जरूर लागू करें। आज के दिन थोड़ा समय निकालें और उनके किसी एक दोहे पर

0: गहराई से विचार करें।
1: जी हाँ, आइए हम सब मिलकर कबीर जी के विचारों का उत्सव मनाएं। हम न सिर्फ उनके दोहे सुनेंगे बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने का संकल्प भी लेंगे।
0: तो चलिए इसे आध्यात्मिक और सकारात्मक सोच के साथ अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए युववाणी के साथ।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म केदारनाथ से अमित त्रिवेदी की आवाज में ये गीत। दोस्तों, आज है बुधवार और हर बुधवार की तरह आज हमारे स्पेशल सेगमेंट में है घूमता माइक्रोफोन में आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में रीचा जी से नीलिमा की बातचीत। रीचा जी म्यूजिक शिक्षिका हैं और आकाशवाणी सासाराम में अनाउंसर भी रह चुकी हैं। तो दोस्तों, चलिए आइए सुनते हैं ऋचा जी को।
1: बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, आपका हमारे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की सेलिब्रेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: धन्यवाद।
1: ऋचा जी, आकाशवाणी ने अपना सुनहरा 90 वर्ष का सफर पूरा किया है। इस सफर में आकाशवाणी ने कई उतार चढ़ाव देखे होंगे, लेकिन आकाशवाणी अपने लिसनर्स के लिए तटस्थ खड़ी रही। सिंस आप आकाशवाणी की कंटिन्यूअस लिसनर रही हैं, तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आप आकाशवाणी से कब से जुड़ी हुई हैं।
2: जी नीलिमा जी, पहले तो आपको भी 90 वर्ष आकाशवाणी के पूरे होने की बहुत बहुत बधाइयां।
1: जी शुक्रिया।
2: दरअसल मेरा आकाशवाणी से जुड़ाव आज से नहीं, बचपन से ही रहा है। उस समय हमारे घर में मनोरंजन और जानकारी का जो एकमात्र साधन होता था था। हर सुबह समाचार और फिर मधुर संगीत दिन भर बजते रहते थे। ऐसा लगता था कि पूरा घर ही संगीत में बना हुआ है। और धीरे धीरे आकाशवाणी हमारे परिवार का हिस्सा बन गया। फिर तो क्या था, त्योहारों पर विशेष कार्यक्रम होते थे आकाशवाणी के, तो हम लोग उसको सुन करके खूब झूमते थे, खूब मस्ती करते थे। सब कुछ आकाशवाणी से ही पता चलता था नीलिमा जी। बचपन में जब माँ रसोई में काम करती थी तो विविध भारती से एक प्रोग्राम आता था, वीणा का गीतमाला। इसको सुनते हुए मैं बड़ी हुई हूँ और माँ तो गुनगुनाती ही थी, साथ ही मैं भी थोड़ा सा गुनगुना ही हूँ। यही से आकाशवाणी से मेरा स्नेह शुरू हुआ। महसूस किया कि आकाशवाणी सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि देश की आवाज है जो हर वर्ग, हर उम्र और हर क्षेत्र को जोड़ती है। नीलिमा जी, आज भी जब मैं रेडियो ऑन करती हूँ ना,
1: यही तो हमारी आकाशवाणी की खासियत है कि ये हर किसी को अपना दोस्त बना लेता है। ऋचा जी, जैसा कि आपने कहा कि आप आकाशवाणी से बचपन से जुड़ी हुई हैं, तो आकाशवाणी की कौन सी खासियत आपको खुद से इतने सालों तक जोड़ के रखी है?
2: मुझे लगता है कि आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता जो है ना, विश्वसनीयता और आत्मीयता बनाए रखना है। आज जब डिजिटल मीडिया में बहुत सारी आवाजें, तभी आकाशवाणी की आवाज सबसे अच्छी और स्थिर लगती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये क्रेडिबिलिटी तो बहुत बड़ी चीज है और हमारी आकाशवाणी इसी के लिए फेमस है। ऋचा जी, आकाशवाणी ने 9 दशक अपने लिसनर्स को एंटरटेन किया है, ऐसे में आपके लिए आकाशवाणी के मोस्ट एंटरटेनिंग शोज आपके हिसाब से कौन कौन से रहे हैं?
2: जी, मुझे लगता है कि आकाशवाणी की सबसे बड़ी जो विशेषता है ना, वो इसकी विश्वसनीयता और आत्मीयता बनाए रखना है। आज जब डिजिटल मीडिया में बहुत सारी आवाजें हैं, फिर भी आकाशवाणी की जो आवाज है ना, वो सबसे सच्ची और स्थिर लगती है। यहाँ खबरों में शुद्धता है, संगीत में आत्मा है और कार्यक्रमों में भारतीय संस्कृति की झलक है। नीलिमा जी, आकाशवाणी ने कभी भी केवल मनोरंजन नहीं किया, ने समाज को शिक्षित किया है, साथ में प्रेरित भी किया है। आकाशवाणी के माध्यम से जो कृषि के प्रोग्राम आते थे, कृषि वाले, साथ में स्वास्थ्य के प्रोग्राम, विज्ञान से संबंधित जानकारियां, महिलाओं के जो प्रोग्राम्स होते थे, बच्चों के, खास करके युवाओं, इनके लिए भी जितने भी प्रोग्राम होते थे ना, वो उनके जीवन को एक नजर

0: जो उनके जीवन का जो नजरिया है ना उसको बदल देते थे। याद है युवाणी कार्यक्रम में मैंने कुछ दिन काम किया है आकाशवाणी सासाराम से, तो उस दौरान मुझे युवाणी कार्यक्रम करने का मौका मिला था। तो उसमें युवाओं के प्रति जो रोजगार से संबंधित जानकारियां होती थी या उनके आगे बढ़ने के लिए जो जिस तरीके से प्रेरित करने वाली चीजें होती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। और सबसे अच्छी बात ये है आकाशवाणी की, इसने हमेशा संतुलन बनाए रखा है, ना तो बहुत अधिक आधुनिक होकर अपनी जड़ों को छोड़ी है और ना ही इतना पारंपरिक बना है कि नई पीढ़ियां दूर हो जाए। यही कारण है रीमा जी की मैं आज भी इसके साथ जुड़ी हुई है।
1: जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा ऋचा जी। ऋचा जी, आकाशवाणी ने 9 दशक के लिसनर्स को एंटरटेन किया है, ऐसे में आपके लिए आकाशवाणी के मोस्ट एंटरटेनिंग शोज आपके हिसाब से कौन कौन से रहे हैं?
0: रीमा जी, सच पूछिए तो आकाशवाणी की जो यात्रा है ना बड़ी गौरवशाली रही है और इसने देश की हर धड़कन को महसूस किया है। वैसे तो मेरे लिए आकाशवाणी के बहुत सारे कार्यक्रम है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, जैसे बाल मंडली की कार्यक्रम होते थे, हवा महल, संगीत सरिता, मन की बात, भारत की बात, ये सारे जो भी कार्यक्रम होते थे ना, तो मेरे लिए बहुत ही सुनहरा पल था जो कि मैं उसमें सुनती थी, उसको सुनते हुए मैं बड़ी हुई। बचपन में जो कल्पना शक्ति बढ़ाने की जो चीजें होती थी वो बाल भारती के कार्यक्रम से होती थी, संगीत सरिता ने संगीत का स्वाद दिया है और समाचार बुलेटिन ने तो देश दुनिया को जोड़ रखा। विशेष रूप से हवा महल का कार्यक्रम नीलिमा जी बहुत प्रिय रहा है क्योंकि उसमें जीवन की छोटी छोटी कहानियां और बड़ी खूबसूरती से सुनाई जाती थी, इतना अब भी सुनाई जाती है। इसके साथ आपको मैं बताऊं आकाशवाणी की विशेष प्रसारण जैसे कभी स्वतंत्रता दिवस पर भी होते थे, गणतंत्र दिवस पे, दिवाली, होली, ये सब जो विशेष कार्यक्रम होते थे ना आज भी मेरे दिल में बसे हुए हैं। हर कार्यक्रम में आवाज के पीछे एक सच्चाई और भावना होती थी, मेरे दिल को छू जाती थी। रीमा जी, सच पूछे तो आज भी मैं जब अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ ना तो मुझे लगता है जैसे वो समय काश फिर से लौट आता।
1: जी जी बिल्कुल, और हम ये पूरी कोशिश करते भी हैं ऋचा जी के अपने लिसनर्स से और लिसनर्स से जितनी भी यादें जुड़ी हैं हम उन यादों को वापस से तरोताजा कर सके। ऋचा जी, आकाशवाणी से जुड़ी कुछ खट्टी मीठी यादें जो आप हमारे लिसनर से साझा करना चाहें।
0: देखिए, ये तो बहुत ही दिल छूने वाला प्रश्न आपने पूछ लिया। आकाशवाणी में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस जो हमारे दिल में बसी हुई हैं।
1: जी जी,
0: आपको मैं बताऊं, साल 2010 की बात है, हमारे शहर में बहुत भारी वर्षा हो रही थी।
1: जी जी,
0: और उस समय सारे संचार के जो साधन थे ना वो बंद हो गए थे, ना फोन चल रहा था ना टीवी, तब केवल आकाशवाणी ही एकमात्र माध्यम था ना जिससे हमें शहर की स्थिति, साथ में मदद केंद्रों की जानकारी और राहत की खबरें मिला करती थी। तब मैंने पहली बार समझा कि आकाशवाणी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि एक विश्वसनीय साथी भी है।
1: जी।
0: और एक मैं और आपको एक अपने खास यादगार के बारे में आपसे बताना चाहती हूँ।
1: जी जी जरूर।
0: तो मैंने पहली बार जब आकाशवाणी में कदम रखा
1: जी,
0: तो मुझे वहाँ के केंद्र अधीक्षक थे शमीम फारूखी सर, उन्हें जैसे ही पता चला कि मैं संगीत से जुड़ी हुई हूँ तो उन्होंने मुझे एक कविता लिखने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि आपकी ये पहली प्रसारण होगी आकाशवाणी सासाराम के केंद्र से। तो मैंने वो अपनी पहली आवाज जो रेडियो पर सुनी थी ना वो मेरे दिल के करीब है और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने अपनी आवाज पहली बार आकाशवाणी सासाराम के माध्यम से सुना।
1: जी जी,
0: ऐसा लगा जैसे मेरी पहचान की शुरुआत यहीं से हुई है।
1: जी जी बिल्कुल, जहाँ वो आवाज कुछ एक लोग सुन रहे थे वहीं वो आवाज अब भारत के हर कोने में गूंज रही थी, तो जाहिर सी बात है आपको खुशी होगी ही।
0: जी जी, बहुत बहुत ज्यादा। और साथ में ही उसके बाद कुछ चिट्ठी पत्रियों की भी कार्यक्रम शुरू हुए तो उसके माध्यम से पता चला कि हमारे कार्यक्रम सुनने वाले बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग हैं और शहरी क्षेत्र के भी लोग हैं।
1: जी जी। ऋचा जी, आकाशवाणी के भविष्य में बेहतरी के लिए कुछ सुझाव जो

0: आप देना चाहें तो प्लीज शेयर।
1: रीमा जी, वैसे तो आकाशवाणी ने हमेशा समय के साथ खुद को बदला है, लेकिन अब इसे डिजिटल युग में और सशक्त बनाना होगा। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एप्स के माध्यम से आकाशवाणी के सभी चैनल्स आसानी से उपलब्ध हो जाए तो और अच्छा है। युवा वर्ग के लिए अधिक इंटरैक्टिव कार्यक्रम बनाए जाए, जैसे पॉडकास्ट, प्रेरणादायक चर्चाएं और प्रतिभा प्रदर्शन वाले मंच वाले जो कार्यक्रम होते हैं वो
0: जी।
1: और नीलिमा जी, स्थानीय भाषाओं और लोक संगीत को अधिक स्थान दिया जाए ताकि भारत की जो विविधता है वो बनी रहे, और श्रोता सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रतियोगिताएं और लाइव प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करें तो और भी बेहतर होगा। और नीलिमा जी, मुझे विश्वास है कि अगर आकाशवाणी इन दिशा निर्देशों पर काम करे तो ये आने वाले 100 वर्षों तक भी देश की आवाज बनी रहेगी।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिचा जी आपका हमारे आकाशवाणी के लिए इतने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए। रिचा जी, जैसा कि आप एक म्यूजिक टीचर हैं, तो हमारे श्रोताओं को आप अपने पसंदीदा गाना सुनवाते जाए प्लीज।
1: नीलिमा जी, वैसे तो बहुत सारे गाने हैं, पर मुझे गाइड मूवी की एक गीत है, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना, अगर हो सके तो आप उसे जरूर बजाएं।
0: जी जी बिल्कुल, शुक्रिया ऋचा जी आपका। तो आइए सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: दोस्तों अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, जो है कि रोचक तथ्य के बारे में हम आपको बताएंगे। आज से 534 वर्ष पहले 3 जून 1492 को जर्मन भूगोलविद मार्टिन बेहम ने दुनिया के सामने पहला ग्लोब पेश किया था। ये भूगोल का नक्शा नहीं था बल्कि खोज के नए युग की शुरुआत थी।
4: और नीलिमा मार्टिन बेहम ने इस आविष्कार को एयर डेप फेल नाम दिया था, जिसका अर्थ है धरती का सेब।
3: यह धरोहर जर्मनी के जर्मनिस चेस नेशनल म्यूजियम में रखी है।
4: ग्लोब को खराब होने से बचाने के लिए विशेष कमरे में तापमान नियंत्रित करके रखा गया है।
3: यह ग्लोब उस वर्ष बना था जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी समुद्री यात्रा शुरू की थी।
4: इसमें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप मौजूद ही नहीं है, क्योंकि तब तक उनकी खोज नहीं हुई थी।
3: इस ग्लोब में यूरोप और एशिया महाद्वीप को विशाल महासागर के जरिए जुड़ा हुआ दिखाया गया।
4: नक्शे को कागज पर हाथ से पेंट किया गया था, उसे चिपकाया गया था।
3: मार्टिन ने पुर्तगाली जहाजों पर सालों तक समुद्री यात्राएं की थी, जिसका अनुभव इसमें दिखा गया। अब बारी है हमारे सॉन्ग की, तो दोस्तों आइए एंजॉय करते हैं हमारा अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट यानी स्पोर्ट्स अपडेट की। महज 11 वर्षीय भारतीय रेसलर अतिका मीर ने विश्व मोटर स्पोर्ट मंच पर फिर भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने चैंपियंस ऑफ द फ्यूचर अकादमी प्रोग्राम के दूसरे दौर में क्वालिफाइंग हिट रेस और फाइनल्स में जीत दर्ज कर।
1: दोस्तों, इसी के साथ अब हो चला है वक्त आपसे विदा लेने का। तो जहां न पहुंचे पानी, वहां पहुंचे वाणी। इसी संदेश के साथ लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: युववाणी, अभी आप युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है खेलकूद गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम खेल परिक्रमा।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है साप्ताहिक खेल जगत के कार्यक्रम खेल परिक्रमा में। हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हूँ खेल जगत की ढेर सारी जानकारियों के साथ। सबसे पहले बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी को बहुत सारी बधाई देना चाहेंगे पूरे बिहार वासियों की ओर से, जिन्होंने अपने खेल, अपने हुनर, अपनी प्रतिभा से पूरे देश का सर ऊंचा किया है और खास तौर से बिहार का मान बढ़ाया है। हाल ही में वैभव को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो इसके लिए भी वैभव सूर्यवंशी को बधाई। और अपने पहले सेगमेंट खेल गतिविधियां में जान लेते हैं बीते सप्ताह हुए खेलों के बारे में, साथ ही साथ आगे और कौन कौन से खेल होने वाले हैं उसकी भी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया ओपन की। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में पहुंच गईं, लेकिन किदांबी श्रीकांत और लक्ष्य सेन बाहर हो गए हैं। इनके अलावा पुरुष युगल में हरिहरन और एमआर अर्जुन की जोड़ी भी दूसरे दौर में पहुंच गई है। सिंधु ने सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में थाईलैंड की बुसान ओंग बांग रुंगफान को 25-23, 21-16 से हराया। गैर वरीय सिंधु का सामना अब ओलंपिक चैंपियन और विश्व की नंबर एक खिलाड़ी आन से यंग से हो सकता है, जिन्होंने उन्हें पिछले सप्ताह सिंगापुर ओपन के क्वार्टर फाइनल में हराया था। श्रीकांत पुरुष एकल के पहले दौर में जापान के युशी तानाका से 19-21, 15-21 से हार गए। लेते हैं जानकारी फ्रेंच ओपन की। 19 साल की उम्र में मीरा एंद्रीवा दूसरी बार फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल हो गई हैं। रूस की एंद्रीवा ने सोराना क्रिस्टी को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त देकर 3 साल में दूसरी बार लाल बजरी पर अंतिम चार का टिकट हासिल किया है। पुरुष एकल में अलेक्जेंडर जेवरेव ने भी राफेल जोडर को हराकर अंतिम चार में जगह बनाई है। अब उनका सामना यूक्रेन की मार्ता कोत्सुक से होगा, जिन्होंने उलटफेर करते हुए 7वीं वरीय हमवतन एलिना स्वेतलिना को हराया। 8वीं वरीयता प्राप्त रूसी खिलाड़ी ने कोर्ट फिलिप चैट्रियर पर 1 घंटे से भी कम समय में 36 वर्षीय अनुभवी खिलाड़ी रोमानिया की सोराना को लगातार सेट में 6-0, 6-3 से शिकस्त दी। 18वीं वरीय सोराना साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम में 2019 के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। और अब जानते हैं निशानेबाजी के बारे में। भारतीय निशानेबाज सुरुचि इंदर सिंह ने ISSF विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक और ईशा सिंह ने इस स्पर्धा का रजत पदक जीता। इसके साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। सुरुचि ने 242.1 का स्कोर बनाकर पिछले साल ओलंपिक शूटिंग रेंज में जीते गए स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव किया, जबकि उनकी सीनियर साथी ईशा ने 241.2 का स्कोर करके रजत पदक हासिल किया। कोरियाई निशानेबाज चू गेउन ने कांस्य पदक जीता। साल के दूसरे SSIF विश्व कप चरण में भारत के 2 स्वर्ण और 1 रजत है। और अब शतरंज का हाल। विश्व नंबर 1 मैग्नसन कार्लसन ने 9वें शतरंज टूर्नामेंट में शानदार वापसी करते हुए विश्व चैंपियन डी गुकेश को करारी शिकस्त दी। इससे गुकेश अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं आर प्रज्ञानंदा ने विसेंट कीमर को आर्मगेडोन टाई ब्रेक में हराकर दूसरा स्थान बरकरार रखा है। 7 बार के नॉर्वे शतरंज चैंपियन कार्लस जी से 4थे स्थान पर पहुंचे। पटना जिला ताइक्वांडो संघ की ओर से 2 दिवसीय 6ठा बिहार स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का समापन हुआ। इसमें विभिन्न जिलों की टीम में 250 बच्चे भाग लिए। ओवरऑल पटना की टीम विजेता और शेखपुरा की टीम उप विजेता रही। पटना साहिब के विधायक रत्नेश कुशवाहा ने विजेता खिलाड़ियों को पदक एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। और अब जानते हैं फुटबॉल के बारे में। नेमार पिंडली की चोट के कारण 13 जून को मोरक्को के खिलाफ ब्राजील का पहला फीफा विश्व कप मैच नहीं खेल पाएंगे। ब्राजीलियन फुटबॉल परिसंघ ने बताया कि टेरोसोपोलिस स्थित ट्रेनिंग कैंप में हुए MRI स्कैन में उनकी पिंडली की मांसपेशियों में ग्रैंड 2 खिंचाव पाया गया है। टीम डॉक्टर रोड्रिगो लास्मार के अनुसार नेमार को ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। नेमार ने आखिरी बार अक्टूबर 2023

में ब्राजील के लिए मैच खेला था। और अब बात करते हैं कार रेसिंग की। महज 11 वर्षीय भारतीय रेसर अतिका मीर ने विश्व मोटर स्पोर्ट्स मंच पर फिर भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने चैंपियंस ऑफ द फ्यूचर अकादमी प्रोग्राम के दूसरे दौर में क्वालिफाइंग हिट रेस और फाइनल में जीत दर्ज कर करियर की सबसे प्रभावशाली सफलता हासिल की। अतिका ने OKNJ 12 से 14 आयु वर्ग के बीच की जो श्रेणी है, पहले ही सत्र में अनुभवी पुरुष ड्राइवरों को पछाड़

0: भारत के अभय सिंह और वीर चोटरानी पुरुष वर्ग के दूसरे दौर के मैचों में विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल खिलाड़ियों के सामने कड़ी चुनौती पेश करने में नाकाम रहे। वह अपने मैच हारकर ब्रिटिश ओपन स्क्वैश से बाहर हो गए। विश्व में 24वें नंबर के खिलाड़ी अभय मिस्र के विश्व में 8वें नंबर के खिलाड़ी मोहम्मद जकारिया से 9-11, 4-11, 11-7, 10-12 से हारे। एक अन्य मैच में चोटरानी को जोएल मैकिन ने 12-10, 11-9, 11-3 से हराया। और अब कुछ स्थानीय खेल खबरें। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 28 मई से चल रही 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में सोनपुर के भरपूरा निवासी रितेश रंजन ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ी को बड़े अंतर से पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रितेश के इस प्रदर्शन के साथ ही भारत ने गोल्ड मेडल से अभियान का आगाज किया। भारतीय टीम के मुख्य कोच शिहान ई राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि रितेश ने टूर्नामेंट में अनुकरणीय प्रदर्शन और हर मुकाबले में कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया। वहीं रोहतास के पीयूष राज एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी बने। चीन में आयोजित 22वीं जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 4x400 मीटर रिले रेस में रिकॉर्ड के साथ कांस्य पदक जीता। भारतीय 4x400 गुने रिले टीम में पीयूष राज सहित शायद सबीर, अंजीत कुमार व मोहम्मद अशफाक शामिल थे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरण ने बताया कि पीयूष पदक जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी हैं। बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर कर खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण 8 से 20 जून तक समर कैंप आयोजित कर रही है। कैंप कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के डीजी रविंद्रन शंकरण ने बताया कि इसमें 7 से 14 वर्ष के बच्चे बच्चियां हिस्सा ले सकेंगे। इस समर कैंप के दौरान बच्चों को खेलों की बुनियादी जानकारी देना और उनके भीतर फिटनेस और खेल के प्रति रुचि विकसित करना मुख्य उद्देश्य है। कैंप में बच्चों को बेसिक एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। फुटबॉल और बास्केटबॉल की बेसिक ट्रेनिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स की जानकारी, मार्शल आर्ट की तकनीक भी सिखाई जाएगी। बच्चों को खेल से संबंधित क्विज में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। पहला सत्र सुबह 6 से 8 बजे तक और दूसरा शाम 6:30 से 8 बजे तक चलेगा। तो श्रोताओं, ये थी खेल गतिविधियां के अंतर्गत खेलों की जानकारियां। और अब सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कराटे खिलाड़ी देव प्रकाश को। इनसे बात कर रहे हैं दूरभाष के माध्यम से संजय किशोर।
1: आज हमारे बीच फोन लाइन पर उपलब्ध हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कराटे खिलाड़ी देव प्रकाश। देव प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम जानना चाहेंगे कि आपकी कराटे की रुचि और आपकी उपलब्धि के बारे में आप हमारे श्रोता को खुद ही जानकारी दें।
2: तो स्टार्टिंग में मेरे मम्मी पापा ने मुझे इसमें डाला था। जब मैं क्लास 2nd या 3rd में था, जब मैं 7 साल का था, तब से मुझे स्कूल में सिखाने के लिए मम्मी पापा ने भेजा था और तब से लेके अभी तक खेल रहा हूँ।
1: क्या बात है, बचपन से ही आपने इस खेल में अपनी रुचि दिखाई और आपके पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी वजह से आज आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। तो आपकी उपलब्धियां और खेल में जो आपने समय बिताया, इस बारे में थोड़ी जानकारी हमें दें।
2: तो मैंने इंटरनेशनल खेला था, पिछले साल खेला था दुबई में, फुजेरा में, जिसमें जहां पे हुआ था उसमें मेरा 11th रैंक रहा था। और ऐसे नेशनल्स में मेरा 3 गोल्ड है और 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। एंड स्टेट में मेरा 7 गोल्ड है, मतलब 7 टाइम्स से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ स्टेट में।
1: जी, बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं आपके नाम, गोल्ड और सिल्वर मेडल्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपने हासिल किए हैं, बहुत अच्छी बात है। और अब जो है, इतने मेडल्स लाने के बाद आज आपकी गतिविधियां अगर हम जानना चाहें तो किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं आपकी? कुछ और तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे और भी जो टूर्नामेंट्स होते हैं, चैंपियनशिप होते हैं, उसके लिए, या फिर और कुछ?
2: जी, अभी तो यूनिवर्सिटी गेम्स का तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि स्कूल गेम्स था तो मैं, मतलब पहले तो स्कूल लेवल पे स्कूल गेम्स होता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी गेम्स होता है। तो मैं स्कूल गेम्स में 2 साल से अभी गोल्ड मार रहा हूँ। अब यूनिवर्सिटी गेम्स पे मतलब मेरा गोल्ड का तैयारी अभी चल रहा है। और बाहर ऐसे ओलंपिक्स में जो 2032 में कराटे जुड़ने वाला है, तो उसके लिए भी मैं उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ।
1: जी, अपने सही आपने बता दिया। और अगला सवाल मेरा यही होने वाला था।

0: जो 2032 में कराटे को भी ओलंपिक्स में शामिल किया जाने वाला है, इस संबंध में आपकी क्या तैयारियां हैं या फिर आप क्या सोचते हैं? तो ये सवाल था मेरा, और अगर आप कुछ इस बारे में बताना चाहें तो जरूर बताएं।
1: अभी तो 2032 के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये फेडरेशन का थोड़ा मामला थोड़ा फंस रहा है, लाइक दो फेडरेशन एक एक हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण दिक्कत हो रहा है। तो 2032 तक उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ सही हो जाए, जिससे बच्चों लोग का सभी का कैरियर भी बन जाए।
0: क्योंकि अभी लंबा समय है, उसके पहले भी एक ओलंपिक आयोजित होने वाला है, उसके बाद फिर 32 होगा, तो इस बीच तो संभावना है कि चीजें सुलझ जाएंगी। और अगर इस संबंध में अगर हमारे बच्चों की तैयारी अगर अच्छी होगी तो मेरा ख्याल है हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आप बताएं कि अब आपके अपने खेल के अलावा दूसरे जो आपसे जूनियर खिलाड़ी हैं या जो बच्चे हैं जो प्रशिक्षण अभी ले रहे हैं, उनके बारे में कुछ अगर अच्छी बात है आपके जहन में या कोई संभावनाएं दिख रही हैं बिहार स्तर पर तो कुछ बताएं।
1: बस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ये खेल बहुत अच्छा है सर, लड़की लोग के लिए भी बहुत अच्छा है, लाइक सेल्फ डिफेंस एंड एक्सेट्रा। और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा, बॉडी में चेंजेस आएंगे, बहुत कुछ होगा, और इसमें लेवल अप भी होगा। स्टेट से नेशनल जाएंगे, नेशनल से इंटरनेशनल जाएंगे, और एक ऐसा भी टाइम आएगा लाइक ओलंपिक्स में भी रहेगा अगर आके, जिसमें मतलब अच्छे जो खेलते हैं उनको चांसेस मिलेंगे, तो उसको बड़ा कुछ लेके चलना चाहिए, ताकि मतलब कुछ ना हो तो कम से कम इंटरनेशनल तक तो रहेंगे।
0: कि कोई तैयारियां ऐसी चल रही हैं कि अपने राज्य में जिनकी जानकारी आप दे सके हमारे श्रोता को?
1: दूसरे स्पोर्ट्स में हो रहा है, लाइक जो भी नेशनल्स खेलने जाते हैं तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये कैंप लगता है उनका।
0: जी चलिए, भविष्य को लेकर हम बहुत आशान्वित हैं कि हमारे बिहार के खिलाड़ी जैसे दूसरे खेलों में आ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, उसी प्रकार कराटे में भी आएंगे और अच्छा करेंगे। अभी बहुत समय भी है, तो ऐसे खिलाड़ी जो भविष्य में आने वाले हैं उसके लिए कोई संदेश अगर आप छोड़ना चाहें तो बताएं।
1: सर संदेश बस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और गुरु की बात मानना चाहिए, जो भी अच्छे टीचर्स के गाइडेंस में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मतलब एक होता है कि अब कराटे को भी एक मार्केट जैसा बना दिया, तो उसके गाइडेंस में ना जाके एक अच्छे कोच के गाइडेंस में जाना चाहिए, ताकि वह उसे और ऊपर तक लेकर जाए।
0: बहुत अच्छा आपने ये संदेश दिया, इससे सजगता रहेगी आने वाले खिलाड़ियों के बीच में कि आप बाजार को ध्यान में रखकर अपना प्रशिक्षण लें और ऐसी जगह जाएं जहां पर बाजारवाद से आप प्रभावित ना हो, बल्कि आप सही में सीखें और अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करके आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमसे बातचीत की, और आने वाले समय में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।
0: ये थे कराटे के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देव प्रकाश। देव प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आज रोचक तथ्य में हम जानेंगे क्रिकेट से जुड़ी 10 रोचक बातें।
3: क्रिकेट के खेल में आंकड़े हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, आप भी महसूस करते होंगे। बल्लेबाज के रनआउट होने से लेकर बैटिंग पोजीशन तक सब कुछ आंकड़ों का खेल होता है। इन्हीं आंकड़ों से कुछ दिलचस्प फैक्ट भी बनते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं क्रिकेट के कुछ मजेदार तथ्य। सर डॉन ब्रैडमैन ने पूरे करियर में केवल 6 छक्के ही लगाए, हालांकि इससे उनके स्ट्राइक रेट पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन ब्रैडमैन अपने समय के सबसे बड़े हिटरों में से एक रहे हैं। क्रिस गेल एकमात्र वैसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की पहली गेंद पर ही छक्का मारा। जबरदस्त। इंग्लैंड के क्रिकेटर एलेक स्टीवर्ट का जन्म 8 अप्रैल 1963 को हुआ और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 8,463 रन बनाए, यह अपनी तरह का एक संयोग ही है। एक बहुत ही मजेदार तथ्य है 11-11-11 का दिनांक 11-11-11 को 11:11 पर साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 111 रन चाहिए थे, और ये जबरदस्त संयोग था। और एक संयोग देखिए, एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाए जाने का आंकड़ा 36 का नहीं बल्कि यह 77 का है। ऐसा न्यूजीलैंड के एक घरेलू मैच में हुआ था। आइडिया यह था कि बैट्समैन को ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का मौका दिया जाए ताकि वह अपने आखिरी 2 विकेट गंवा सके। गेंदबाज ने भी ऐसा ही किया और 77 रन लुटाए, हालांकि मैच का नतीजा ड्रॉ ही रहा। एक और तथ्य देखिए, क्रिस मार्टिन और बीसी चंद्रशेखर ने अपने करियर में टेस्ट रन से ज्यादा विकेट लिए हैं। मार्टिन ने 71 मैचों में 123 रन बनाए और 238 विकेट लिए, जबकि बीसी चंद्रशेखर ने 58 मैचों में 167 रन ही बनाए और 242 विकेट हासिल किए। है ना गजब। वनडे क्रिकेट मैच में लगातार 4 मैचों में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी गजब है।

0: और ये है भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के नाम। इंजमाम उल हक को लोग भले ही उनके भारी शरीर और रन आउट होने के लिए जानते हों, लेकिन इंजमाम गेंदबाजी भी करते थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में इंजमाम को उनकी पहली गेंद पर विकेट मिला था। और एक जबरदस्त संयोग देखिए, निर्धारित बैटिंग पोजीशन की बात करें तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि लॉन्स क्लूजनर, अब्दुल रजाक, शोएब मलिक और हसन तिलकरत्ने ने वनडे क्रिकेट में सभी 10 पोजीशंस पर बल्लेबाजी की हैं। 1992 में सचिन तेंदुलकर टीवी रिप्ले के जरिए थर्ड एम्पायर के हाथों आउट करार दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज बने। फील्डर साउथ अफ्रीका के जॉन्टी रोड्स थे। अगले दिन उसी टेस्ट मैच में जॉन्टी रोड्स ठीक उसी तरह सचिन के हाथों रन आउट होकर बाहर हो गए, यानी जैसे को तैसा।
1: क्रिकेट से जुड़ी 10 रोचक जानकारियों के बाद सुनते हैं ब्राजीलियाई पैरालंपिक तैराक गैब्रियल अराउजो के बारे में चंद्रमणि भारती से।
2: फोकोमेलिया नामक जन्मजात विकार से पीड़ित ब्राजील के 24 वर्षीय गैब्रियल अराउजो को दिव्यांग वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। इसमें व्यक्ति के हाथ पैर सीधे धड़ से जुड़े प्रतीत होते हैं, जो समुद्री जीव सील के फ्लिपर्स यानी पंख जैसे दिखाई देते हैं। यह गंभीर समस्या गर्भावस्था के दौरान गलत दवा लेने से होती है। सिर्फ 4 फुट लंबे फ्री स्टाइल तैराक अराउजो इस दुर्लभ बीमारी के कारण परंपरागत तरीके से तैराकी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इस कमी को तराश के खुद को काबिल बनाया। बिना हाथों के ही छोटे छोटे पैरों से पानी को चीरते हुए उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया। हाल यह हो गया कि पानी में उनकी रफ्तार के कारण उनका नाम रॉकेट मैन पड़ गया। ब्राजील में सांता लुजिया में रहने वाले अराउजो ने 13 साल की उम्र में पहली बार 2020 के पैरालंपिक में हिस्सा लिया और सबको चौंकाते हुए 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीतकर धाक जमा दी। अराउजो ने उसके बाद 22 साल की उम्र में पेरिस पैरालंपिक 2024 में भी जलवा बिखेरा। उन्होंने SM2 श्रेणी में एक ही दिन में 2 बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और 3 स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाल लिए। उसके बाद 2025 के विश्व पैरा तैराकी चैंपियनशिप में उन्होंने A2 श्रेणी की 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाने के बाद SM2 श्रेणी में 150 मीटर व्यक्तिगत मेडले स्पर्धा में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपने सिर्फ 6 साल के कैरियर के दौरान वह अब तक पैरालंपिक, विश्व चैंपियनशिप और पैन अमेरिकी खेलों में 19 स्वर्ण पदक के साथ 1 रजत पदक भी जीत चुके हैं। वो अब तक 2 पैरालंपिक में हिस्सा लेकर 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीत चुके हैं। इसके अलावा वे 3 विश्व चैंपियनशिप में 9 स्वर्ण पदक भी हासिल कर चुके हैं। और इस प्रकार अराउजो ने जन्मजात बीमारी को अपनी ताकत बना लिया।
1: चहल पहल में जानते हैं बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के बारे में। बिहार के युवा क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी का जादू अब क्रिकेट के मैदान से निकलकर WWE की दुनिया तक पहुंच गया है। महज 15 साल की उम्र में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पहचान बना चुके वैभव को लेकर दुनिया भर में चर्चा है और अब WWE सुपरस्टार ड्यू मैकिंटायर भी उनके प्रशंसकों की सूची में शामिल हैं। कुछ दिन पहले मैकिंटायर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसने क्रिकेट और रेसलिंग दोनों फैंस का ध्यान खींच लिया। वीडियो में मैकिंटायर जिम में वर्कआउट करते दिख रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने वह जर्सी पहन रखी थी जिस पर वैभव सूर्यवंशी का नाम लिखा था। बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव ने 15 वर्ष की आयु में कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिनमें ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब शामिल है। सूर्यवंशी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और क्रीज पर निडर रवैये से क्रिकेट जगत में तेजी से तहलका मचा दिया है। सूर्यवंशी ने पूरे सीजन में 237 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए। हाल ही में उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और अंत में खेल प्रश्नोत्तरी, जिसमें हर बार हम आपसे पूछते हैं 2 सवाल और बताते हैं पिछले अंक में पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब। तो बिना समय गवाए फटाफट हम आपको पिछले अंक में पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब बता देते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ यूथ चेस चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 18 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है, अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ यूथ चेस चैंपियनशिप में बिहार के रियान मोहम्मद ने अंडर 18 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और हमारा दूसरा प्रश्न था, अभी हाल ही में भारत के सबसे

सबसे तेज एथलीट होने का गौरव किस खिलाड़ी ने हासिल किया है? भारत के सबसे तेज एथलीट होने का गौरव मिला है 100 मीटर दौड़ के नेशनल रिकॉर्ड धारी गुरिंदर वीर सिंह को। इन दोनों सवालों के सही जवाब हमारे पास जिन श्रोताओं ने भेजे आप हैं आदित्य, आपने पता नहीं लिखा है, अभिषेक कुमार कदम कुआं पटना से हैं, खुशबू कुमारी हैं मुसल्लापुर हाट पटना से। तो बिना देर किए अब आज के दो सवाल पूछने जा रही हूँ, ध्यान से सुने। पहला प्रश्न, इटालियन ओपन 2026 महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? और दूसरा प्रश्न है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 कब से शुरू होकर कब तक चलेगा और कहाँ खेला जाएगा? दोनों सवाल एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। पहला प्रश्न, इटालियन ओपन 2026 महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? और दूसरा प्रश्न, महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 कब से शुरू होकर कब तक चलेगा और कहाँ खेला जाएगा? इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब देने के लिए आपके पास पूरे एक सप्ताह का समय है, यानी अगले मंगलवार की शाम तक। तो आप फटाफट अपने जवाब चाहे तो पत्राचार के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि आपको हमारा पता मालूम है, हमारा ईमेल आईडी भी मालूम है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, नोट कर लें। पत्राचार का पता, कार्यक्रम खेल परिक्रमा, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी पटना 800001। हमारा ईमेल पता है kp.airpatna@gmail.com। और श्रोताओं, चलने से पहले आपकी फरमाइश पर पेश है ये गीत।

0: तो इसी के साथ हमारा आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विभूति शंकर के साथ मुझे यानी अल्पी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: परिक्रमा।

खेल परिक्रमा। अभी आप ये खेलकूद गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:05 पर भोजपुरी बुलेटिन प्रसारित होंगे। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत। तो ये थी आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में भोजपुरी बुलेटिन प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, ई आकाशवाणी पटना है। अब रउआ रजिया सुल्ताना से भोजपुरी में समाचार सुनी। केंद्र सरकार बिहार में एनएच 31 और एनएच 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड के फोर लेन में अपग्रेड करे के मंजूरी दे दिहले बाड़न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में भइल कैबिनेट के बैठक में ए प्रस्ताव के मंजूरी दिहल गइल। बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव बतौलन कि एही योजना के तहत 143 किलोमीटर लंबा सड़क के अपग्रेडेशन कइल जाय। ए पर 3,936 करोड़ रूपया के लागत आई। उ कहले कि प्रोजेक्ट के हिस्सा के रूप में पूर्णिया शहर में ग्रीन फील्ड बाईपास के निर्माण कइल जाय। ग्रामीण विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एगो कार्यक्रम में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान कैले। देश भर के 42 गो बढ़िया पंचायतन के ग्रामीण विकास, सुशासन, जन भागीदारी, स्वच्छता, डिजिटल सेवा और सतत विकास के लक्ष्यन के प्रभावी क्रियान्वयन के खातिर 2 गो श्रेणी में ई पुरस्कार दिहल गइल बा। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से रोहतास जिला के तेलकक पंचायत के पुरस्कृत कइल गइल।

0: श्रेणी में पंचायत के दूसरा स्थान प्राप्त भइल बा। मुखिया अनीता टोप्पो पुरस्कार ग्रहण कैले बालिन। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहले बाड़न कि चौथा चरण के शिक्षा बहाली परीक्षा TRE4 खातिर जुलाई महीना में विज्ञापन जारी क दिहल जाई। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में श्री तिवारी बतौलन कि अब हर साल जुलाई महीना में ही विज्ञापन जारी कैल जाई। अगला 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकन के बहाली कैल जाई। श्री तिवारी कहले कि राज्य के मदरसा और संस्कृत विद्यालयन के जमीनी जांच कैल जाई। उ कहले कि जवन विद्यालय में तय मानक के हिसाब से पढ़ाई लिखाई के व्यवस्था ना मिली ओकरा के बंद क दिहल जाई। शिक्षा मंत्री कहले कि शिक्षा विभाग शिक्षक विद्यार्थी और आम लोगन के समस्या के समाधान खातिर सिंगल विंडो सिस्टम के शुरुआत कैल गइल बा। राज्य और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल कहलन कि राज्य के 13 जिला में आयोजित होखे वाला श्रावणी मेला के खातिर 2,25,00,000 रुपया के राशि आवंटित कैल गइल बा। उ कहले कि ई राशि मेला क्षेत्रन में बुनियादी सुविधा के मजबूत और श्रद्धालु सबके सुविधा के खातिर खर्चा कैल जाई। श्री जायसवाल कहले कि राज्य सरकार श्रद्धालुअन के बेहतर सुविधा देवे के खातिर एकदम संकल्पित बा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE बतौलन कि करीब 40,000 छात्र सब सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के खातिर आवेदन जमा कैले बाड़े। ई प्रक्रिया बिना कोनो समस्या के पूरा कैल गइल बा। बोर्ड काल 12वीं कक्षा के छात्रन खातिर उत्तर पुस्तिका के त्रुटि के सत्यापन और उत्तर के पुनर्मूल्यांकन के खातिर ऑनलाइन पोर्टल खुलले रहे। ई सुविधा खाली ओइसने छात्रन खातिर उपलब्ध रहे जवन आपन जांचल गइल उत्तर पुस्तिका के स्कैन कैल कॉपी के प्राप्त कैले बाड़े। मधुबनी जिला के बिस्फी थाना क्षेत्र के किरवार गांव में पानी से भरल एगो गड्ढा में डूबे से एक ही परिवार के 5 लइकन के मौत हो गई बा। मृतकन में सगा और चचेरा भाई बहिन शामिल बाड़न। हमार संवाददाता बतौलन कि माटी कोड़े खातिर JCB से खोदल गईल रहे गड्ढा उहे गड्ढा में नहाए के दौरान ई हादसा भइल ह। सभे लइकन के लाश बरामद क लिहल गइल बा। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के टूटल हिस्सा पर बनल बेली ब्रिज पर गाड़ी चलावे के ट्रायल कैल गई। जांच के दौरान 2.5 टन वजन वाला 4 चक्का गाड़ी के 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला के पुल के मजबूती से परखल गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गाड़ियन के परिचालन पूरा तरह से सफल रहा। सिवान जिला के बड़हरिया थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में एगो युवक के पीट पीट के मुआ देवे के मामला में पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा पुलिस अवर निरीक्षक संजीव कुमार झा के तुरंते प्रभाव से सस्पेंड क देले बाड़न। उन्हें 2 होमगार्ड के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके कार्रवाई भी शुरू क दिहल गइल बा। पूरा प्रदेश एकदम उमसा कड़ाके के गर्मी के चपेट में बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक कई जगहन पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार क गइल बा। पिछला 24 घंटा के दौरान 41.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बिहार के भभुआ सबसे गर्म जगह बनल रहे। एकरे साथे ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं सनम रे फिल्म का ये प्यारा संगीत अरिजीत सिंह के स्वर में, जिसके संगीतकार और गीतकार हैं मिथुन।

अरिजीत सिंह के स्वर में आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत पल पल दिल के पास फिल्म से, सिद्धार्थ गरिमा के बोल और सचेत परंपरा के स्वर।

0: अरिजीत सिंह के स्वर में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: इयं आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु ETF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः 1,000 कोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं कतिपयाः महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। कर्णाटक राज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्री DK शिवकुमारः शपथग्रहणं कृतवान्। पश्चिम बंगालस्य तृणमूल कांग्रेस दलात् निष्कासितः TMC विधायक ऋतव्रत बनर्जी इत्यनेन उक्तं यत् पक्षे प्रायः 60 विधायकाः सन्ति। दिल्ली नगरस्य मालवीय नगरे विश्रांति निलये भीषणाग्निकाण्डः 21 जनाः मृताः। अपि च भारतं 25,000-2,000 वर्षे विश्वस्य द्वितीयं बृहत्तमं सौर विकास विपणकं जातम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु कतिपयाः महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकटकारणेन

0: वर्धितेषु इन्धनमूल्येषु भारतीयविमानसेवानां कृते विमान इन्धनस्य अर्थात् ETF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैलविपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटिरूप्यकाणां आयव्ययसहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः सप्तसप्तति लक्ष आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। एषा सहायता योजना षट्त्रिंशत् मास पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। मंत्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ति क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थम् अपि एकस्याः बृहत्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। आर्थिक सम्बद्धया मंत्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादीप पर्यन्तं 360 अधिक 100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमति प्रदत्ता। एतद् अतिरिक्तं समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31 अधिक 200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मूः अद्य राष्ट्रिय आदिवासी सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवती। नवदिल्ल्याम् आयोजितायाम् एकीकृत जनजातीय विकास समवायानां तथा एकीकृत जनजातीय विकासायोगस्य च विस्तार विषयिकायां समायोजितायां सभायां राष्ट्रपतिः अवदत् यत् देशव्यापिनः जनजातीय समाजस्य संस्कृतिः अत्यन्ता समृद्धा अस्ति, अतः जनजातीय समुदायस्य उन्नत्यर्थाः विशेष प्रयत्नाः करणीयाः। तया उक्तं यत् विकास कार्याणि अन्तिम गृहं यावत् अन्तिम ग्रामं यावत् च अवश्यं प्राप्नुयुः। राष्ट्रपतिः चिन्ताम् अपि व्यक्तीकृतवती यत् अद्यापि केचन जनजातीय वर्गाः शासनस्य विविधाभिः योजनाभिः अनभिज्ञाः सन्ति।
1: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटी जी सबसे पिछड़े अभी भी और कोई पेड़ के मंच के रहते रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व तो है।
0: राष्ट्रपति ही सर्वासाम संस्थानाम हितधारकान आहूतवती यत् जनजातीय युवभ्यः सम्मान जनक जीविकायाः तथा प्रत्येकं जनजातीय बालकाय विद्यालय शिक्षायाः सुनिश्चितीकरणं क्रियताम्।
1: ये दूरदराज के लोग जो जंगलों में रहते हैं उन तो एक रोड मैप बनाना चाहिए। आप कौन सी गांव को कवर किया, कौन सी पॉपुलेशन के थे, ट्राइबल के कितने लोग हैं, कहाँ तक हम पहुंच पाए, कहाँ तक नहीं पाए। पढ़ा लिखा होते हुए भी बहुत लोग बहुत चीजें जानते हैं लेकिन वो खुलते नहीं, लेकिन उनको खुलना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, आदिवासी लोगों को आगे लाने के लिए तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा।
0: कर्णाटकस्य नूतन मुख्यमंत्री डीके शिवकुमारः शपथ ग्रहणं कृतवान्। कर्णाटक राज्ये कांग्रेस विधानमण्डलस्य दलस्य नेता डीके शिवकुमारः अद्य बेंगलुरु नगरे राज्यस्य 25वां मुख्यमंत्री रूपेण शपथग्रहणं कृतवान्। राज्यपालः थावरचन्द गहलोतः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं प्रदापितवान्। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर जी परमेश्वरः उपमुख्यमंत्री पदेन शपथं गृहीतवान्। अन्ये च द्वादश मन्त्रिणः अपि मन्त्रिपरिषदि सम्मिलिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्रिणे शुभकामनाः प्रदत्तवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन ए आई आर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिम बंगालस्य पूर्व सत्तारूढ़ दले तृणमूल कांग्रेस दले आंतरिक मतभेदाः प्रतीताः। दलात् निष्कासितः टीएमसी विधायकः ऋतव्रत बनर्जी इत्यनेन उक्तं यत् तस्य पक्षे प्रायः 60 विधायकाः सन्ति। अस्य कथनस्य कारणेन राज्य विधानसभायां सत्ता संतुलन परिवर्तनस्य संभावनां प्रति चर्चाः तीव्राः जाताः। तस्य समूहेन विधानसभायाः अध्यक्षाय रतेन्द्र बोस महोदयाय पत्रं प्रेषितं यत् स्वदलस्य वास्तविक तृणमूल कांग्रेस इति नाम्ना मान्यतां दातुम् आग्रहः कृतः।

0: प्रणाम उदय भाई।
1: प्रणाम दिव्या
0: हाँ
1: बहन
0: हाँ कथिन का समाचार है?
1: सब
0: ठीक
1: बढ़िया, सब
0: है?
1: बढ़िया दिव्या बहन,
0: हाँ
1: सब अच्छा बा,
0: हाँ
1: सब चलता।
0: आ देखती ना, हम जब आ रही नरैया में तो इतना हमरा अपन मतलब कि लड़काई के दिन याद आ गए कि जब हमने सब स्कूल जा हलिए उस समय तो भाई सब लोग सब लड़की सब साइकिल न चलाव हलथिन, मगर वह समय भाई हमारा साइकिल मिलल हल, ये हमारा खुश नसीबी हल। तो जा हली तो सब देखल कि अरे वाह, ये लड़की होके साइकिल चलावित है। बहुत आदमी तो ओकरा कमेंट भी करल।

0: कि भाई लड़कियों के चला भी थे, कितना आदमी प्रोत्साहित भी कर रहा थी, है ना। तो आज
1: देखिए
0: देख ली लड़की सब के भाई साइकिल से जा रहा है, तो हमारा वो समय याद आ गए।
1: देखिए साइकिल तो हमने के यहाँ बहुत बाद में आई,
0: हाँ
1: और हमने के यहाँ 1940 के आसपास 42 वगैरह में साइकिल हमने के देश में साइकिल का रूप में आई।
0: हाँ हाँ
1: लेकिन ओकरा पहले जो साइकिल के यात्रा भाई लंबा बा,
0: हाँ
1: और ये लंबा यात्रा में सबसे पहले 1817 में जर्मनी में बनल दू चक्का के ए तरह के दू गो जे चक्का रहे,
0: हाँ
1: और वहाँ से जे या साइकिल के यात्रा शुरू भेल, वो धीरे धीरे ओमे पैडिल लागल। आ स्कॉटलैंड के एगो रले आदमी किर्क
0: हाँ
1: पैट्रिक, वो 1839 में वहाँ का जे बा वो पैंडिल लगा के आ ओकरा के चलावे शुरू कैनी,
0: अरे वाह,
1: और धीरे धीरे धीरे धीरे पैडल से बढ़े लागल, और साइकिल के यात्रा जो नाज हमनी के साइकिल देख रहल बनी ओकर
0: हाँ
1: यात्रा जे बा वो मूर्त रूप में आ गई, साइकिल चले लागल पैडल के सहारे।
0: अरे अपने के
1: आ उतना ई के रउआ जब ओकरा के चलौनी
0: हाँ
1: तो समझी कि वह यात्रा के ई यात मैंने वो यात्रा जारी रहल, वो यात्रा यहाँ ले पहुँचल। आज वो लगातार जे बा पहुँच रहल बा, और ई दिवस हमनी यही से मनाई ले
0: हाँ
1: कि ई यात्रा जे साइकिल के बा वो लगातार क्रमवार चलत रहे।
0: हाँ देखते ना, ये मतलब कि हर साल 3 जून के सौंसे दुनिया भर में ये
1: हाँ
0: मनावल जा है। संयुक्त राष्ट्र 2018 में एकर शुरुआत केलन ई दिन के, तो हमनी के याद दिलाव है कि एगो साधारण सा दुपहिया मशीन कैसे हमनी के स्वास्थ्य और पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के भी बदल सका है। तो साल 2026 के थीम है एक हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। ये थीम पर्यावरण के बचावे में साइकिल के भूमिका पर जोर दे है। और साइकिल दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक वाहन है। ये अमीर गरीब शहर गांव हर जगह समान रूप से उपयोगी है। तो एगो बात पूछल जा रही है कि भाई अपने खाली चरचकबे से न घुमात, साइकिलियो चलावत है कि न,
1: ना, इबत सही बात
0: कम
1: कि
0: से कम।
1: साइकिल अभी भी, और ई प्राय
0: हाँ
1: हर युवा के जीवन में, जे हमनी के मध्य वर्ग से जे युवा बा चाहे
0: हाँ हाँ
1: ओकरा जीवन में ओकरा आरंभिक काल में साइकिले भेटाला, और
0: हाँ
1: वो साइकिल जे बा वो धीरे धीरे वो साइकिल के यात्रा से लोग आगे के यात्रा अपन शुरू करेला।
0: अब देखते
1: तो
0: ना कितना लोग तो मतलब एकरा अपना सुबह के सैर शाम के सैर लगी भी, क्या कि स्वास्थ्य से भी जुड़ल है ना
1: निश्चित,
0: एकरा से।
1: और सबसे ई होला कि एक तरुआ जे हृदय रोगी बरे
0: हाँ
1: यदि वहाँ का लगातार साइकिल चलावते नहीं,
0: हाँ हाँ
1: तो वह साइकिल चलावला से वहाँ के स्वास्थ्य पर और बढ़िया प्रभाव पड़ेला।
0: अच्छा
1: दूसर चीज कि यदि वह साइकिल लगातार चला रहल बनी तो ओकरा से शारीरिक श्रम होला, और उस श्रम जे बा वो हमनी के स्वास्थ्य खातिर जरूरी बा।
0: एकदम देखती घुटना के दर्द रहे, चाहे जेकरा सांस के बीमारी रहे, अस्थमा रहे, ब्रोंकाइटिस रहा है, वो सब के बहुते फायदा करा है। और हमने के भाई पर्यावरण लगी तो बहुत नीमन है
1: निश्चित निश्चित। एक बार
0: सबसे।
1: हमरा याद होला
0: हाँ
1: दिव्या बहन कि हम एक देखते नहीं एक रिपोर्ट
0: हाँ हाँ
1: जे पंजाब के प्रमुख सूखी गायक
0: हाँ
1: बडाली बंधु प्यारे
0: अच्छा
1: लाल बडाली और उनका जो भाई बने, तो वहाँ से भी एक साक्षात्कार में हम देख रही वहाँ कई कहनी कि हम अमृतसर के सड़क पर
0: हाँ
1: साइकिल एह से चलाएं कि जे भी शहर के लोग बा
0: हाँ
1: ऊ जे बा ओकरा से भेंट हो जाए। यदि हम गाड़ी में बैठती या हम कोनो दुपहिया
0: हाँ भाई
1: वाहन जे तेज
0: फुरफुरा के
1: रफ्तार
0: ओकरा से चल
1: दुपहिया
0: जाए
1: वाहन
0: है
1: से
0: कि
1: निकलती
0: ना,
1: ओ तरह से हमारा लोग से भेंट ना हुई।
0: ना होता।
1: तो कहे के मतलब ये कि साइकिल ओह रूप में हमनी खातिर उपयोगी बा कि कम लागत के और कम श्रम के भी आवश्यकता जे बा से
0: हाँ
1: बा,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन ओह रूप में कि समाज में रुआ जुड़े खातिर जेकरा के हमनी का सोशलाइज भइल कहिले ओकरा खातिर भी एह तरह के उपयोगी साधन बा। वहाँ का कहने कि हम अमृतसर में कोना से ओह कोना जे साइकिल से घूम जाइले,
0: हाँ
1: तो एकरा से जे बा हमरा सब लोग के साथ अपना समित संबंध के नवीकृत करे में बड़ा मौका मिल जाला।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: ये सब आवश्यक बा कि बहुत बार जैसे हमनी का तेज निकल गई नहीं, अब सामने के आ रहल बा आदमी ओकरा से ना मिल
0: ना
1: पावे,
0: मिला है। हाँ
1: अच्छा चाहे बहुत बार आदमी कहीं बंद बा गाड़ी में जा रहा बा।

0: लोग सामने अगल बगल से भी गुजर गए। तो
1: हाँ
0: साइकिल पर्यावरण की उपयोगिता बढ़ ले, बस समाज के जोड़े में भी साइकिल के योगदान जी
1: हाँ ये है।
0: बहुत।
1: अब देखते ना स्कूल में जो मतलब बिहार सरकार के तरफ से देल गेलै है साइकिल, ओकरा चलते लड़की सबके उपस्थिति भी बढ़ल है ना। देखो कितना बढ़िया लगे देखे में भाई, कि दूगो तीनगो चारगो लड़की सब मिल के एकदम स्कूल जाए थथिन तो बहुत बढ़िया लगे है,
0: और सबसे
1: मनोबल
0: जैसे
1: बढ़ल है।
0: हाँ, वो साइकिल चलौला से
1: हाँ
0: ज्यादा आत्मबल, कहे कि होला कहे कि

0: और सबसे
1: मनोबल बढ़ल
0: जैसे
1: है।
0: हाँ, वो साइकिल चलौला से
1: हाँ
0: ज्यादा आत्मबल। कहे कि होला कहे कि आदमी जब बहुत दिन से कोनो चीज से नहीं जुड़त,
1: हाँ
0: अब लड़की हमनी के समाज में घर में रह गई, ओकरा ओ तरह से पठन पाठन ना भेल
1: हाँ
0: और ओ तरह से ओकर विकास ना भेल, तो मानसिक दुर्बलता थोड़ा सा
1: अब
0: रहेला।
1: कोई भी
0: और
1: चीज
0: एक जे बात जरा के संकोच कहल जाला, वो संकोच रहेला। लेकिन जब वो साइकिल के पैंडल चलावे और ओकरा साथे वो 4 गो लड़की मिल
1: हाँ
0: के
1: जे
0: चलो,
1: ओकरा में मजा लगे है
0: तो
1: ना
0: ओकर ओकर आत्मबल बढ़े।
1: तुलना नहीं ओकरा कर जा
0: और
1: सकले
0: एक
1: है।
0: चीज कहल जाला कि यदि मजबूत आत्मबल होके तो
1: हाँ
0: कोनो काम रुआ कर सकीले, कुछ भी कर सकीले, जीवन के जो संघर्ष बा वो
1: ओकरा
0: संघर्ष
1: झेल
0: यात्रा के
1: सकिए
0: बहुत बढ़िया से पूरा कर सकीले।
1: एकदम।
0: ऐसे ये साइकिल जे बा वो विविध रूप में हमनी के
1: स्वास्थ्य
0: योगदान।
1: लगी
0: हाँ,
1: पर्यावरण
0: और
1: लगी है कि ना।
0: 18 में एक ये सब जितना एकर यात्रा बा, एकर जे योगदान बा समाज
1: हाँ
0: के प्रति, जे साइकिल के उपयोगिता बा, ये सब के देखत संयुक्त
1: और
0: राष्ट्र के
1: पहले तो लोग
0: महासभा
1: एकरे
0: में
1: पर हाँ ढेर काम करवाथिन।
0: 2018 में हमनी का एक रहे
1: हाँ
0: कि आज के 3 जून के
1: 3 जून के
0: हाँ साइकिल दिवस के रूप में घोषित कैनी, और पूरा देश में एक रहे के मनावल जला है रूप में कि कम लागत में एगो सुलभ
1: तो
0: सवारी बा
1: देखथिन फिर से
0: एक
1: कोशिश भाई सबके करे के चाही कि
0: रहे।
1: जिनकर भाई पास में कार्यालय है
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ
1: कहीं
0: हाँ
1: लेकिन सबके स्कूल जाए लगी है, तो
0: निश्चित
1: भाई अब साइकिले से आथिन जाथिन, एकरा से पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होते और हमनी के स्वास्थ्य भी बनल रहते है ना।
0: बहुत ये बहुत ही उपयोगी बा ए रूप में। हम तो एक आध बार देखले बनी कि अब नाम लेवल वहाँ के उचित नहीं है,
1: हाँ
0: पटना उच्च न्यायालय के एक अब अवकाश प्राप्त हो गई बनी न्यायाधीश,
1: हाँ
0: वहाँ का जो सामान्य वहाँ के काम काज रहे वहाँ
1: हाँ
0: का साइकिल से करी, बस कोटता है गाड़ी से।
1: हाँ
0: लेकिन जैसे मानो लोग बनू कि तरकारियों ले आवे के बाद नहने जाए के बाद होने जाए के बाद ओहू में जब वो निकल जाए कुछ हो
1: हाँ
0: बड़का बड़का
1: एकदम
0: गाड़ी
1: चार
0: लेके
1: चक्के न तो
0: रोड।
1: दू चक्के चाहिए।
0: लेकिन वहाँ का साइकिल से निकली और ये एक प्रेरणा भी बा कि यदि हमने का छोट छोट काम खातिर एकरा के उपयोग मिले हैं
1: हाँ
0: तो स्वास्थ्य खातिर भी उपयोगी बा, और हमने के लागत जे अभी जे हमने का जो ना संकट से जूझ रहल बनी
1: हाँ
0: कि आज पूरा दुनिया में, चूंकि हमने का बहुत बड़ पैमाना पर पेट्रोलियम पदार्थ
1: नहीं
0: जे
1: सब
0: वहाँ में
1: महंगा हो
0: उपयोग
1: गए
0: होला
1: है।
0: करे ओकर आयात करी ले,
1: हाँ हाँ
0: तो वो सब संकट से मुक्ति के उपाय बा कि हमने का यह दिशा में जरूर सोची और एकरा के वैकल्पिक वाहन के रूप में उपयोग जरूर ले आए।
1: एकदम।
0: तो
1: अब आगे का विचार है भाई,
0: आगे
1: बढ़िया
0: हमने का
1: बढ़िया
0: एगो
1: बात होएल
0: भजन
1: तो कुछ।
0: सुने के
1: हाँ प्रभु नंदन शर्मा निराला से।
0: हाँ सुने के
2: इस कार्यक्रम के

0: दिव्या बहन,
1: हाँ
0: रघुनंदन शर्मा निराला जी रनी है,
1: हाँ
0: ये गीत सुनाओ रनी है।
1: हम बहुत बढ़िया लगल आ जाना भैया, ये गीतवा सुन के हमरा अपना गांव के याद आ गले कि गीतवा बजे थले ओहे समय एगो भोज होल बहल अटगामा,
0: अच्छा
1: तो ओ में का करी थलथिन कि भाई अठगामा में ते बहुत भीड़ रहे, तो ओकरा में ड्रोन से सब नजर रखल जा हले कि भाई कहाँ का खिलावी था कहाँ ना खिलावी था, आ वहीं से सब रिकॉर्डिंग उकॉर्डिंग होवी थले। ये चीज बा फिर देखली भाई स्कूल में भी, तो ड्रोन के
0: बहुत
1: बहुते
0: बहुत
1: उपयोग हो
0: उपयोगी
1: रहा
0: हो
1: है
0: गया
1: ना।
0: ड्रोन के उपयोग अब बहुत सारा यह तरह के गतिविधि में भी,
1: हाँ
0: और बहुत विधि
1: बहुत तरह
0: व्यवस्था,
1: के हाँ
0: विधि व्यवस्था नियंत्रण नहीं सब चीज में अब हो रहा बा। तो आज यही से संबंधित हमनी के कार्यक्रम में एक वार्ता बा,
1: अच्छा से का
0: ड्रोन तकनीक और इसके लाभ। वार्ताकार बने डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा,
1: अच्छा तो
0: सुने
1: सुना
0: के लिए
1: जाए।
0: वार्ता।
1: हाँ
2: ड्रोन जनता में एक लोकप्रिय नाम है, विशेषकर युवाओं में ड्रोन को लेकर आकर्षण है। मानव रहित हवाई वाहन जिसे पृथ्वी से ऑपरेटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, या हवाई जहाज उड़ाने के जैसा आनंद देता है। ड्रोन के पीछे की तकनीक सामान्य मोटर और प्रोपेलर के अलावा विभिन्न सेंसर पर आधारित है। ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए विमान को जोर देने के लिए प्रोपेलर का उपयोग किया जाता है। प्रोपेलर की मदद के लिए मोटर दबाव बनाती है। चूंकि ड्रोन का संचालक दूर से नियंत्रण करता है, इसलिए सेंसर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूरी सेंसर, उड़ान का समय सेंसर, स्थिरीकरण, ओरिएंटेशन सेंसर आदि ड्रोन को उड़ान भरने के लिए अच्छे नियंत्रण में रखने में मदद करते हैं। लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए ड्रोन का एक और महत्वपूर्ण पहलू बैटरी है। शोर या प्रदूषण न फैलाने वाले ड्रोन वर्तमान समय के लिए बेहद उपयुक्त हैं, क्योंकि आज की सबसे बड़ी चुनौती प्रदूषकों को खत्म करना है। ड्रोन बैटरी से चलने वाली मूक उड़ान वाली वस्तुएं हैं जो प्रकृति के अनुकूल हैं। आज मैं एक व्यावसायिक परियोजना के रूप में ड्रोन की उपयोगिता के बारे में बात करूंगा। इससे हमारे युवा भाइयों को ड्रोन के सेवा आधारित

व्यवसाय शुरू करने का मन बनाने में मदद मिलेगी। हमारे किसान मित्रों के लिए मैं कृषि क्षेत्र में ड्रोन के प्रयोग से होने वाले लाभ के बारे में बात करूंगा। मैं ड्रोन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ड्रोन के अन्य महत्वपूर्ण उपयोगिता पर भी बात करूंगा। बाजार में विभिन्न उपयोग के लिए 5 प्रकार के ड्रोन उपलब्ध हैं। एक है 200 ग्राम से कम वजन वाले नैनो ड्रोन, दूसरे हैं माइक्रो ड्रोन जो 200 ग्राम से 2 किलोग्राम तक के होते हैं, छोटे ड्रोन 2 किलो से 20 किलो, मीडियम ड्रोन 20 किलो से 150 किलोग्राम वजन वाले, और बड़े ड्रोन इनका वजन 150 किलो से ज़्यादा होता है। ड्रोन को उनकी उड़ान क्षमता के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें मुख्य रूप से मेल हेल, टैक्टिकल, क्लोज और हैंड हेल, इन 5 नामों से जाना जाता है। मेल ड्रोन की ऊंचाई क्षमता 9100 मीटर तक होती है, जबकि इसकी दूरी सीमा 200 किलोमीटर तक होती है। हेल 9100 मीटर से अधिक की ऊंचाई की क्षमता वाला होता है और यह अनिश्चित दूरी को कवरेज कर पाने में सक्षम है। टैक्टिकल ड्रोन 550 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं और इसकी दूरी सीमा 160 किलोमीटर तक होती है। क्लोज ड्रोन 1500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और यह 10 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। हैंड हेल्ड ड्रोन यह 600 मीटर तक की ऊंचाई को तक जा सकता है और इसकी दूरी सीमा 2 किलोमीटर की होती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में ड्रोन कारोबार के लिए भारतीय बाजार 1 अरब रुपये का था। यह 2027 के अंत तक 2.13 अरब रुपये तक पहुंच जाएगा ऐसा अनुमान है। यानी 5 साल में ड्रोन का बाजार 200% से ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाजार के विकास के रुझान बहुत ही आकर्षक हैं और हमारे युवाओं को ड्रोन सेवाओं या निर्माण को अपने उद्यम के रूप में चुनना चाहिए। भारत सरकार ने अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और युवाओं को ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता करने के लिए विशेष उपाय किए हैं। MSME विभाग ने अगस्त 2021 में PIL नाम की एक परियोजना शुरू की है। अगस्त 2021 से फरवरी 2022 तक विशेष सहायता अभियान के तहत MSME ने ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 221 नए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान किया। ये कंपनियां आज बहुत अच्छा काम कर रही हैं और विश्व स्तर पर अपने उत्पाद का मार्केटिंग कर पाने में सक्षम है। ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाली लोकप्रिय भारतीय कंपनियां इन्फो एज लिमिटेड, रतन इंडिया इंटरप्राइजेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अन्य हमारे युवाओं द्वारा संचालित कई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। जोमेटो ने ड्रोन द्वारा भोजन वितरित करने के लिए लखनऊ स्थित स्टार्टअप कंपनी टेक ईगल का अधिग्रहण किया है। इसलिए हमारे युवाओं के लिए ड्रोन के क्षेत्र में नित नए बिजनेस के रास्ते खुल रहे हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, दुनिया उनका इंतजार कर रही है। कृषि क्षेत्र हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। खाद्य उत्पादन बढ़ाने और इनपुट लागत कम करने के लिए ड्रोन का उपयोग महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग विभिन्न उपयोगी उद्देश्यों में किया जा सकता है, जैसे पौधों के स्वास्थ्य की निगरानी, पौधों की वृद्धि, पौधों का निरीक्षण, पानी की आवश्यकता, मिट्टी की जांच, हवा से बीज बोना, फसलों पर छिड़काव कार्य आदि। अच्छे खाद्य उत्पादन के लिए फसल के स्वास्थ्य की निगरानी, जैसे पोषक तत्वों की कमी के कारण उनका रंग बदलना या कीट संक्रमण से फसल की क्षति आदि काफ़ी आवश्यक है। हाई रेजोल्यूशन कैमरे वाले ड्रोन आपके कृषि क्षेत्र की संपूर्ण स्वास्थ्य तस्वीर उपलब्ध कराने में सक्षम है। इसमें लगभग नहीं के बराबर कुछ समय लगता है और लागत भी अधिक नहीं है, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए स्थानीय ड्रोन ऑपरेटर

0: से बहुत कम लागत पर कार्य को कराया जा सकता है। ड्रोन द्वारा फसल की समय पर उचित वृद्धि की निगरानी की जा सकती है और उर्वरक या कीट प्रबंधन कार्रवाई के उपयोग के लिए उचित निर्णय लिया जा सकता है। ड्रोन आपको फसलों की उचित ऊंचाई या घनत्व बता सकता है। बढ़ते पौधों में पानी की आवश्यकता की निगरानी महत्वपूर्ण है। ड्रोन आपको जलवायु के अनुसार आपकी बढ़ती फसलों की पानी की आवश्यकता का डेटा प्रदान कर सकता है। ड्रोन द्वारा खेत के जल संकट वाले भाग को वैज्ञानिक रूप से जाना जा सकता है एवं इसका समाधान किया जा सकता है। ड्रोन की सहायता से पौध पोषक तत्व प्रबंधन का कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। पौध पोषक तत्व प्रबंधन की कमी के कारण खाद्य उत्पादन दर कम हो जाती है। यह हमारे देश में कृषि का एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसकी निगरानी ड्रोन के इस्तेमाल से की जा सकती है और जिला या ब्लॉक स्तर के कृषि विभाग को इस विषय पर काम करना चाहिए। इस कार्य के लिए पंचायत स्तर पर पहल की आवश्यकता है। हवा से सटीक और शीघ्रता से बीज बोने की क्षमता वाले ड्रोन उपलब्ध हैं। इससे कार्यबल लागत भी कम हो सकती है। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए लोगों के रुझान के कारण कृषि में कार्यशील जनशक्ति की कमी कृषि क्षेत्र में संभावित ऑटोमेशन की मांग करती है। कार्यबल की कमी की इस समस्या का समाधान भी ड्रोन है। फसलों को कीट से मुक्त कराने के लिए रसायनों का छिड़काव ड्रोन कम लागत वाला सुरक्षित समाधान है। कभी कभी पौधों की ऊंचाई अधिक होने के कारण रसायन का मैनुअल छिड़काव मुश्किल होता है, इसलिए ड्रोन उस स्थिति का समाधान है। ड्रोन त्रिआयामी फोटो और वीडियो के लिए भी काफ़ी चर्चित है। सोशल मीडिया पर हम आम तौर पर खतरनाक पहाड़ या तेज बाढ़ के पानी की वीडियो देखते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि इसे महंगे हेलीकॉप्टर से शूट किया गया होगा, लेकिन अब ये वीडियोग्राफी ड्रोन से की जा रही है। सामाजिक समारोहों में अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो और वीडियो के लिए ड्रोन का इस्तेमाल आजकल आम होता जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से ऊंचाई पर स्थित बिल्डिंगों का हवाई सर्वेक्षण और आपातकालीन दवाएं आदि भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के उपयोग से कठिन इलाकों का सटीक वैज्ञानिक सर्वेक्षण संभव हो गया है। गूगल हमें दुनिया के किसी भी हिस्से का सही लोकेशन उपलब्ध कराता है। गूगल गो एक बहुत ही लोकप्रिय ऐप है। इसका सटीक डेटा संग्रह ड्रोन के उपयोग से ही संभव हो सका है।
1: बहुत नीमन जानकारी मिलल भाई। हाँ,
2: काफी बढ़िया से यहाँ का बतौनी कि कैसे ड्रोन टेक्निक समाज में हमने के लाभ दे रहा है।
1: हाँ।
2: बहुत धन्यवाद दिया डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा के। और अब एगो और गीत सुने के कलाकार बनी प्रभुनंदन शर्मा निराला,
1: सुनल जाए।

0: विवाह
1: बहुत निमन गीत हले,
0: देवी गीत सुनाओ त्रिणी है,
1: प्रभु नंदन
0: प्रभुनंदन
1: शर्मा
0: शर्मा
1: निराला।
0: निराला के। अच्छा लागल
1: हाँ
0: भक्ति और आराधना के कोनो जे प्रसंग होला या गीत होला ओकरा से जुड़ल तो निश्चित रूप से मन आध्यात्मिक हो जाला और अच्छा लागेला, मन के शांति और सुकून मिलेला।
1: हाँ
0: धन्यवाद दिया फिर से प्रभुनंदन शर्मा निराला के। समय रही तो यहाँ से एकाध गीत और खेती गृहस्थी में सुनल जाये। चौपाल के समय अब संपन्न हो गई बा, थोड़ा देर के बाद खेती गृहस्थी के बातचीत के लिए।
1: भैया, खेती गृहस्थी में सबसे पहले सुनल जाए प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।
0: सुने
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से 7 दिनों के बाद आज बुधवार का दिन है और हम कार्यक्रम में पैरामेडिकल है पारस लेकर आप सबों के घर आंगन में आ चुके हैं बातें करने की। पैरामेडिकल का कोर्स, ANM GNM का कोर्स, ये सारा कोर्स जो है ना आपके जीवन में एक नई गति ला सकता है यदि आपने तरीके से पढ़ाई की। पैरामेडिकल है पारस ये कार्यक्रम लेकर आते आते वर्षों निकल गया, लगातार ये कार्यक्रम जी हाँ चल रहा है और इसका लाभ लोग उठा रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि पटना के जक्कनपुर इलाके में है, जक्कनपुर पुलिस लाइन के ठीक सामने। हाँ, यहाँ आप आकर मिल सकते हैं और ढेर सारी जानकारियां भी ले सकते हैं। कहते हैं ना साथियों कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अगर जो आपने टेक्निकल पढ़ाई की तो आपके लिए रास्ते, हाँ रास्ते बहुत तरीके से खुल जाते हैं। हेल्थ सेक्टर में तो और भी संभावनाएं हैं, आप पढ़ते पढ़ते रोजगार पा सकते हैं, अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं, सरकारी क्षेत्र में जा सकते हैं या फिर निजी क्षेत्र में भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन संस्थान का चुनाव हाँ बहुत सावधानी से करना चाहिए। देखना चाहिए कि कहाँ से संस्थान एफिलिएटेड है, क्लासरूम स्टडी की क्या व्यवस्था है, प्रैक्टिकल की क्या व्यवस्था है।

0: होगा सब कुछ ठोक बजा के एकदम ठठा ठठ ठोक बजा के देखना होगा, फिर दाखिला लेना होगा और जोरदार पढ़ाई करनी होगी। बहरहाल चलिए आज हमारे साथ यहाँ कौन है आपको बताएं, और वो हैं श्रीराज, नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले इन्हीं से इनका परिचय, लेकिन उससे पहले हम नंबर बताना चाहेंगे जिस पर आप फोन करके जानकारियां ले सकते हैं। नंबर दो नंबर बताएंगे, आप नोट कीजिए नंबर, और अगर आपके पास नंबर है तो कोई बात ही नहीं है। पहला नंबर है 9162 41 32 33 9162 41 32 33, और दूसरा नंबर है 9155558888, यानी 9 1 4 5 और 4 8। चलिए मुलाकात करते हैं वाइस प्रिंसिपल साहब से और जानते हैं इनके विषय में पहले फिर सवाल।
1: सर मेरा नाम केशव कुमार डागुरा है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल में लास्ट ईयर से वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पर पोस्टेड हूँ।
0: वाइस प्रिंसिपल साहब, आप दूसरी बार हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कहाँ से शुरुआत करें?
1: और मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूँगा, नर्सिंग में एक अच्छा करियर,
0: नर्सिंग में एक अच्छा करियर है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई केशव जी?
2: जो आज आपको सुन रहे हैं पहली बार नहीं सुन पाए थे उनके लिए पूछ रहा हूँ।
1: मैं सर जीवाजी यूनिवर्सिटी 2013 में पास आउट हूँ वहाँ से, और MSc नर्सिंग मेरा KS कॉलेज ऑफ नर्सिंग MPMSU से क्लियर किया हूँ।
0: बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन ये बताइए कि बिहार आके राजस्थान से कैसा लग रहा है?
1: बिहार आके काफी अच्छा लग रहा है सर, और यहाँ पे नर्सिंग में और पैरामेडिकल क्षेत्र में हम लोग कुछ बेटर करना चाहते हैं, कुछ बेस्ट करना चाहते हैं बच्चों को एजुकेशन के मामले में।
0: अच्छा एक बात बताइए, हाँ आप यहाँ बाहर से आए हैं, हमारे पूरे बिहार के बच्चे ये जानना चाहते हैं कि श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का माहौल कैसा है?
1: श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर एजुकेशनली माहौल एकदम, सारे वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, हाँ लैब्स हमारे यहाँ जितनी भी हैं वो अवेलेबल हैं बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, और मैं यही कहूँगा सभी बच्चों को सबसे अच्छा एनवायरनमेंट हमारे यहाँ है अभी, और सर भी बहुत अच्छे हैं, चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, बच्चे को हर तरह से सपोर्ट मिलता है।
0: अच्छा अब चलते लौटते हैं BSc नर्सिंग कोर्स की तरफ, BSc नर्सिंग के बारे में पूरी जानकारी दीजिए बच्चों।
1: BSc नर्सिंग सर एक 4 ईयर का कोर्स होता है, इसके लिए इंटर में 12th में बायोलॉजी का होना जरूरी होता है। इसमें गवर्नमेंट भी सेंट्रल लेवल पर भी बहुत सारा वैकेंसीज होता है, आर्मी होता है, डिफेंस का जितना भी वैकेंसी होता है, एम्स होता है, ESIC हॉस्पिटल होता है, आजकल CHO 2020 से एक कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट पोस्ट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका दिल्ली से संचालन होता है, बच्चा CHO भी पोस्टेड होता है, एक PSC होता है गाँव में सर जहाँ पे अंडर 5000 पॉपुलेशन होता है, वहाँ पर CHO को पोस्टेड किया जाता है।
0: आपने बड़ा बड़े अच्छे से बताया कि बच्चे कहाँ कहाँ जा सकते हैं BSc नर्सिंग की पढ़ाई करके, और 4 साल का कोर्स है आपने बताया, और जो इंटर में बायोलॉजी के साथ जिसने किया है वो यहाँ आ सकता है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, लेकिन दो बातें हम अपने सुनने वालों से कर लें। कार्यक्रम चल रहा है पैरामेडिकल है पारस, और इस वक्त हमारे साथ केशव कुमार डांगुर साहब बैठे हैं जो श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल हैं, और अभी बातचीत चल रही है BSc नर्सिंग, जैसा कि अभी अभी हमने बताया, और कहां कहां आप प्लेस्ड हो सकते हैं, रोजगार मिल सकता है, यानी एंड ऑफ द डे रोजगार ही चाहिए आपको, है ना, तो वो भी जानकारी दी है। अगर आपको और भी विशेष जानकारी चाहिए तो डॉक्टर NP प्रियदर्शी संस्थान के डायरेक्टर से आप सीधे बात कर सकते हैं, और उनका नंबर है 9162 41 32 33 9162 41 32 33, और दूसरा नंबर है 9155 5 5 8 8 8 8, ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए।

नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अपना बिल्डिंग है जहां क्लासेस चलते हैं, सारी गतिविधियां होती हैं। अपना श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल है जहां प्रैक्टिकल कराई जाती है।

0: टेक्निकल कोर्स है हेल्थ का, इसमें प्रैक्टिकल का कितना बड़ा रोल होता है?
1: मेरा मानना यह है सर, प्रैक्टिकल का इसमें 100% रोल होता है। बच्चा अगर उसको हॉस्पिटल में जाके ऑन पेशेंट करेगा या ऑन डमी करेगा, उसके लिए हमारे यहाँ कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, लैब में डमी पर ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद पेशेंट के पास बच्चे को भेजा जाता है, जिससे टेक्निकली फेस टू फेस बच्चा पेशेंट को हैंडल करेगा, तो इससे ये चीज़ें सीखने को मिलती है सर।
0: कब से प्रैक्टिकल शुरू होता है? हम तो सुने हैं कि श्रीराज में जब बच्चे आते हैं तो एडमिशन हुआ और उनकी व्यवहारिक शिक्षा शुरू हो जाती है।
1: जी सर, ऐसा ही है, लेकिन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सर 3 मंथ्स बच्चे को फर्स्ट एजुकेशन थ्योरी का स्टडी कराया जाता है। PTS एग्जाम होता है, उस एग्जाम के जस्ट बाद उनका आवरली इसमें होता है सर। हम लोग टोटल बच्चे को आवर के अकॉर्डिंग, ईयरली अकेडमिक अकॉर्डिंग भेजा जाता है बच्चे को हॉस्पिटल ड्यूटी में। अप्रोक्स 10 मंथ उसको कंटिन्यू हॉस्पिटल में ही रहना होता है, 6 आवर ड्यूटी।
0: अच्छा, आपका इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल का कैंपस तो एक ही में है?
1: यस सर।
0: तो बच्चों को इसका लाभ तो मिलता होगा?
1: बिल्कुल, बच्चों को लाभ भी मिलता है, बच्चों को नाइट ड्यूटी भी, हम लोग जो भी सीखने का इच्छुक होता है हॉस्पिटल में उसको अलग से भी सर का सपोर्ट होता है, चेयरमैन सर का, टीचर्स लोगों का भी सपोर्ट होता है, सारी चीजें बच्चे को अच्छे से लर्न कराई जाती है प्रैक्टिकल के लिए सर।
0: अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है केशव जी, हम लोग भी जब स्टूडेंट रहे थे, आप भी रहे होंगे,
1: जी जी सर,
0: स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन जो बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल जरूरी होता है,
0: एक फ्रेंडली। तो क्या टीचर एकदम खौफ के साथ रहते हैं या बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर?
1: नहीं सर, टीचर्स जो होता है, कम्युनिकेशन गैप हमारे नर्सिंग में एक टॉपिक होता है सर, जिसमें बच्चे का बिहेवियर, उसके कम्प्लीट जो हैबिचुअल है, उन सारी चीजों को टीचर्स सर्विलेंस करते हैं, निगरानी में रखते हैं, अच्छे से देखते हैं, और जो गैप मेंटेन होना चाहिए टीचर्स स्टूडेंट के बीच में वो होता है एजुकेशनली गैप और बिहेवियर को लेके। मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ कोई भी स्ट्रिक्ट टीचर्स होगा, सभी बच्चे को अच्छे से हैंडल करते हैं, पोलाइटली हैंडल करते हैं,
0: यानी एकदम प्रैक्टिकल, एकदम बिहेवियर जो है फ्रेंड और टीचर का है बावजूद।
1: बिल्कुल सर,
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: फ्रेंडली माहौल है।
1: बिल्कुल सर,
0: आपको क्या लगता है कि बच्चे जो आते हैं BSc नर्सिंग के लिए, जो ख्वाब लेके आते हैं, जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं, तो अगर आपके यहाँ, आपके इंस्टीट्यूशन, कहने का मतलब श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट से पढ़े, तो बच्चे अपने लक्ष्य को पा सकते हैं?
1: बिल्कुल सर, मैं यही बोलना चाहूंगा, बच्चे अच्छा मेहनत करेंगे, बच्चे और गार्जियन का भी उसमें सपोर्ट होता है सर, और बच्चों को भी स्टडी करना होगा। ये 4 ईयर ही होता है बच्चे की एक एज के अकॉर्डिंग, जो स्टडी जो उसका फ्यूचर बना सकती है।
0: जी बिल्कुल,
1: उसके बाद मैं यही बोलना चाहूंगा सभी बच्चों को, राज इंस्टीट्यूट में एक बार आइए और वहाँ पर देखिए स्टडी का, प्रैक्टिकल का। उसके बाद सभी बच्चों का उम्मीद यही है कि 99% उनका फ्यूचर बनेगा सर।
0: फ्यूचर बनेगा। हालांकि हम एक जानकारी और देते हैं आप लोगों को कि बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टर साहब को, डॉक्टर NP प्रियदर्शी जी को फोन किया कि हम लोग पटना नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन्होंने गुरौल में भी वैसे लोगों के लिए, एक समाज का विकास हो सके, बच्चे गांव के भी आगे बढ़ सके, इसके लिए इन्होंने गुरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो श्रीराज ग्रुप का ही है, उन्होंने गुरौल में स्थापित किया है। वहां भी आप इसी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 9162413233, और दूसरा 9155558888। वाइस प्रिंसिपल साहब केशव जी, एक सवाल जो हमारे आपके घर में भी होता रहा है, बच्चों को अभी भी मिडिल क्लास फैमिली में कहें तो करियर चुनने की आजादी नहीं होती है, उनके माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है, बड़े भाई बहन का होता है, जो हम समझते हैं कुछ हद तक गलत है, सजेशन देना चाहिए। ऐसे में पूरा बिहार सुन रहा है, बात कीजिए कि ये गलत है या सही अपने हिसाब से।
1: मैं सभी गार्जियन से एक ही बात बोलना चाहूंगा, बच्चे पर बिलीव रखना है, बच्चे को अच्छा स्टडी के लिए लाइफ एक बार मिलता है किसी भी इंसान को, तो मुझे ये लगता है कि बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, उसके फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। सभी गार्जियन से मेरा यही रिक्वेस्ट है।
0: और जो कोर्स वो चुनना चाहते हैं,
1: जी
0: उस पे लिबर्टी मिलनी चाहिए?
1: बिल्कुल मिलनी चाहिए सर, बच्चे की जो चॉइस है, बच्चा जिस चीज में जाना चाहता है उसको बिल्कुल गार्जियन को देना चाहिए और उसको आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए।
0: अच्छा, एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे केशव जी, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, बहुत हमसे ज्यादा बच्चों के साथ आप रह चुके हैं।
1: जी जी,
0: बहुत सारे बच्चे इनडिसिसिव होते हैं, जिसमें वो डिसीजन नहीं ले पाते और प्लेन स्टडी को चुन लेते हैं, मसलन BSc कर रहे हैं तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, या इस तरीके से कर रहे हैं, तो अगर इसकी जगह वो टेक्निकल कोर्स को ऑप्ट करते तो शायद ज्यादा बेनिफिशियल होता।
1: जी,
0: तो वैसे बच्चों के लिए संदेश कि अगर आप कंफ्यूजन है आपके पास, तो आप किसी बड़े से, किसी एक्सपीरियंस आदमी से मदद ले सकते हैं।

0: तो बताइए उन लोगों को।
1: मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा सर, जैसे चाइना है, अमेरिका जिस डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पर एजुकेशन का मेन रोल है सर, उस चीज में टेक्निकल एजुकेशन का। वहाँ पर बच्चे को ही सिखाया जाता है बाज कैसे बनता है, मोबाइल कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें उनको स्टार्टिंग से लर्न कराई जाती हैं। तो मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि बीएससी नर्सिंग एक टेक्निकल कोर्स होता है, इसमें आकर वो आगे बढ़ें और अपना फ्यूचर बनाएं।
0: आगे बढ़े और फ्यूचर बनाएं। आप राजस्थान से बिहार आ गए, कैसा लग रहा है?
1: जी सर बहुत अच्छा लग
0: रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद केशव कुमार डागुर साहब।
1: थैंक यू सर।
2: ये केशव जी थे जो वाइस प्रिंसिपल हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के। एक बात बताएं, टेक्निकल पढ़ाई में इतनी अपॉर्चुनिटी है। जैसे देखिए, इन्होंने राजस्थान से पढ़ाई की और बिहार में आकर ये अपना योगदान दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और श्रीराज ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं। लगातार बच्चों में बीएससी नर्सिंग या टेक्निकल पढ़ाई के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। बहरहाल साथियों, बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही वाइब्रेंट है, एएनएम जीएनएम ये बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है। अगर जो आपने इसे चुन लिया तो आपके लिए रोजगार की कोई भी कमी नहीं होगी। इसके अलावे अगर आप पैरामेडिकल के कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो ढेर सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी कोर्स आ गया है। सारी चीजों की जानकारी के लिए आप डायल कर सकते हैं 9162413233 या 9155558888 ये नंबर है। इस पर डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से आपकी बातचीत हो जाएगी और श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से ये जो प्रोग्राम ला रहा हूँ, ये संस्थान बहुत ही उम्दा है, लाइब्रेरी की भी सुविधा है और अच्छे जगह से एफिलिएटेड है, हॉस्टल की सुविधा है। अगर आप चाहें, मैं नहीं कह रहा, अगर आप चाहें तो फोन से बात कर सकते हैं और आकर मिल सकते भी हैं। नंबर हमने आपको बता ही दिया है, एक नंबर फिर से बता दे रहा हूं, 9155558888। और अब राजेश को दे इजाजत, नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: दिव्या बहन,
5: हाँ,
4: अभी हमने का ये प्रायोजित कार्यक्रम सुनत रही है, पारा मेडिकल है पारस। कुछ खेती बारी के भी बातचीत हमने कहा।
5: हाँ, देखते उदय भाई खेती बाड़ी के बात कर रहे थे ने, तो हमने सब जे मतलब देखा है कि भाई कीटनाशक जो है भाई फूलवा में हम डाल रही हल, तो लगल कि भाई भाई उड़ के एकदम आंख में आ गेल, एकदम हमरा परेशानी हो गल भाई, चश्मा उश्मा हमरा पहन के करे के काम हलै, चाहे हमरा तो सांस के भी तकलीफ है, तो नाक में एकदम हमरा लगल कि भाई बहुत अब इनहेलर और लेवे पड़त, बहुत दिक्कत हो गल।
4: देखिए, जे भी हमने के पेस्टिसाइड कीटनाशक उपयोग करी ले,
5: हाँ,
4: उ जे बा हमने के प्राय उपयोग करी ले फसल के कीट खरपतवार और बीमारी से बचावे खातिर,
5: हाँ,
4: लेकिन जे कीटनाशक हमने के यहाँ बनेला वो कीटनाशक में बहुत सारा कीटनाशक जे बा ओमे हमने के जो केमिकल इस्तेमाल कर ले, हाँ, जो रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल करी ले, वो मानव जीवन खातिर समस्या पैदा करेला, पर्यावरण खातिर समस्या पैदा करेला, मिट्टी के सेहत ओकरा से प्रभावित होला,
5: हाँ,
4: क्योंकि बहुत सारा मिट्टी में वह तरह के भी जीव जंतु रहेला जोना से मिट्टी का बल मिलेला, मिट्टी के ताकत मिलेला। तो ई जे रसायन जे खतरनाक रसायन बा जो वह तरह के कीड़ा के भी मार देवेला और जब मार दी तो जो है जाहिर बात बा कि कमजोर, हाँ, हो जाए मिट्टी के ताकत। पहले याद हुई हमने कि यहाँ बहुत जब बरखा होके तो बहुत सारा जे बा मोलास्का प्रजाति के केचुआ,
5: हाँ,
4: भाई जे बा ऐठा घोंघा, छोट छोट मछरी, वो सब जो है से नजर आवे,
5: हाँ,
4: लेकिन कीटनाशके के प्रयोग मैंने प्रभाव बा,
5: हाँ,
4: कि अब धीरे धीरे धीरे धीरे वो सब जे बा नजर ना आवेला। और ऐठा उठा तो पहले इतना रही, अब देखिले कि वो तरह के पोखरा में कभी भी बरसात में भी बहुत मिलल, लेकिन कम मात्रा में, बहुत कम नजर आ।
5: हाँ, देखते ना, पहले हम सब सोचली कि कीटनाशक के मतलब दुरुपयोग हो भाई, भाई एक धरती पर और चाहे पेड़ पौधा पर एक असर हो भाई, मगर वायु में भी एक बहुत ही असर हो भाई, है ना।

0: ई लेल भाई एकरा बचाव के अच्छा से बढ़िया से इस्तेमाल होवे के चाही। तो देखिन कीटनाशक के सीधा तौर पर हमने के हवा के भी प्रदूषित करे है। आम तौर पर हमने के लगा है कि कीटनाशक खाली मटी है चाहे जैसे कहली कि भाई पौधा पर असर डाला है, मगर एकर बड़ हिस्सा हवा में घुल के वायु प्रदूषण के कारण बना है।
1: निश्चित निश्चित
0: तो जब किसान खेत में कीटनाशक के छिड़काव करथिन तो तेज हवा के चलते रसायन के छोट बूंद हवा में उड़ जा है, एकरा ड्रिफ्ट कहल जा है। तो
1: हाँ
0: एकरा चलते दवाई अपन तय स्थान से दूर दूर तक हवा में फैल जा है। तो पौधा चाहे मिट्टी में छिड़कल गेल कीटनाशक तापमान बढ़े पर वाष्प बन के हवा में मिल जा है। तो ई प्रक्रिया छिड़काव के कितना दिन बाद तक चला है, तो शुष्क मौसम में मट्टी के जौन कण पर कीटनाशक जमा होबा है वो तेज हवा चाहे ट्रैक्टर के चले से चलते एकरा धूल बन के हवा में तैरे लगा है। तो हवा में धूल के चलते ही रसायन जो हमने के शरीर में घुस जाए तो कैसे कहली कि भाई आंख में जलन चाहे त्वचा पर चकत्ता हो जाए है ना, अस्थमा चाहे ब्रोंकाइटिस यहाँ तक कि लम्हर समय पर भाई एकरा संपर्क में रहते तो कैंसर जैसन भी बीमारी हो
1: निश्चित
0: जाए।
1: निश्चित निश्चित ऐसे ये सब जो चीज़ बा एकरा के हमनी का बहुत सावधानी से कीटनाशक के उपयोग करे के चाहिए।
0: एकदम
1: और अभी यदि हमनी का यह तरह से ध्यान ना देव तो बहुत बार जो मधुमक्खी वगैरह भी बा ओकरा
0: हाँ
1: पर भी कीटनाशक के बुरा प्रभाव पड़ेला और किचुआ उचुआ जे बा ये सब तो मरिए जाला। आ लगातार यदि हमनी का रसायन के यही तरह से प्रयोग करे कीटनाशक के
0: हाँ
1: तो अनुवंशिक प्रतिरोध भी पैदा होखे लगेला जेकर पीढ़ीगत दुष्प्रभाव सामने आवेला। तो आवश्यकता ही बा कि कीटनाशक के प्रयोग यदि जैविक हमनी का रूप से कीटनाशक के प्रयोग करी जिनमें नीम और ओकरा से जुड़ल जे हमनी के कीटनाशक पर तो हमनी का ज़्यादा एकरा से सुविधा हुई फायदेमंद रही। काहे कि कुल मिला के जे भी हमनी का उत्पाद करी ले या जे भी हमनी का काम करी ले
0: हाँ
1: उद्देश्य बा मानव शरीर के पोषण प्रतिरक्षण। और यदि हमनी का यह उद्देश्य के पूरा करे में दिक्कत होखे लगे
0: हाँ
1: तो समस्या गंभीर हो जाए। ऐसे आवश्यकता बा कि ये सब चीजन पर जरा गंभीरता से सोची।
0: एकदम देखथिन भाई जब हवा बहुते तेज चल रहल है तो छिड़काव बिल्कुल मत करथिन। मुंह में स्प्रे मतलब कि एकरा कपड़ा उपड़ा भाई बांध के करथिन है ना। तो
1: हाँ
0: ई सब भाई ध्यान देवे के बहुते जरूरी है। तो रासायनिक कीटनाशक के जगह नीम के तेल गोमूत्र चाहे अन्य जैविक और प्राकृतिक तरीका से भी जैसे कि अपने कहलथिन वो सब हमनी सब कर सकिए है ना। तब आपका विचार है भैया कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाए।
1: हाँ हाँ एगो गीत होके
0: हाँ
1: और गीत आज के कलाकार हमने के बनी प्रभुनंदन शर्मा निराला जी। तो सुनो जाओ यहाँ से ई गीत।
0: गीत

0: बहुत निमन गीत हलै है ना, बहुत
1: कार्यक्रम
0: बढ़िया लगल।
1: के ई अंतिम प्रस्तुति रहल प्रभुनंदन शर्मा निराला किशोर में हमनी का ई अंतिम गीत सुनने।
0: हाँ
1: समय अब संपन्न हो गेल बा, अब चले के।
0: प्रणाम उदय भाई।
1: प्रणाम दिव्या बहन।
0: हाँ।

0: चौपाल और खेती गृहस्थी। अभी आप ये ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही देर बाद अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने NH 31 और NH 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में अपग्रेड करने की दी मंजूरी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, TRE4 के लिए जुलाई महीने में प्रकाशित होगा विज्ञापन। और रोहतास जिले की तेलकप पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से किया गया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने बिहार में NH 31 और NH 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में उन्नयन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत 144 किलोमीटर लंबी सड़क का अपग्रेडेशन किया जाएगा। इस पर 3,936 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पूर्णिया शहर में ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण किया जाएगा।
1: खगड़िया से पूर्णिया सेक्शन को लिया गया है। इस सेक्शन की लेंथ है 144 किलोमीटर और कॉस्ट आएगी 3,936 करोड़ रुपए। 4 लेनिंग होगी और प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर के तरीके से

0: इसको डेवलप किया जाएगा। एग्जिस्टिंग टू लेन रोड है जिसको कि अपग्रेड किया जाएगा फोर लेनिंग से। बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है ये और आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी भी इसी से जुड़ती है।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खगड़िया पूर्णिया खंड को फोर लेन में उन्नयन की मंजूरी मिलने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस परियोजना से सीमांचल और कोसी क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि आय सीमा बढ़ने से अधिक मरीजों को योजना का लाभ मिलेगा।
2: स्वास्थ्य विभाग का एजेंडा था जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को इलाज के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व से निर्धारित वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर उसे 4 लाख रुपए करने की स्वीकृति दी गई।
1: श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन के लिए 164 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। वहीं भोजपुर जिले में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना के लिए 31 करोड़ रुपए से अधिक की योजना को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 13 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE4 के लिए जुलाई महीने में विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री तिवारी ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति के लिए अब प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने में ही विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
3: हमने 5 साल में हमने कैलेंडर बनाया है कि हम 1 लाख शिक्षकों की और भर्ती करेंगे। अब कैलेंडर बनाया है तो इसमें हर साल किसी साल 12,000 किसी साल 15,000 शिक्षक हमारे रिटायर भी होने वाले हैं। TRE4 की वैकेंसी जुलाई महीने में हम अधियाचना BPSC को भेज देंगे और हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया है कि हर साल न्यूनतम 20,000 की बहाली करेंगे और 5 साल में 1 लाख करेंगे।
1: शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की स्थलीय जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में तय मानकों के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था नहीं पाई जाएगी उसे बंद किया जाएगा।
3: और मदरसा विद्यालय हो या संस्कृत विद्यालय, सभी विषयों की पढ़ाई होगी। दोनों को साथ साथ करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर हम कर रहे हैं, हम दोनों को करा रहे हैं। जबकि संस्कृत विद्यालयों को तो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ पैसे दिए ही नहीं आज तक, और मदरसे को हमेशा पैसा मिलता है, चाहे वो वेतन का पैसा हो या इंफ्रा का पैसा हो, वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा मिलता है।
1: ग्रामीण विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ग्रामीण विकास, सुशासन, जनभागीदारी, स्वच्छता, डिजिटल सेवाओं तथा सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2 श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से रोहतास जिले की तेलकप पंचायत को पुरस्कृत किया गया। इस श्रेणी में पंचायत को 2रा स्थान प्राप्त हुआ है। मुखिया अनीता टोपो ने पुरस्कार ग्रहण किया।
4: सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में द्वितीय पुरस्कार जाता है टेल कप बिहार को।
1: इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंचायतों के सशक्तिकरण पर काम कर रही है।
5: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह सपना है और एक लक्ष्य निर्धारित 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। हम विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर चल और हम उस लक्ष्य को लेकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते, और इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में के प्रति उनका समर्पण रहा है।
1: राजस्व और

और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि राज्य के 13 जिलों में आयोजित होने वाले श्रावणी मेले के लिए 2,25,00,000 रुपए की राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि यह राशि मेला क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खर्च की जाएगी। श्री जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना,
3: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है।
5: अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है।
4: मुंगेर के ITC पार्क स्थित 700 साल पुराने विशाल वटवृक्ष को हेरिटेज ट्री घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दुनिया के सबसे पुराने वृक्ष के रूप में खड़ा यह वटवृक्ष बिहार के महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर है। एक रिपोर्ट।
6: मुंगेर के ITC पार्क में 700 वर्ष पुराना वटवृक्ष को प्राकृतिक धरोहर के रूप में पहचान देने की कवायद शुरू हो गई है। वन प्रमंडल पदाधिकारी अमरीश कुमार मल ने बताया कि लखनऊ के बीरबल सहनी पूरा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग से इस वटवृक्ष की उम्र 700 वर्ष निर्धारित की है।
7: काफी पुराना ये प्रतीत होता है, इसलिए हमने लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट को हमने इसके उम्र पता करने के लिए हमने एक लेटर दिया था और हालिया में ही उनका रिपोर्ट हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि ये करीब 700 से भी ज्यादा वर्ष पुराना पेड़ है।
6: मुंगेर बानकी महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापिका कृतिका सुमन ने कहा कि इस पेड़ का संरक्षण चुनौतीपूर्ण है।
8: ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी धरोहर है, इसको बचाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। इसका जो पहला चैलेंज है वो ये है, क्योंकि इसके जो एरियल रूट्स है और इसके जो तने हैं वो काफी दूर तक फैले हुए, उनको सपोर्ट देना है। तो इसके चलते हम आर्टिफिशियल कोई बैम्बू का खंभा वगैरह लगा सकते हैं उसको एरियल रूट्स को सपोर्ट करने के लिए। दूसरी चीज है कि इंसेक्ट्स का अटैक होता होगा, दीमक का अटैक उसमें हो रहा होगा, तो हमको उस अटैक से भी उसको बचाना है। तीसरा, जितना ज्यादा हो सके हमको ह्यूमन इंटरफेरेंस को रोक, उसके आसपास हमको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, मिट्टी खुली रहे ताकि उसके जो रूट्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलता रहे, पानी प्रॉपर मिलता रहे, जिससे वो नॉर्मल तरीके से जीवित रह सके। कि ऑब्वियसली इतना पुराना पेड़ है तो उसमें बहुत सारे पशु पक्षी वगैरह रहते होंगे, तो हमको उसको एज ए इकोसिस्टम कंजर्व करना है।
6: मुंगेर का यह वटवृक्ष हमें यह याद दिलाता है कि जब तक हम अपनी प्रकृति को सहेज कर रखेंगे हमारा इतिहास भी अमर रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह।
4: ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव ने भीषण गर्मी को देखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र निपटारे के भी निर्देश दिए। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर निर्मित बेली ब्रिज पर वाहन परिचालन का सफल ट्रायल किया गया। परीक्षण के दौरान 2.5 टन वजन वाले 4 पहिया

0: वाहन को 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर पुल की मजबूती की जांच की गई। मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के किरबार गांव में पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में सगे और चचेरे भाई बहन शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मिट्टी खनन के लिए जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। सभी बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इधर जिला प्रशासन की ओर से मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के तिरहुत प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर अजय कुमार को पटना में 40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं ब्यूरो की टीम ने नवादा जिले के मैस्कौर प्रखंड के ग्रामीण आवास सहायक वीरू कुमार चौधरी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग की ओर से बेगूसराय में आयोजित रोजगार मेले में 70 से अधिक युवाओं को विभिन्न कंपनियों ने ऑफर लेटर प्रदान किया। इधर दरभंगा में कल से 6 जून तक अलग अलग प्रखंडों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। खगड़िया और मोतिहारी में भी कल एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन होगा। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में एक व्यक्ति के घर पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र से पुलिस ने हाईवे पर फायरिंग करने के आरोप में एक आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा जिले के पैन पंचायत में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्ञान भारतम मिशन के तहत सहरसा जिले के कहरा गांव से अभय कांत ठाकुर ने लगभग 500 साल पुरानी पांडुलिपि जिला प्रशासन को सौंपी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने NH-31 और NH-231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में अपग्रेड करने की दी मंजूरी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा TRE-4 के लिए जुलाई महीने में प्रकाशित होगा विज्ञापन। और रोहतास जिले की तेलकप पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से किया गया सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: इधर आइए। इधर
2: इधर
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभवाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।
4: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कटिहार जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।
5: कटिहार जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को संबंधित पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर आयोजित किया जा रहा है। जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी और प्रभारी सचिव राजकुमार द्वारा विधिवत रूप से जिले की कई पंचायतों में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रभारी सचिव राजकुमार ने कहा कि यह सहयोग शिविर जनता और सरकार के बीच एक सेतु का

0: कार्य कर रहा है। बीते कुछ दिनों से जिला भीषण गर्मी की चपेट में है। जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहने की वजह से सुबह से ही गर्मी का असर दिखने लगा है। इधर भीषण गर्मी की वजह से अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं नगर निगम क्षेत्र में 15 स्थानों पर निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की गई है। कटिहार नगर निगम के नगर आयुक्त संतोष कुमार ने बताया कि शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है। साथ ही कई स्थानों पर शेड का निर्माण भी कराया गया है ताकि लोगों को इस गर्मी में कुछ राहत मिल सके।
1: नगर निगम क्षेत्र में 15 जगहों पे प्याऊ की व्यवस्था की गई है। आम नागरिकों को निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है और इसके साथ साथ उनको ORS भी दिया जा रहा है।
0: कटिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में अब माता समूह का गठन किया जाएगा जो बच्चों की नियमित उपस्थिति, पढ़ाई की गुणवत्ता, अनुशासन और विद्यालय की गतिविधियों पर नजर रखेगा। शिक्षा विभाग की इस नई व्यवस्था के माध्यम से स्कूल और अभिभावकों के बीच समन्वय को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के तहत माता समूह की बैठक प्रत्येक महाविद्यालय में आयोजित होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद चौधरी ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में माताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। माता समूह द्वारा दिए गए सुझावों और फीडबैक के आधार पर विद्यालयों में सुधारात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। जिले के बराड़ी और मनिहारी में बीते दिनों अवैध खनन के विरुद्ध जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 हाईवा तथा एक पोकलेन को जब्त किया। इन सभी वाहनों में अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर ओवरलोडिंग के साथ परिवहन किया जा रहा था। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि जिले में लगातार अवैध खनन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बराड़ी, मनिहारी, कुर्सेला समेत कई स्थानों पर अवैध खनन के विरुद्ध लगातार छापेमारी की जा रही है। कटिहार के प्रभारी मंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार ने जिले के विकास भवन स्थित सभागार में 20 सूत्री और आपदा की समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में अब किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता या सरकारी अनुदान राशि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को राहत अनुदान राशि के अलावा अन्य प्रकार के अनुदान राशि भी अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही देने का निर्देश दिया गया है। श्री कुमार ने कहा कि कटिहार जिला कई नदियों से घिरा हुआ है, इसलिए संभावित बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा के खतरे से निपटने के लिए जिला के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
2: तो हम लोग से बैठ करके उसका पहले से तैयारी कर लेंगे ताकि बाढ़ आने के पहले लोगों के जान माल की रक्षा हो सके, बाढ़ से लोग ज्यादा प्रभावित नहीं हो। ये हम सब लोग अभी तुरंत बैठक करके हम लोग इसका प्लान करें।
0: कटिहार प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिरसा में समर कैंप का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया गया। यह कैंप 1 जून से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। इस दौरान छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास, उनकी रचनात्मक प्रतिभा के संवर्धन, भाषा एवं गणितीय दक्षता में वृद्धि तथा विभिन्न शैक्षणिक और शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद्र चौधरी ने बताया कि समर कैंप बच्चों के लिए केवल अवकाशकालीन गतिविधि नहीं है, बल्कि यह उनके बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं रचनात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि यह कैंप विद्यार्थियों को सभी गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता करने तथा अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को विकसित करने में सहायक साबित होगा।
3: अभी आप सुन रहे थे कटिहार जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।
4: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। होगी एक रिपोर्ट राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान पर। जानेंगे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष में हुई प्रगति के बारे में। और होगी मुलाकात जेईई एडवांस टॉपर गया जी के शुभम कुमार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों

0: के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आमपना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने बिहार के जरदालू, काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान शुरू किया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से इस अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: इस अवसर पर पटना में कृषि भवन में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसानों को रासायनिक खाद की जगह हरित खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।
4: हम सब बिहारी माँ भारती के संतान इस अभियान को पर्यावरण के लिए, आने वाले भावी पीढ़ी के लिए, हम खेत बचाने का अभियान में सम्मिलित हों। हर व्यक्ति अपने

0: जमीन के एक चौथाई में कम से कम प्राकृतिक खेती करे, ये हमने आह्वान किया है।
1: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
2: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जेईई एडवांस्ड 2026 में गया जी के शुभम कुमार ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों, अभिभावक और अपनी कड़ी मेहनत को दिया है।
3: टॉप करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक है कि हम जितना कर सकते हैं, जितना भी हमने पढ़ा हो, जितना भी हमारी पोटेंशियल है, उसको एटलीस्ट 80-90% रिफ्लेक्ट करना अपने फाइनल पेपर में, आई थिंक वही काफी होता है। बिकॉज अगर अपने आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब हम जितना कर सकते हैं हमने अपनी पूरी जी जान लगा दी हो, तो उसके लिए तो आई थिंक अपना विल पावर पूरा होना चाहिए कि अगर करना है तो करना है, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए।
1: इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम सम्पन्न होता है। ये कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन खालिद रशीद, ध्वनि अंकन राहुल कुमार और प्रस्तुति अजय कुमार।

0: seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate, as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of the United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapda makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in, deep dive into each of those aspects.
1: Absolutely. Mr. Tandon.
2: मोदी सरकार ने जो सुधार कार्यक्रम लिए पिछले 12 साल में जी. उसमें जो मध्यम वर्ग की आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है टैक्स में छूट जीएसटी का सरलीकरण डिजिटल क्रांति हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है जी. उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा जीएसटी रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें उज्ज्वला योजना की बात करें जनधन योजना की बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें सामाजिक सुरक्षा की बात करें पीएम स्वदिन योजनाओं की बात करें तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया
1: जैसे भी शरद जी ने
2: बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है
1: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं तो There has been a significant expansion of the middle class in the last 12 years with more than 25 crore people exiting multidimensional poverty and entering the new middle class. How big an achievement do you think that is of the government, of the Modi government, Sharadji?
0: I think it's a huge achievement because 25 crore may be a very easy number to speak. Yes. But this number itself may be more than Anubha, the population of many of the countries around the world. और देखिए हुआ क्या कि पॉवर्टी इंडेक्स की जो डेफिनेशन बदला गया यू नो वी चेंज द डेफिनेशन बिकॉज आप पॉवर्टी को पहले कैसे डिफाइन करते थे इतने रुपए रोज का आई थिंक नीति आयोग केम आउट विद अ वेरी न्यू एंड अ प्रॉमिसिंग डेफिनेशन कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है यू नो ऑन न्यूट्रिशन ऑन हेल्थ आपके पास घर नहीं है टुमारो यू गेट अ हाउस यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच हैज बीन यू नो सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट यू नो जंगल में और खेतों में जाके यू नो टॉयलेट का इस्तेमाल करना या वहां पर इधर उधर बैठ के महिलाओं के लिए खासकर बहुत सो आई थिंक नाउ देयर आर टॉयलेट्स एट सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट नॉट दैट अ पर्सन हैज अ वेरी ह्यूज बैंक बैलेंस बट ही इज एबल टू अफोर्ड एंड लिव अ लाइफस्टाइल व्हिच एनी अदर नॉर्मल मिडिल क्लास लिव्स सो आई थिंक दैट हैज बीन द पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी लुक एट पॉवर्टी बिकॉज दोज पीपल financially fine they may be earning whatever they earn but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life
1: the facilities that are very basic facilities Absolutely. Which is everybody's right and which should they should get
0: no but the thing is that me and you can call them basic but for them it was a luxury at one point of right. time and today they feel that these were basic amenities which I was lacking and it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana You know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arba, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just name all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So, biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analysts, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend बिकॉज दैट इज वन

0: In economics, we call it, Anubha, the trickle-down effect. That has impact हर वर्ग को समाज के उसने फायदा पहुंचाया और मिडिल क्लास तो उसमें आती आती क्योंकि इससे नौकरियां बनी हैं, इससे लोगों की इनकम। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो टंडन साहब मेरी बात से अग्री करेंगे कि मुझसे जब लोग पूछते हैं क्योंकि होता क्या जब आपकी जिंदगी में ये सब घटनाएं घटती रहती है वेलफेयर स्कीम तो यू टेक इट इन योर स्टेड, आपको लगता है ठीक है ये तो होना ही था भाई ये तो मेरा हक है वगैरह वगैरह ऐसे ख्याल आते हैं। पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है, विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव इज कि आप 2014 में जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले आप कहां खड़े थे। शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014 और आज आप कहां खड़े हैं। तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकोनॉमी, सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion। तो अगर इकॉनमी डबल हुई है तो इकॉनमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल लाइक अस। सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे।
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती है, रोटी कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी। तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम करे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है।
2: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी कपड़ा और मकान है, और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं, आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की। वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है, और जैसे अभी बात हो रही थी अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूं तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
1: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी जो विभिन्न योजनाएं हैं उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है।
0: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अनुभा। देखिए गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभा वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं।
1: बिल्कुल,
0: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट स्टार्टअप इंडिया यू नो पीपल हैव बीन डूइंग बिजनेसेस हियर फॉर टाइम्स इममेमोरियल, सो व्हाट इज न्यू? यस, देयर वाज समथिंग न्यू बिकॉज स्टार्टअप फोकस्ड ऑन इनोवेशन, स्टार्टअप फोकस ऑन न्यू आइडियाज, एंड दैट इज वेयर द यूथ ऑफ द कंट्री और द यूथ इंटेलेक्ट ऑफ द कंट्री गॉट एक्टिवेटेड। A lot of youngsters, and today, just on Startup India, there are 2 lakh plus registered startups. And you know, you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund
1: yes.
0: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. Here, government became an angel. Right. And I think the whole setting

0: up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained. I think that has done magic to this country. And today, I'm telling you, when from being job seekers
1: Yes.
0: to being job creators, when I talk to a cross-section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. If 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And for everybody to find employment, may not be possible in the
1: Yes.
0: times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees. You borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs. You'll be surprised the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that. There are so many although I treat homemakers as
1: They
0: a
1: are the
0: very, very
1: unpaid
0: active GDP. In
1: workers,
0: fact,
1: actually.
0: we did an analysis recently which said that if the GDP of women homemakers, it's not counted in the GDP,
1: Right.
0: but then they contribute very, very significantly. But then those women who've now joined the main economic mainstream, their percentage is between 30 and 35%. This Mudra Yojana has helped women come forward. And I see so many women entrepreneurs today, not just employing themselves, but they've got a big team who follows them, who are employed with them. So I think the vision of this government was to make sure that you don't chase rozgar,
1: जी
0: you also create rozgar for other people. That for me, and the whole taxation system
1: बिल्कुल
0: and ease of doing business, I think that has helped the middle class. There was a time when middle class person used to think, मैं बिजनेस कैसे करूंगा करूंगी, ये तो बहुत मुश्किल होता है, कंपनी कैसे बनाएंगे, फिर सरकार इतने सारे टैक्सेस लगाती है. 17 टैक्सेस को मिला के जीएसटी जब आया, और जब से जीएसटी 2.0 आया है,
1: जी
0: उसने तो ऐसा लगता है जीएसटी को, आई मीन पीपल हैव ओपन देयर आर्म्स एंड एम्ब्रेस्ड इट, उससे
1: एब्सोल्युटली
0: पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे
1: जी
0: फर्क पड़ गया है.
1: आपने जीएसटी की बात की और उससे पहले कि हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें क्योंकि एक वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्ग परिवार हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क आया है बिकॉज सम पीपल थिंक दैट द मिडिल क्लास हैज बीन अनफेयरली बीन बर्डन विद टैक्स बर्डन स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स सो इन द लास्ट 12 ईयर्स व्हेन वी लुक एट द टैक्स रिफॉर्म्स दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड इफ वी लुक एट द जीरो टैक्स लिमिट एंड वेदर लाइक यू मेंशन द जीएसटी नॉट जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी बट आफ्टर दैट लास्ट ईयर वी सॉ द जीएसटी 2.0 ऑल्सो हाउ हैव दीज टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स इन द पास्ट डेकेड इम्पैक्टेड मिडिल क्लास सो टंडन व्हाट वुड यू से टू दैट
2: देखिए, इसमें एक और पहलू भी है
1: जी
2: कि जो पेंशनर्स हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका भी महंगाई भत्ता लगातार बढ़ाया जाता है उस महंगाई के इंडेक्स के साथ
1: जी
2: मिलाकर. तो टैक्स रिफॉर्म जो है, आपने जिनके जिक्र किया, उससे भी हम लोग अपनी मिडिल क्लास की बात करें, हम लोगों को 40-40, 50-50 हजार रुपए साल का टैक्स बचा है. तो हम भी मिडिल क्लास हैं सब लोग. तो ये जो लाभ मिला है मिडिल क्लास को, और जो टैक्स के बारे में जितनी भी बातें हुई हैं, तो ये सब कुछ मिलाकर अगर देखें तो मैं समझता हूँ मिडिल क्लास आज बहुत खुश है. और शायद मिडिल क्लास की 4-5 लेयर्स को भी अगर हैं, अपर मिडिल क्लास की अगर अभी बात छोड़ भी दें, तो लोअर मिडिल क्लास को मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा होगा.
1: शरद जी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स इट्स नॉट जस्ट द एग्जेम्पशन दैट द एग्जेम्पशन लिमिट हैज इन फैक्ट चेंज 4 टाइम्स इट इज इंक्रीज 4 टाइम्स सिंस 2014 बट इट्स ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स इट्स द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपेरेंसी दैट हैज बीन ब्रॉट इन दिस होल प्रोसेस सो वट वुड यू से टू दैट हाउ हैज इट मेड द लाइव्स ऑफ द मिडिल क्लास मच इजियर एंड नॉट मोर देन that would you say that the fact that the government has made the process so easy and if we look at the number of ITRs filed in fact last year just last year more than 8 crore ITRs were filed that's also showing the government the Modi government's trust in the people in their honesty and it's a salute to the middle class
0: all right we call that a sabka vishwas a government has gained that vishwas where people come forward and file the, and I'll give you a very interesting dynamics of this whole tax number which you spoke of
1: Ji.
0: about 9 crore returns were filed And you know, the real taxpayers, the people who actually paid tax, they were about 3 crore or so. But then because it's mandatory to file the return, so people participated in that activity, people came forward, and they have now understood with 12,75,000 rupees of income for the first time in India is tax exempt. You know, we did a case study of a couple who were both earning, one was earning about 5 lakhs and the other was earning about 7 lakhs, about 12 lakhs of earnings. Now, they were not able to save for earlier for investments, for SIPs, for health insurance.

0: Combined together, they save tax about a lakh of rupees. Now, this lakh of rupees is going into health insurance, is going into insurance, is going into their retirement planning as well. And, you know, it'll be unfair, Anubha, if when we talk of tax and we don't talk of the tax savings made by GST. Somebody asked me that only 3 crore people in India pay tax. I said, no, every citizen of this country pays GST because that's indirect taxation. So this GST 2.0 has put money in the pockets of people. And because primarily we are a consumption-driven economy, 55 to 60% of our economy comprises of me and you, and Mr. Tandon goes and buy goods from the shopkeepers, from service providers. So I think that has taken a big boost. And in the current scenario, when global economy is facing challenges, it is the Indian consumption, Anubha, which is driving the growth of the country.
1: Let's move on to the next, you know, area which I think has impacted the lives of the middle class in a very significant manner, which is digitization. And we all know that Prime Minister Modi is a big votary of digitization. So what role has digitization played in the empowerment of middle class? Would you say that initiatives such as Aadhaar or even, you know, DigiLocker or even Umang, I'm just giving some few examples, that they have not only made public services mobile and paperless, but they've also in a way deepened the trust of the people in the government systems, Mr. Kohli?
0: I think it has brought the banking system, Anubha, in the pockets of people.
1: Financial inclusion?
0: Absolutely. You know, Jandhan Yojana, more than 56 crore accounts. And these were the people who probably thought that banks are always a dream for us. Yeah. You know, they used to keep their money, you know, under the mattresses and so today all that money is in the bank and a very substantial deposit is there. I think 25 lakh crore rupees every month, 300 lakh crore rupees of transactions happening in a year.
1: Yes.
0: I think this has been transformational. And a lot of countries around the world now want to emulate that example. So many countries have borrowed this fintech innovation from us and they want to go for it, from buying a roadside nariyal to probably making big payments at the hotels. Just about, I have a feeling, Anubha, as an economic analyst, that to my mind, this has added about a percentage point to GDP, which means just the UPI has facilitated our GDP in stepping up by about 100 basis points, which is a very, very significant value for that matter.
1: Ashok ji, aap kuch
2: kehna chahte hain? Yeah, main ye kehna chahta hoon ki ye Jandhan Aadhaar aur mobile, ye jo jam ki tikdi hai, isne bicholiyon ko khatam kar diya hai. Aur iske saath saath jo 1600 se adhik purane और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको खत्म किया गया है. सरकारी नौकरियां हो, निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया है. दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया है. ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ है.
1: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है. पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है. उसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में, और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
0: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव. आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पर हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है. और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ कर
1: डिजिटल डिवाइड, जिसको
0: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीज पीपल इन द विलेज अनुभव दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन. टुडे व्हेन आई गो टू अ विलेज आई फाइंड द थिंग्स दे यूज, द वे दे टॉक, व्हाट दे वेयर, द लाइफस्टाइल दे लीड इज प्रीटी मच लाइक अ नॉर्मल टाउन सिटीजन. एंड देयर आर सो मेनी लर्निंग्स व्हिच आर हैपनिंग. ए प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मेड एन अपील व्हिच सेड कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. कैसे ये कोविड में हम करते, पढ़ाई लिखाई बंद हो जानी थी अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती. बच्चों का कोई नुकसान कोविड में नहीं हुआ. आज भी प्रधानमंत्री जी, हम अपने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उसके पीछे इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज
1: है. जो पिछले 12 सालों में काम
0: जो किया, काम किया है, हमें उसके आधार पर उन्होंने बोला. उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे. सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर. मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाके रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं. और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं. दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन.
1: अशोक जी, आप कुछ कहना?
2: नहीं, मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से, और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है. तो

0: इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया सुशासन और भारत के जो प्रशासनिक आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ होना है।
1: We have seen in the last 12 years, since 2014, when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
2: Oh, it's done in a huge way, because we pick up anything. For example, highways. Any middle-class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours an Uber for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years. I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Uran, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people. कि हम सारी उम्र में सोचता था कब मैं हवाई जहाज में बैठूंगा. आज मुझे लगता है आप अगर किसी भी हवाई यात्रा में जाए, आपको एक आम आदमी उसमें दिखेगा. अब वो ऐसी लग्जरी नहीं है. छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना, जिसके लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे. आपको याद होगा राजधानी और शताब्दी, अकेली ट्रेन हुआ करती थी जो कि प्रीमियम बोली जाती थी, जल्दी पहुंचना है. आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट में पहुंच रहे, विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल. द थिंग्स वी यूज्ड टू वॉच इंटरनेशनली, के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स होती हैं, आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में. सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लग्जरी व्हिच यूज्ड टू बी कॉल्ड अर्लियर एज अ कंफर्ट एंड नेसेसिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री.
1: एंड यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जैसे बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट यू नो एयरपोर्ट्स, जो एक्सपेंशन हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है. वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक. जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान पर, अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
0: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं, उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं. ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है. अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं. अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है. इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है.
1: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही हैं, उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
2: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड, अनुभव, रिलेट्स टू विकसित भारत 2047. और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी, तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है. आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे. देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात, करी। ये विकसित भारत की यात्रा में

0: बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान,
1: बिल्कुल
0: और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रेवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर।
1: यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। वुमेन, यू नो, आर द बैकबोन ऑफ एनी मिडिल क्लास फैमिली। व्हाट इन योर opinion in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashokji, aap batana chahiye.
2: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse हर वर्ग को हुआ है, लेकिन विशेष तौर से महिलाओं और किसानों और युवाओं से जुड़े हुए जो हैं। अब आप देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी में, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा, इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्व्ड इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन। आई फाइंड लॉट ऑफ वुमेन, एज मिस्टर टंडन सेड दैट यू नो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है, जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से, महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी, पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, वो खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है, और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वर्ग पर कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड, वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल

0: टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं। तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है। और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास, वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
2: देखिए, जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
2: It was a pleasure.
0: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on Air. This program is also available on our YouTube channel, News on Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
4: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
5: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
6: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
7: अभी आप सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चंद गजलें। कलाकार हैं मुबारक बेगम।

0: अभी आप मुबारक बेगम से चंद गजलें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के

0: निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
1: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटका नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधु ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख

0: रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
3: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्कर

0: साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता बी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माही में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। Headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritavrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
3: ATF price stabilization fund mein
4: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
3: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
2: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees, seeks to incentivize owners of trucks and buses registered in the Delhi NCR region that comply with BS4 or earlier emission norms to replace them with BS6 or electric vehicles. Mr. Vaishnav also informed that the Cabinet Committee

0: pictures. The Indian embassy in Kuwait confirmed the death of one of its nationals in the attack, expressing its deepest condolences to the bereaved family and saying the mission is closely coordinating with Kuwaiti authorities to provide all possible support. The Indian Meteorological Department has issued an orange warning for heavy rainfall over Keralam and Mahe tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, parts of northeastern India, West Bengal, Karnataka, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep during the next 2 days. In badminton, India's Ayush Shetty advanced to the second round of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wang Hongyang, 8-21, 22-20, 21-15. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Ritwik Agarwal defeated Chinese Taipei's Yang Po Huan and Hu Lingfang. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Rituvrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parameshwar becomes Deputy Chief Minister, while 12 legislators also take oath as cabinet ministers. Massive fire in Malviyanagar in Delhi claims 21 lives. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खित्ता मनसूबाबंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली रीता ब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया है। डॉक्टर जी परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबीनी वजरा की हैसियत से भी हलफ लिया है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई है। पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। मौसमियात के महकमे ने कल केरलम और माहे में बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी चीन के वैंग होंगयांग को हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक मरतबा दी जाने वाली बजट इमदाद के तहत 10,000 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद भारतीय एयरलाइन कंपनियों को उनकी घरेलू और बैन अल-अक़वामी परवाजों के लिए हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करना है। मगरबी एशिया कशीदगी के सबब ईंधन की कीमत में पैदा होने वाले गैर मामूली अदम इस्तेहकाम के दौरान ये मदद एयरलाइन कंपनियों को ATF की कीमतों को मुस्तहकम करने में मदद की खातिर फराहम की जाएगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये अपने आप में काफी फंड है जो भारतीय तैयारा बरदार कंपनियों को हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मरकजी काबीना ने 9,585 करोड़ रुपए की माली अखराजात के साथ दिल्ली NCR इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील कर

0: करने की खातिर कौमी राजधानी खित्ते से मुतालिक मंसूबा बंदी बोर्ड की मदद के लिए एक स्कीम को भी मंजूरी दी है।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने उड़ीसा के रामेश्वर से पारादीप तक एक नई साहिली शाहरा की तामीर की भी मंजूरी दी है, जिसकी कुल लंबाई 163 किलोमीटर से ज्यादा है। मगरबी बंगाल में अहम सियासी वाक़े के तहत रीता ब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली में अपोजिशन का लीडर मुकर्रर किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के लेजिस्लेचर के एक बागी ग्रुप को एक अलहदा कानून साज पार्टी के तौर पर असेंबली के स्पीकर की जानिब से तस्लीम किए जाने के बाद ये तकरीरी सामने आई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रीता ब्रता, जो सीपीआईएम के राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट हैं, वो बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें तकरीबन 60 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है, जो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के कानून के तहत जरूरी 2/3 से ज्यादा है। ममता बनर्जी के ग्रुप ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को ओपोजिशन का लीडर नामजद किया था। स्पीकर से मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए रीता ब्रता बंदोपाध्याय ने दावा किया है कि बागी लेजिस्लेचर्स ने अब ऐवान में हकीकी और असल ओपोजिशन तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि उनका ग्रुप एक तामीरी ओपोजिशन का किरदार अदा करेगा और जब जरूरत होगी हुकूमत की हिमायत करेगा, लेकिन जिन पॉलिसियों की वो मुखालफत करेगा उन पर साबित कदम रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के दरमियान शदीद सियासी बहरान के तहत ये वाकया सामने आया है, जिसे हालिया असेंबली इंतखाबात के बाद अंदरूनी बगावत का सामना है। पार्टी ने इससे पहले अरकान असेंबली रीता ब्रता बंदोपाध्याय और संदीपन साहा को मुबैना तौर पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की बिना पर पार्टी से निकाल दिया था। सियासी माहरीन इस वाक़े को जब से वो इक्तदार में आई हैं उस वक्त से ममता बनर्जी की क्यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार दे रहे हैं। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: कर्नाटक में कांग्रेस के सीनियर लीडर डी के शिव कुमार को रियासत के 25वें वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। डॉक्टर बी परमेश्वर, जिन्होंने सिद्धरमैया काबिना में दाखिली उमूर के फराइज अंजाम दिए थे, उन्हें नायब वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। 12 कानून साजों ने भी काबीना वुजरा के तौर पर हलफ लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डी के शिव कुमार को वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाए जाने पर मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उनकी मुद्दत कार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज सुबह मालविया नगर के एक होटल में भयानक आग लगने के वाकये में गैर मुल्की शहरियों समेत 21 अफराद हलाक हो गए, जबकि 40 दीगर को बचा लिया गया। जुनूबी दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और जख्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। अभी 26 अफराद जेरे इलाज हैं। 10 पुलिस एहलकारों को भी आग में फंसे हुए अफराद को बचाने की कार्रवाई के दौरान सांस लेने में दुश्वारी के सबब अस्पताल में दाखिल कराया गया। दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत एफआईआर दर्ज की है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली पुलिस ने जुनूबी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में भयानक आग लगने के वाकये में गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत एफआईआर दर्ज की है। इस सानहे में कम से कम 21 अफराद हलाक हो गए। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वाकये की छानबीन का हुक्म जारी किया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि डीएम, डीसीपी और एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर की मुश्तरका कयादत में कल से एक माह के दौरान आग लगने की रोकथाम पर अमल आवरी से मुतालिक मुआयने, ऑडिट्स और अदम तामील की सूरत में सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए होटल्स, गेस्ट हाउसों, नर्सिंग होम्स, कोचिंग सेंटर्स और दीगर मराकज के मुआयने की मुहिम शुरू की जाएगी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधा कृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आग लगने के सानहे में हुए जानी नुकसान पर रंजो अफसोस का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ में शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के वोटों की गिनती कल होगी। 3 मरहलों में हुए पंचायती इंतखाबात के नतीजे का ऐलान भी कल ही होगा। शहरी बल्दियाती इदारों के आम और जिमनी इंतखाबात और 3 मरहलों में हुए पंचायती इंतखाबात पिछले पीर को हुए थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही।

मोदी ने केरलम और माहे में बहुत तेज बारिश के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अंडमान और निकोबार जजायर और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन के दौरान बहुत तेज बारिश की पेशगोई है। महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के वैंग हॉन्ग यांग को हराकर शानदार वापसी की है। मिक्स डबल्स मुकाबले में भी भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका गाडे की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को हराकर एक और जीत दर्ज की है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खत्ता मनसूबा बंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली रीता व्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। डॉक्टर जी राम परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं, जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबिनी वजरा की हैसियत से हलफ लिया। दिल्ली के मालविया नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Çerçeğe kavuş şeyhi. ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर GPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मानसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
2: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकी से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान

0: यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
1: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए? क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि उत्तरी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि तो फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी तो कौन कौन से स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र है, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और आईसीएआर इंस्टीट्यूट है जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से किसान कॉल सेंटर 24 घंटे काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए, और पानी जब फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रियाएं ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कंपोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं, और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पे हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम उपयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलकर क्योंकि काम कर रहे हैं, इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर आईसीएआर इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के दो दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की वो किसान ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हरास नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाए।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है, इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
0: मानसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मानसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, जिसमें प्लस माइनस 4% की छुट्टी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का, उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना

भारत में, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य भारत में और दक्षिण पूर्वी भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का उससे कम वर्षा रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से चारों महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके कई बार फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है। इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है। इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताह बाद यानी कि हर सप्ताह में कैसा

0: रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से चारों महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके बाद कई बार फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है। इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है। इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है
1: जी,
0: यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो इसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जाए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
2: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हमको बांट सकते हैं, जैसे राजस्थान पूरा एरिया है इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं, उनकी कोशिश होती है जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है कितने आगे बारिश होने वाली है कितना भी छोड़ना है तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृषि क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही, अगर धान की सब क्षेत्र नीचे है जिसमें पानी खड़ा होता है तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ, क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट सीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकाली हैं जिसमें 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30-35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए, और जहां पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोसफियर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्थाओं पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए, खासकर जब आपने दक्षिण भारत की बात या मध्य भारत की बात की जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग 1 हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे, साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए।

0: पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं और किसान को सही समय पे सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है, ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है और
1: जी
0: कृषि वैज्ञानिक गांव में जा रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है और तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें। मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान करती है,
1: बिल्कुल
0: खासकर
1: रवाज जी,
0: सब्जी और
1: बिल्कुल सही
0: फलों
1: कह
0: में,
1: रहे हैं आप
0: तो उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं।
1: जी।
0: और मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी तौर के तौर पे और उसमें हमारा सक्षम है और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
0: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है। भारतवर्ष के कहे या अगर सौ बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम है, जो वेदर के इवेंट हो रहे होते हैं, उसे प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है, उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का, जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें इनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत में जो मानसून को खींच के लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है, इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी अल नीनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब अल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशन होती है तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर हम देखें, एक तरह जनरली हम बात करें उसके बारे में, तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है। जबकि एल नीनो कंडीशन यानी कि जो समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत बृहद सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एल नीनो, सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मॉनसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एल नीनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मानसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मानसून का सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एल नीनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशन से एल नीनो की वीक कंडीशन की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मॉनसून के दौरान एल नीनो कंडीशन जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है। यानी कि मानसून के दौरान एल नीनो कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है, प्रशांत महासागर में समुद्र की जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा, और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए यह भी कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यावहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?

0: जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ पोषक तत्व तो वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उनको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम जब बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है, क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमारी भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवार का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का वो अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जो जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है, खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30 से 35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फॉल्स आर्मी वार्म आ रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे
1: जी
0: मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं। और हमें अपने किसानों पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं और आपका जो विस्तार तंत्र है, खासकर मास मीडिया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और साथ
1: जवाब
0: में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का हम इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
0: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमोसफेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितने अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर लेते ह्यूमिडिटी है तो रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरमेंट की कंडीशन होती है, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमोसफेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो ये इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसका एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाए रखे।
1: जी डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों

0: पर कैसे पड़ता है?
1: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है। तो सपनों वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियाँ होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सभी संसाधन होने चाहिए। तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का जो भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान, बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है। क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई हैं जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके। जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ आपकी आप ही आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले वो सक्षम कर सकते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है। जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है। और साथ साथ में हमें ये देखना, मंडी में भाव क्रैश ना करे। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं, बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है। तो हमें सरकार को उस पर भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
0: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है। जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
2: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में अगर हम पूरे वैश्विक पर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमोस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के, कि वातावरण में एटमोस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान बात की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सेटेलाइट सिस्टम्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में जो रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है। उसके जैसे जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रिजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ में AI का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और AI ML को यूज करके, यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है ये, इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
0: जी हाँ, बिल्कुल। मॉनसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मॉनसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

0: साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आइए अगला गाना सुनते हैं, हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत, मजरू के बोल और आर डी बर्मन का संगीत।

अगला गीत हमने लिया है कटी पतंग फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़ में। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं अगला गीत आनंद फिल्म से। स्वर दिया है मन्ना दे ने, गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं सलील चौधरी।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के

0: गौरवमयी 90 साल।
1: श्रोताओ, अगला गीत हमने लिया है दाग फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में। इसके गीतकार हैं शहीर और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
2: मेरे दिल में आज क्या है,

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में आइए सुनते हैं मिस्टर नटवरलाल फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसके संगीतकार हैं राजेश रोशन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से। हम पुनः हाजिर होंगे कुछ और मधुर गीतों के साथ एक अंतराल के बाद।

इस अंतराल के बाद हम पुनः हाजिर हैं कुछ और मधुर गीतों के साथ आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अगला गीत हमने लिया है आंधी फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: साथी
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
3: अगला गीत हमने लिया है कटी पतंग फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज में। इसके संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

PIR at 90. श्रोता अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अगला गीत हमने लिया है बॉबी फिल्म से, शैलेंद्र सिंह के स्वर में, जिसके संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लता मंगेशकर के स्वर में आइए सुनते हैं घर फिल्म का ये गीत, गुलजार के बोल और आर डी बर्मन का संगीत।

0: मोहम्मद रफी के गाइस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों

जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: including enhancing awareness, promoting economic empowerment, strengthening financial inclusion, improving access to essential services, and ensuring effective grievance redressal mechanisms. And in badminton, India's Ayush Shetty advanced to the pre-quarterfinals of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wang Hongyang. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Ritvika Gadde defeated Chinese Taipei's Yang Fuswan and Hu Lingfang. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की दूसरी सभा समाप्त होती है। इसी मीटर पर कल प्रातः के 5:45 पर हम पुनः उपस्थित होंगे अपने कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।